FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी सासाराम से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की 13वीं तिथि, तदनुसार 4 अगस्त सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:56 और 38 सेकेंड हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा

हम आकाशवाणी सासाराम से बोल रहे हैं FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हम हिंदी समाचार रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से। हिंदी समाचार के तुरंत बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी विविध भारती के कार्यक्रमों का प्रसारण।

0: लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि पार्टी 3 विधानसभा उपचुनाव में मिले जनादेश को स्वीकार करती है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता पर भाजपा पर विश्वास बनाए रखने का आभार व्यक्त किया। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी बांकीपुर और दतिया में के चुनाव परिणामों का गहन विश्लेषण करेगी। भाजपा के सत्येंद्र पटेल ने वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट पर जीत हासिल की है, जबकि जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत कुमार ने बिहार की बांकीपुर और कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव से बातचीत की। दोनों मंत्रियों ने ऊर्जा, अवसंरचना, व्यापार, रक्षा, शिक्षा और संस्कृति पर विशेष ध्यान देते हुए रणनीतिक साझेदारी की विस्तृत समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि उन्होंने प्रमुख क्षेत्रीय चुनौतियों पर भी चर्चा की और भारत उज्बेकिस्तान बहुपक्षीय सहयोग के विस्तार पर विचार विमर्श किया। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों, विशेष रूप से आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में एक समान विचार हैं। ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में शुरू होगी। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधियों की भागीदारी होगी। सदस्य संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने, सीमा पार भ्रष्टाचार से निपटने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर भी विचार विमर्श करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक कल शुरू हुई। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा बुधवार को नीति वक्तव्य जारी कर सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूती दिखाई है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताओं और मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं के चलते आरबीआई के सतर्क रुख अपनाते हुए ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने की संभावना है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने कल नई दिल्ली में मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने के संबंध में मुलाकात की। बैठक के बाद भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने कहा कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुगरबर्ग को इसके लिए माफी मांगने को कहा है। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनसे धारा 79 के अंतर्गत दी गई सेफ हार्बर प्रोटेक्शन वापस लिया जाना चाहिए। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है, क्योंकि इस तरह का लेबल लगाना कानून के खिलाफ है। प्राधिकरण ने सोशल मीडिया पर सूचित किया है कि इन उत्पादों में शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। अमेरिका के 25 राज्यों ने ट्रंप प्रशासन पर नए सीमा शुल्क को लेकर मुकदमा दायर किया है। राज्यों ने इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा फरवरी में रद्द किए गए आयात शुल्कों की जगह नए शुल्क लगाने का बहाना बताया है। पिछले महीने अमेरिका ने 59 देशों और यूरोपीय संघ पर दोहरे अंकों का शुल्क यह आरोप लगाते हुए लगाया था कि उन्होंने जबरन श्रम से उत्पादित आयात पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए थे। जम्मू कश्मीर सरकार प्रवासी परिवारों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से लगभग 50,000 प्रवासी परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के डेटाबेस में एकीकृत कर रही है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि सरकार प्रवासी राशन कार्ड को साधारण खाद्य पात्रता कार्ड की जगह व्यापक सामाजिक कल्याण लाभ के तौर पर परिवर्तित कर रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारत।

आज का चिंतन। स्वामी विवेकानंद का कथन है, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं, लेकिन हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। लीजिए अब सुनिए भक्ति रचनाएं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षेप में विवरण। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:35 पर सुनिए श्री रामचरित मानस गान भाग 270। 6:45 सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम सुनिएगा। श्रृंखला सुनिएगा वर्षा चौमासा। कलाकार हैं गायिका शुभा मुद्गल। इस श्रृंखला की चौथी कड़ी आज। सुबह 7 से भूले बिसरे गीत कार्यक्रम 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। पंद्रह मिनट पर त्रिवेणी। 8:30 से सुनिए चित्रलोक कार्यक्रम। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित होगा फिल्मकार पार्श्व गायक किशोर कुमार पर। प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। 10 पिटारा में सेहतनामा। इसके अंतर्गत नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग। संपादन सहयोग रीमा जोशी। प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। ग्यारह बजे रंग तरंग और 12:05 पर यादों की महफिल। 1 सुरीला सफर। 2 त्रिवेणी।

2:30 पर सदाबहार नगमे, 3 बजे से सखी सहेली। सखी सहेली के अंतर्गत सुनेगा अफवाहों से सावधान रहें सखी विशेष मालिका सदानी, हल्की फुल्की बातें, बचपन की यादगार, शरारत, मुहावरों की दुनिया, 1 से 21 होना। संपादक मंदाकिनी जोशी, आरती श्रीवास्तव, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत सेल्यूलॉइड के सितारे, अभिनेत्री और निर्देशक तनिष्ठा चैटर्जी से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। प्रस्तुतकर्ता हैं तेजश्री कामले। शाम 5 बजे छाया गीत 5:30 पर तराने नए पुराने। छह बजकर 35 मिनट पर संध्या रंजन शाम सुनिएगा। 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम। 7 बजे से फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला सुनिएगा। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत पॉप एक्सप्रेस। हवा महल में रात 8 बजे झलकी ये न थी हमारी किस्मत। लेखन सत्यदेव नारायण सिन्हा, निर्देशक सीताराम यादव। 8:15 रात चित्रलोक सुनिएगा और 9 बजे कार्यक्रम आपके लिए। रात आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा फिल्मकार पार्श्व गायक किशोर कुमार पर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। 10 बजे छाया गीत, 10:30 पर ढलती जाए रात और 11 बजे रंग तरंग। आप सुन रहे थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

बालीवध का प्रसंग पार्वती को सुनाते हुए शिव जी कहते हैं, श्री राम समस्त प्राणियों को कठपुतली की तरह नचाते हैं। राम के आदेश पर सुग्रीव ने भाई का राज्य पाया और बाली पुत्र को युवराज घोषित किया।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान भाग 270।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

प्रस्तुत है श्रृंखला वर्षा चौमासा, प्रस्तुति प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल की। इनसे बातचीत कर रही हैं कांचन प्रकाश संगीत। वर्षा चौमासा।

0: वर्षा चौमासा श्रृंखला की आज की ये चौथी कड़ी है। शुभा जी हमारे साथ हैं। शुभा जी नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: मेरी ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से और समग्र श्रोताओं की ओर से, आज हम किस राग का, हम मतलब मैं आपके साथ बातचीत कर रही हूँ इसलिए हम, बाकी सब तो आप ही बता रही हैं और आप ही जानती भी हैं और समझाएंगी भी हमें, किस राग का चयन कर रहे हैं?
1: अब तक हमने राग शुद्ध मल्हार और मेघ और गौड़ मल्हार के बारे में कुछ चर्चा की, लेकिन एक एक बहुत ही बहुचर्चित, लोकप्रिय, जाना माना एक मल्हार का प्रकार है जो जिसके विषय में हमने अभी तक कुछ नहीं कहा, बल्कि कुछ लोग तो ये मानते हैं कि शायद यही रागांग है, उसे मियां मल्हार कहा जाता है।
0: जी, मियां की मल्हार भी कहते हैं।
1: मियां की मल्हार भी कहते हैं और कहा जाता है कि तानसेन जी द्वारा ये रचित
0: मियां तानसेन जी
1: जी तो मियां मल्हार

0: के विषय में हमने कुछ नहीं कहा, हालांकि ये बहुत ही लोकप्रिय है। और इसमें इसकी विशेषता जो है, मतलब ऐसा लगता है कई बार कि इसमें जो दोनों निषाद लगते हैं वो ही मल्हार का एक प्रतीक बन गए हैं।
1: जी।
0: यदि किसी ने न सीखा हो या केवल सुन सुन के जानकारी हासिल की हो, तो शुद्ध मल्हार के जगह ये भी मान सकते हैं कि अगर दोनों निषाद लगाने का जो एक विशेष इसमें जो स्वर संगति है, वही शायद मल्हार का प्रतीक बन जाता।
1: जी, और वही मल्हार का रूप है,
0: जी
1: असली रूप है।
0: जी तो काफी थाट जन्य ये राग है,
1: जी
0: और इसमें कहा जाता है कि मल्हार का एक अंश मिलता है और कान्हड़ा का भी मिश्रण इसमें मिलता है, और फिर तो वो जो दोनों निषाद लगाने की एक विशेष परंपरा है वो भी उसमें मिलती है।
1: जी
0: इसमें भी मैंने आपके लिए दो रचनाएं चुनी हैं जिनका साहित्य मुझे बेहद पसंद है।
1: पसंद है। लेकिन शुभा जी, थोड़ा सा राग, ये जो मियाँ मल्हार या मियाँ की मल्हार है, उसका थोड़ा चलन भी तो आप बताइए,
0: जी ज़रूर।
1: समझाइए, ताकि आप जिससे कह रही हैं कि ये काफ़ी थाट का राग है, और शुद्ध मल्हार के बारे में आपने कहा था कि वो बिलावल थाट का
0: जी
1: है,
0: बिल्कुल
1: तो
0: जी
1: ये भी तो कुछ फ़र्क है,
0: जी
1: और ये फ़र्क हमारे श्रोता भी समझे
0: जी
1: तो।
0: ज़रूर, वो गाने से ही पता
1: जी
0: चल जाएगा। तो इसका जो एक मुख्य इसका चलन है वो इस प्रकार है।

0: वाह वाह, ये आरोह अवरोह सुनकर मुझे, चूंकि एक सर्वसामान्य श्रोता के मन की बात है जो मेरे मन की बात है, बोल रे पपीहरा जो गाना है
1: जी
0: वो मुझे याद आया,
1: जी
0: वो इसी राग में निबद्ध
1: बिल्कुल
0: है
1: बिल्कुल
0: जी।
1: बिल्कुल
0: लेकिन
1: सही
0: हम
1: कहा।
0: अभी आपकी बंदिशें सुनेंगे, जो आपने जिक्र किया कि दो बंदिशें सुनाऊंगी
1: तो ये दोनों ही बंदिशें पंडित राम आश्रय झा जी की हैं,
0: जी।
1: और जो धीमे तीन ताल में बंदिश है उसके बोल इस प्रकार हैं। तू क्यों मान करे रे बदरा, तो नायिका पूछ रही है बादल से कि किस बात का अभिमान है तुझे। तू क्यों मान करे रे बदरा, मोह बिरहीन नैन के आगे, मतलब तू देख रहा है कि मेरे बिरही नैन कितना बरस रहे हैं फिर भी तू अभिमान कर रहा है, और क्या जरूरत है तुझे अभी इतना मान करने की। तू बरसे रुत पावस आए, तू तो तभी बरसता है जब
0: जब पावस
1: पावस ऋतु
0: ऋतु,
1: आती है, वर्षा ऋतु आती है। राम रंग मेरो नैन दिन रैन झरे,
0: वाह वाह वाह वाह, हाँ
1: तो वियोग की का
0: जी
1: साहित्य है, और उसमें कितनी सुंदर
0: सुंदर
1: उलाहना दी
0: है
1: है
0: जी
1: बादल
0: जी
1: को कि किस बात का तुम्हें अभिमान है, मेरे नैन तो दिन रैन झरते
0: जी
1: हैं, तुम तो केवल इस वर्षा ऋतु में बरसते हो।
0: जी आपने बात करते हुए कहा कि धीमे धीमे तीन ताल में,
1: जी
0: तो वो कैसा होगा धीमा तीन ताल, मतलब
1: जी गति का एक विशेष संबंध है संगीत के साथ, और उससे मुझे लगता है कि कई बार ऐसा होता है कि यही बंदिश यदि हम बढ़ी लय में या तेज गा दें तो उसमें जो भाव है वो शायद एकदम नष्ट हो जाए, भ्रष्ट हो जाए। तो अब आपको हम बताते हैं कि देखिए गति से क्या क्या मजा भी आ सकता है और क्या कहर भी ढा सकता है।

0: अब दूसरी बंदिश के बारे में।
1: जी, ये एक ताल में निबद्ध है, 12 मात्रा का ये ताल है, और मियां मल्हार में तो स्वाभाविक है कि उसी में गुरुजी ने बनाई है ये रचना। और बोल इस प्रकार हैं, बदरिया आई रे गरजे घोर बरसे जोर, दामिनी कौंध चौंके जागी से जरिया। के जो शब्द हैं, जो साहित्य है, उनको एक ही ढंग से लगाना पड़ता है। बाद में आप उसका उसकी बढ़त कर सकते हैं, लेकिन उसे सजाने के लिए, ताकि वो गहने की तरह गढ़ा हुआ लगे, तो वो शब्द आप देखेंगे कि कैसे वो गढ़े गए हैं। बदरिया आई रे गरजे घोर बरसे जोर, दामिनी कौंध चौंके जागी से जरिया। बिजली देख के जो नायिका है वो चौंक गई सेज से। पवन की झकझोर बूंद झमाझम किशोर, राम रंग अटा झरे भीगी अमोल चुनरिया।

0: संगीत सरिता में आप सुन रहे हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा, प्रस्तुति प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल की। संगतकार हैं हारमोनियम पर सुधीर नायक, तबले पर संगत की अनीश प्रधान ने, ध्वन्यांकन चित्रलेखा जैन, तकनीकी सहयोग विनीता ढोलकिया।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश।

प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी सुनने वालों को सविता सिंह का नमस्कार।

फरे फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। शब्दकार मजरूह सुल्तानपुरी थे, संगीतकार अनिल विश्वास। आज भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं, हम नमन कर रहे हैं पार्श्व गायक किशोर कुमार को। लीजिए अब सुनिए फंटूश फिल्म का ये गाना जिसे किशोर कुमार ने गाया है, साहिल लुधियानवी ने लिखा है और एस टी बर्मन ने तर्स बनाई है।

0: लटके।
1: किशोर कुमार की आवाज में लीजिए अब सुने न्यू दिल्ली फिल्म का ये गाना कि शैलेंद्र ने गीत लिखे हैं और शंकर जयकिशन ने धुन बनाई है।

0: लटके।
1: किशोर कुमार की आवाज में लीजिए अब सुने न्यू दिल्ली फिल्म का ये गाना। शैलेंद्र ने गीत लिखे हैं और शंकर जयकिशन ने धुन बनाई है।
2: अरे भाई निकल के आ घर से, आ घर से। अरे भाई निकल के आ घर से, आ घर से। दुनिया की रौनक देख फिर से, देख ले फिर से। दुनिया की रौनक देख फिर से, देख ले फिर से। हाय अरे भाई निकल के आ घर से, आ घर से। अरे भाई

0: बिजली की रेल को छोड़ा, कल चांद और तारों में पहुंचेगा एटमी घोड़ा।
1: अरे भाई अरे भाई,
0: अरे भाई निकल के आघर से आघर से, दुनिया की रौनक देख फिर से, देख ले फिर से। अरे भाई निकल के

0: কেন ভাবেন অকারণে বংশীবাবু ও কল জো থাকল রহা হোগা আগে কি সোচ ক্যা হোগা अरे कल जो था कल रहा होगा आगे की सोच क्या होगा टूटी पुरानी ढपली पे तू कल का मरसिया मत गा अरे भाई निकल के आ घर से आ घर से अरे भाई निकल के आ घर से
1: ऐसी बंसिया
2: हाउस नंबर 44 फिल्म का ये गाना किशोर कुमार की आवाज
3: बजाई श्यामा सुध बिस राई तरे रे तरे रे तरे रे रे रे
4: भूल गया यार
3: तरे रे तेरे रे तेरे रे रे रे ऊंचे सुर में गाए जा मस्ती में लहराए जा दुनिया

दुनिया के बोझ को सर से उतार दे, चिंता के भूत को बंदूक मार दे। क्यों भाई मैंने ठीक कहा, हाँ हाँ तुमने ठीक कहा, अरे तब फिर मैंने ठीक कहा। ऊंचे सुर में गाए जा, मस्ती में लहराए जा।

0: दुनिया की गाड़ियाँ चलती है झूठ पर, दुनिया को मार दे बाटे के बूट पर है। दुनिया की गाड़ियाँ चलती है झूठ पर, दुनिया को मार दे बाटे के बूट पर। क्यों भाई मैंने ठीक कहा?
1: हाँ हाँ तुमने ठीक कहा।
0: अरे तब फिर मैंने ठीक कहा, ऊंचे सुर में गाए जा, मस्ती में लहराए जा, दुनिया के बाद

ऊंचे सुर में गाए जा, मस्ती में लहराए जा, दुनिया के बाजार में अपना बैंड बजाए जा। दुनिया के बोझ

0: दुनिया के फेर में पढ़ना फजूल है, जिंदगी उसी की है जो कि डैम फूल है। हाँ, दुनिया के फेर में पढ़ना फजूल है, जिंदगी उसी की है जो कि डैम फूल है। क्यों भाई मैंने ठीक कहा?
1: तुमने बिल्कुल ठीक कहा।
0: ऊंचे सुर में गाए जा, मस्ती में लहराए जा, दुनिया के बाजार में अपना बैंड बजाए जा।
2: किशोर कुमार की आवाज़ में साहिल लुधियानवी का लिखा हुआ ये गीत आप सुन रहे थे। संगीत निर्देशन एसटी बर्मन का था और फिल्म का नाम हाउस नंबर 44। भूली बिसरे गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। आइए इस कार्यक्रम में एक बहुत छोटा सा अंतराल लेते हैं।

0: मुनीम जी, फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। किशोर कुमार की आवाज थी, साहिल लुधियानवी के बोल थे, एसटी बर्मन की तर्ज थी।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत, सिर्फ विविध भारती पर।
4: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
5: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
4: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
5: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
6: सखी सहेली।

0: चाहे कोई खुश हो चाहे गालियां हजार दे,
1: अरे मास्टर राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे।
2: के दांत ली करो तो मुझको जेल भेज दो, सूंघने में क्या है ये जवाब थानेदार।

0: शरीर की हवा निकल गई।
1: जैक लगाओ, किक किक किक किक, ट्रेनिंग पहिया, अरे पंपिंग।

टैक्सी ड्राइवर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आवाजें किशोर कुमार और साथियों की थी। साहिल लुधियानवी ने इस गीत को लिखा था। आज सुरों के जादूगर महान पार्श्व गायक किशोर कुमार की जयंती है, उनकी आवाज को सादर नमन। सुनते हैं अधिकार फिल्म में गीत।

0: की पगड़ी, उसके सर पे दुनिया गोरख धंधा, गुरु घंटाल सभी से कहते झपट के डालो फंदा। नमक मिर्ची गरम मसाला, कपड़े वाला जूते वाला, सब में है गड़बड़ घोटाला, दूध में पानी दवा में पानी, सब में रगड़म रगड़ा, कमरा है तो पगड़ी और पगड़ी है तो पकड़ा, हाँ पंजा छक्का सत्ता अट्ठा, पैसे की है लठम लट्ठा, पैसा बनाए भैया भाभी चाची और चाचा जी।
1: किशोर कुमार की आवाज में ये अधिकार फिल्म का गीत अभी आपने सुना। संगीतकार थे अनिल विश्वास।
2: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
3: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं आती,
2: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
3: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
2: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: कसूर आपका, हुजूर आप।

लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट राइट अबाउट टर्न।

बाहर फिल्म का गाना आप किशोर कुमार की आवाज में सुन रहे थे। इसी गाने के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम यह समाप्त होता है।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम, जिसे हम अपने आकाशवाणी सासाराम से रिले कर रहे थे। अब हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:30 हो रहे हैं। लीजिए सुनिए प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास।

नई सुबह का नया सवेरा, आप सभी श्रोताओं का साथ और सूरज की ये प्यारी प्यारी किरणें तो ऐसे में हम लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को सावन के इस पवित्र महीने और आज पूरे भारतवर्ष में मनाए जाने वाले चेहल्लुम पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए इसी के साथ करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत आज के सुविचार से। जी हाँ, प्रख्यात भारतीय स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का कहना है कि याद रखें, अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना सबसे बड़ा अपराध है।

तो आपको बता दें कि 1956 में आज ही के दिन भारत और एशिया का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा ट्रांबे में शुरू हुआ था। आज 4 अगस्त को 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। 1967 में आज ही के दिन विश्व के सबसे लंबे बांध नागार्जुन सागर बांध का निर्माण कार्य पूरा हुआ था। 2004 में नासा ने एल्टिक्स सुपर कंप्यूटर केसी को कल्पना चावला नाम दिया था। जी हाँ, आज ही की वो तारीख रही जब 2004 में नासा ने ऐसा किया और कल्पना चावला को सम्मानित किया उनके मरणोपरांत। 2008 में आज ही के दिन भारतीय सरकार ने भारतीय जहाजरानी निगम को नवरत्न का दर्जा दिया। और अब 4 अगस्त को जन्मे कुछ प्रमुख भारतीय व्यक्तियों पर डालते हैं नज़र। तो आपको बता दें कि आज ही की वो तारीख रही जब 1929 में भारत के महान पार्श्व गायक अभिनेता और निर्देशक किशोर कुमार का जन्म मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ था। जी हाँ, हम सभी के दिलों की धड़कन सदाबहार गायक किशोर कुमार की आज जयंती है और आज उनकी जयंती पर हम उन्हें सादर नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। इसी के साथ बता दें कि 4 अगस्त को 1924 में प्रसिद्ध भारतीय साहित्यकार इंदु प्रकाश पांडे का भी जन्म हुआ था। 1730 में आज ही के दिन भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध मराठा वीर सदाशिवराव भाऊ का भी जन्म हुआ। 1522 में आज ही के दिन मेवाड़ के शासक और महाराणा प्रताप के पिता राणा उदय सिंह का भी जन्म हुआ। और अब थोड़ी सी जानकारी लेते हैं 4 अगस्त को दिवंगत हुए कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में। तो बता दें कि 1937 में आज ही के दिन भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार और पुरातत्व के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान काशी प्रसाद जायसवाल का निधन हो गया। 1981 में आज ही के दिन भारत के प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री और शिक्षाविद परशुराम मिश्रा का भी निधन हो गया। भारत की प्रसिद्ध लेखिका और उड़ीसा की पहली मुख्यमंत्री नंदिनी सत्यपति का निधन भी आज ही के दिन 2006 में हुआ। 4 अगस्त को 2020 में भारतीय रंगमंच के प्रसिद्ध निर्देशक और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पूर्व निदेशक इब्राहिम अलका जी का भी निधन हो गया। और श्रोताओं, आज 4 अगस्त को मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण दिवस की बात करें तो आज पूरे विश्व में विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है। तो ये थी थोड़ी सी जानकारी 4 अगस्त के इतिहास के बारे में। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि अभी चल रहा है सावन का पवित्र महीना और कल सावन की पहली सोमवारी थी, जिसके अवसर पर पूरे भारत में हर जगह जहां भी शिवलिंग है, भगवान शिव के भक्त हैं, सभी ने कल जल अर्पित किया है। और आपको बता दें कि इस जल अर्पित करने के पीछे भी एक कहानी है। हम आपको बताना चाहेंगे कि समुद्र मंथन के दौरान निकले हलाहल विष को भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए अपने कंठ में धारण किया था, जिसकी जलन को शांत करने के लिए देवताओं ने इस पवित्र सावन महीने में उन पर जल अर्पित करने का काम किया। और तभी से हर साल हम लोग सावन के इस पवित्र महीने में भगवान शिव पर जल अर्पित करते हैं। इसी तरह एक और भी कहानी है, जो कि माता पार्वती ने शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए इसी पवित्र सावन महीने में कठोर तपस्या की थी। तो इसलिए भी सावन के इस पवित्र महीने की अपरंपार आपको हम बता दें कि बहुत ही पवित्रता है और हम सभी शिव भक्त भगवान शिव को इस पूरे महीने में जल अर्पित करते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं। और अब इसी के साथ

आते हैं आपको एक शिव भक्ति से ओतप्रोत ये बेहद ही खूबसूरत भक्ति रचना। जी हाँ, तृप्ति शाकिया की सुरीली आवाज़ है, अनिल शर्मा के बोल हैं, संगीतकार हैं अजय प्रसन्ना और एल्बम है शिव तेरा साया।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: जी हाँ श्रोताओं, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। और अब आइए स्थानीय सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर डालते हैं नज़र। तो आपको बता दें कि रोहतास जिला के शिवसागर प्रखंड अंतर्गत कोनार गांव निवासी प्रशांत किशोर के पटना के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बड़ी जीत पर जश्न का माहौल है। जी हाँ, कोनार गांव में उत्सव जैसा माहौल है और कार्यकर्ता तो बिल्कुल झूम रहे हैं, चारों तरफ है खुशी का माहौल। कल सावन की पहली सोमवारी पर रोहतास जिला के विश्व प्रसिद्ध गुप्ता धाम में शिव भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा शिवलिंग पर जल अर्पित करने के लिए। हर हर महादेव और बोल बम के जय घोष से गूंजता रहा गुप्ता धाम, सुरक्षा के रहे पुख्ता इंतजाम। कैमूर जिले में विज्ञान शिक्षकों के लिए एक दिवसीय उन्मुखीकरण एवं प्रशिक्षण कार्यशाला का सफल आयोजन कल सोमवार को पीएम श्री प्लस टू उच्च विद्यालय भभुआ में संपन्न हो गया। इस कार्यशाला में शिक्षकों को नवाचार की दी गई जानकारी। रोहतास जिले में भी कल एक कार्यशाला हुआ, जिसमें राष्ट्रीय विज्ञान कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन पर शिक्षकों को दिया गया विशेष प्रशिक्षण। रोहतास जिले के सदर अस्पताल में कल ईएस ने निरीक्षण कर इमरजेंसी सेवाओं में सुधार के दिए निर्देश। रोहतास जिले के सदर अस्पताल में अंडरग्राउंड होगी बिजली आपूर्ति, ड्रिलिंग कार्य शुरू। जी हां, सदर अस्पताल की विद्युत व्यवस्था को अधिक सुरक्षित और निर्बाध बनाने की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम अस्पताल के द्वारा उठाया गया है। पहली सोमवारी पर कैमूर जिले के मुंजेश्वरी धाम में श्रद्धालुओं ने कल किया जलाभिषेक। हर हर महादेव किनारे से पवरा पहाड़ी गुंजायमान रही, शिव भक्तों ने विधि विधान से किया पूजन। कल रोहतास जिला के डेहरी में मुख्य पार्षद के नेतृत्व में शोक सभा कर ईओ को दी गई श्रद्धांजलि। नगर परिषद कार्यालय तो खुला लेकिन कामकाज रहा ठप। जी हां, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी डॉक्टर विमल कुमार की शनिवार रात हुई हत्या के बाद कल सोमवार को नगर परिषद कार्यालय डेहरी जरूर खुला लेकिन कामकाज पूरी तरह ठप रहा। कार्यालय कर्मियों में हत्या को लेकर भारी गुस्सा और दिवंगत अधिकारी के प्रति गहरा सम्मान दिखाई दिया। संझौली प्रखंड, जी हां, रोहतास जिला के संझौली प्रखंड मुख्यालय सभागार में आगामी 5 अगस्त को दोपहर 12 बजे से पंचायत समिति की सामान्य बैठक होगी, जिसके आलोक में कार्यों की प्रगति की समीक्षा वीडियो करेंगी। सहकार

बैंकों की 6 मांगों पर सरकार गंभीर। सासाराम भभुआ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक सह बिहार राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष ने कहा है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में सहकारी बैंकों और पैक्स से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से मिला है। अध्यक्ष ने बताया है कि बैठक में निम्नलिखित मुख्य मांगें रखी गईं। किसानों को 0% ब्याज दर पर केसीसी ऋण उपलब्ध कराना, धान अधिप्राप्ति के लिए लिए जाने वाले ऋण पर राज्य सरकार के गारंटी शुल्क से छूट देना, पैक्स के माध्यम से पीडीएस का संचालन कराना, कमजोर जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों का पुनर्जीवीकरण करना, सहकारी बैंकों में सरकारी राशि जमा कराना, धान अधिप्राप्ति CMR और राज्य खाद्य निगम से जुड़े बकाया भुगतान के साथ अतिरिक्त ब्याज को भी माफ करना। उन्होंने कहा कि इन मांगों के लागू होने से रोहतास सहित पूरे बिहार के किसानों और पैक्सों को सीधा लाभ मिलेगा। छह वर्ष पूरा होने पर नई शिक्षा नीति पर कल रोहतास जिला के सूर्यपुरा में आयोजित की गई संगोष्ठी। संगोष्ठी का विषय रहा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 6 वर्ष, उपलब्धियां, चुनौतियां और भविष्य की शिक्षा। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर अलाउद्दीन अजीज जी ने की, जबकि संचालन सहायक प्राध्यापक डॉक्टर नित्यानंद राय ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में इंदु तपेश्वर सिंह महिला कॉलेज विक्रमगंज के प्राचार्य डॉक्टर विनोद कुमार सिंह थे। वक्ता डॉक्टर नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की शिक्षा व्यवस्था पर प्रकाश डालते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, नवाचार, कौशल विकास तथा रोजगारोन्मुख शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था को अधिक समावेशी, गुणवत्तापूर्ण और कौशल आधारित बनाने की भी ये एक ऐतिहासिक पहल है। सदगुरु सदफल देव, जी हाँ, सदगुरु सदफल देव जी महाराज की जयंती पर समारोह की तैयारी शुरू। विहंगम योग के प्रणेता अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव महाराज जी की 139वीं जयंती के अवसर पर रोहतास जिले के विक्रमगंज में 2 दिवसीय विहंगम योग समारोह की तैयारियां विधिवत पूजा पाठ के साथ शुरू हो गई हैं। कार्यक्रम स्थल है अनुमंडल कोर्ट के समीप करियवा बाल धारूपुर। बिहार संरक्षक रामचंद्र तिवारी ने बताया कि समारोह के दौरान 5101 कुंडीय विश्व शांति वैदिक महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। यह समारोह आगामी 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक आयोजित होगा। और इसी के साथ आज 4 अगस्त को पूरे भारत देश में मनाया जा रहा है चेहल्लुम। चेहल्लुम पर्व के अवसर पर रोहतास जिले में 365 जगहों पर दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। सासाराम शहर में 8 दंडाधिकारी और 8 पुलिस पदाधिकारी पालीवार वाहन से गश्ती करेंगे। रोहतास DM और SP ने इस बारे में निर्देश भी जारी किया है ताकि विधि व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बनाया जाए, आपसी भाईचारे, सामाजिक सद्भाव और शांति के लिए प्रयास भी किए गए हैं।

रोहतास डीएम ने कहा है कि ताजिया जुलूस केवल सक्षम प्राधिकार से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत पूर्व स्वीकृत एवं निर्धारित मार्ग से ही संचालित होंगे। किसी भी परिस्थिति में जुलूस के मार्ग में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी। जुलूस में डीजे का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इसके अतिरिक्त अवैध हथियार, उत्तेजक नारे, अशोभनीय प्रदर्शन, पटाखों के उपयोग और कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाली किसी भी गतिविधि पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिला पदाधिकारी ने कहा है कि सभी चिन्हित स्थलों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल और दंडाधिकारी मौजूद रहेंगे।

और श्रोताओं, इसी के साथ ये जो स्थानीय सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ आपने सुनी, इसके बाद अब समय है कि हम आपको सुनवाएं एक बेहद ही खूबसूरत गीत। जी हाँ, जुबीन की आवाज़ में हमने इस गीत को लिया है। सैयद कादरी के बोल हैं, प्रीतम का संगीत है और फिल्म है गैंगस्टर।

और श्रोताओं, अब डालते हैं मौसम पर नज़र। तो आपको बता दें कि मौसम विभाग से प्राप्त पूर्वानुमानों के अनुसार आज रोहतास जिला में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दिन और रात के समय बारिश होने की संभावना भी बनी हुई है। और इसी के साथ अब समाचार पत्रों की सुर्खियों पर डालते हैं नज़र। तो सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से अपने मुख्य पृष्ठ पर छापा है कि जन सुराज के प्रशांत किशोर ने 19,324 वोट से जीत हासिल की है। जी हाँ, बाकी पूर्व चुनाव में प्रशांत किशोर ने जीत हासिल की है, नीरज सिन्हा को उन्होंने हराया है। और 1995 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी नए दल ने इस सीट को जीता है। तो ये सभी अखबारों की सुर्खियां हैं। और नए वोटरों का साथ मिला है प्रशांत किशोर को बाकीपुर के उपचुनाव में। तो जन सुराज की ये पहली ऐतिहासिक जीत भी कही जा सकती है। और इसी के साथ आइए खेल समाचारों पर भी डालते हैं नज़र। तो आपको बता दें कि भारत को सौंपी गई राष्ट्रमंडल खेलों की बैटन। जी हाँ, दुनिया को दिया गया अहमदाबाद आने का न्योता। जी हाँ, राष्ट्रमंडल खेल जो कि काफ़ी दिनों से चल रहे थे, उसका समापन रविवार को हो गया और अगली बार इसकी मेज़बानी भारत देश करेगा। इसी के साथ हर्षिता बनी टूर डी फ्रांस फ्रेम का हिस्सा। भारत की युवा साइकिलिस्ट हर्षिता जाखड़ ने प्रतिष्ठित टूर डी फ्रांस फेम्स का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया है। और श्रोताओं, आज किशोर कुमार का जन्मदिन है। जी हाँ, भारत के महान पार्श्व गायक, अभिनेता और निर्देशक हैं किशोर कुमार, जिनका आज जयंती है। और इस मशहूर पार्श्व गायक को हम आज श्रद्धांजलि देंगे उनके एक बेहद ही खूबसूरत गीत, जिसे हमने चुना है शराबी फिल्म से। प्रकाश मेहरा का लिखा हुआ ये गीत है, संगीत है बाप्पी लहरी का। और आपको बता दें कि किशोर कुमार को इस गीत के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिया गया था। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, ये गीत हम आपको नहीं सुनवा पा रहे हैं, लेकिन किशोर कुमार को हम इस गीत के माध्यम से आज याद कर रहे हैं। जी हाँ श्रोताओं, किशोर कुमार गंभीर गाने भी उतना ही डूब कर गाते थे जितने मस्ती वाले गीत, तो उन्हें सादर नमन करते हैं। और अब इसी के साथ नमस्ते रोहतास कार्यक्रम से मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार।

0: अभी तो गर्मियाँ शुरू हुई है और साथ साथ 1000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल 0 आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। संसदीय समिति ने फेसबुक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने पर मेटा की आलोचना की। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जकरबर्ग से माफी की मांग की। एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज सुबह नई दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा राज्य सरकारें हालिया विरोध प्रदर्शनों में विद्यार्थियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के पास समझौता करने का एक आखिरी मौका, ईरान ने बातचीत की खबरों का खंडन किया। और खेलों में भारतीय खिलाड़ी आज कोरिया मास्टर्स 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना अभियान शुरू करेंगे। और अब आइए समाचार विस्तार से कर लेते हैं। सूचना और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। कल नई दिल्ली में हुई एक बैठक में भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने के लिए मेटा इंडिया की आलोचना की। बैठक के बाद श्री दुबे ने कहा कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग से इसके लिए माफी मांगने की मांग की है।
3: ये माफीनामा जकरबर्ग के तरफ से आना चाहिए और ये जकरबर्ग नहीं देते हैं तो जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है उनको सेक्शन 79 में, वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उनसे वापस ले लेना चाहिए। महिलाओं के कंटेंट का वो उतारते नहीं है, भारत सरकार के नियम बड़े सख्त हैं और इनकी जो पॉलिसी है कि ये जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को नहीं मानते हैं। इन सारी चीजों से सेफ हार्बर हटाने की बात करनी चाहिए।
2: राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक मंगल मिलन आज संसद भवन में आयोजित की जाएगी।

0: है कि इस बैठक का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। पिछली बैठक 28 जुलाई को हुई थी, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के अलग हुए गुट, नवगठित नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI के सांसदों ने भी गठबंधन की बैठक में भाग लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली सरकार और विभिन्न राज्यों की सरकारें जंतर मंतर और देश में अन्य जगहों पर हाल ही के प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों और प्रदर्शनकारियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के नेतृत्व में 3 न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई को न्यायालय के आदेश में पहले आपराधिक मामलों से जुड़े प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई जारी रखने की अनुमति का तात्पर्य केवल गंभीर और जघन्य अपराधों से जुड़े लोगों से था। एक रिपोर्ट।
1: अदालत नीट पेपर लीक के विरोध में जंतर मंतर पर 20 जुलाई को और अन्य जगहों पर प्रदर्शन में विद्यार्थियों पर पुलिस की अत्यधिक सख्त कार्रवाई के आरोप से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। प्रदर्शन में घायल पुलिस अधिकारियों के परिवारों ने भी यह आरोप लगाते हुए प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। पीठ ने कहा कि वह पुलिस अधिकारियों की विशेष जांच टीम गठित करने या सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में समिति नियुक्त करने पर विचार कर रही है, ताकि पुलिस की अत्यधिक कड़ी कार्रवाई के आरोपों की जांच की जा सके। अब इस मामले की सुनवाई 18 अगस्त को होगी। समाचार कक्ष से मैं चाहत।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और उज्बेकिस्तान ने कल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान महत्वपूर्ण खनिजों, खनन, व्यापार, ऊर्जा, अवसंरचना, रक्षा और शिक्षा क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने का फैसला किया। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान ये बैठक हुई। विदेश नीति के मुद्दों पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान का आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने पर समान दृष्टिकोण है।
2: हम इस बात की सराहना करते हैं कि उज्बेकिस्तान की सरकार और वहां के लोगों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए दृढ़ रुख अपनाया है। आपकी अपनी चुनौतियां और आपके अपने अनुभव हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम दोनों ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस दिखाई है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और असैन्य विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। कल नई दिल्ली में आयोजित 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय असैन्य सेवा दिवस समारोह में श्री सिंह ने कहा कि सैन्य और असैन्य दोनों सेवाएं राष्ट्र सर्वोपरि के लिए समान रूप से प्रतिबद्ध हैं।
3: आज भारत में यूनिफॉर्म और सिविल सर्विस के दोनों का एक ही कमिटमेंट है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जब उद्देश्य एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति राष्ट्रीय सामर्थ्य में बदल जाती है। सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच स्ट्रक्चर्ड क्रॉस एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।
1: ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में शुरू होगी। एक रिपोर्ट।
4: कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सचिव रचना शाह इस बैठक का उद्घाटन करेंगी। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि भागीदारी करेंगे। सदस्य संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे। हैदराबाद में होने वाली ये बैठक जून में वर्चुअली रूप से आयोजित पहले ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक के परिणामों पर आधारित। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने का आखिरी मौका दिया गया है। श्री ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान और कई खाड़ी देशों के कूटनीति आग्रह करने के बाद नियोजित सैन्य हमलों को रोक दिया गया है। श्री ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए बातचीत जारी रखने की पहल को पहला चरण बताया। वहीं दूसरे चरण में ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण पर

0: ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने अमरीका के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बातचीत की खबरों का भी खंडन किया है। श्री बगाई ने कहा कि ईरान और ओमान के बीच हाल ही में हुआ समुद्री समझौता केवल जहाजों की सुरक्षित आवाजाही तक सीमित है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है। एक रिपोर्ट।
1: प्राधिकरण ने बताया कि प्रतिबंधित किए गए उत्पादों में शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। प्राधिकरण ने कहा कि कंपनी की वेबसाइट पर बेचे जा रहे खाद्य उत्पादों पर 100% प्राकृतिक, 100% शुद्ध, 100% शुद्धता की गारंटी, 100% जैविक और 100% नारियल पानी जैसे भ्रामक दावे पाए गए हैं। प्राधिकरण के अनुसार 100% के दावे

0: नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। प्राधिकरण ने कहा कि कंपनी की वेबसाइट पर बेचे जा रहे खाद्य उत्पादों पर 100% प्राकृतिक, 100% शुद्ध, 100% शुद्धता की गारंटी, 100% जैविक और 100% नारियल पानी जैसे भ्रामक दावे पाए गए हैं। प्राधिकरण के अनुसार 100% के दावे FSS विज्ञापन और दावे विनियम 2018 का उल्लंघन है। डाबर इंडिया ने आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो नोटिस में उल्लिखित बातों की जांच कर रहा है। ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: और अब मौसम का रुख कर लेते हैं। उड़ीसा में प्रमुख नदियों और उनकी सहायक नदियों में जलस्तर घटने के कारण बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हीराकुंड बांध के 4 और द्वार बंद कर दिए गए हैं।
2: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है क्योंकि मुख्य नदियां में पानी का स्तर कम हो रहा है। हीराकुद बांध अधिकारियों ने 4 और स्लुइस गेट बंद कर दिए हैं और अब बाढ़ का पानी 13 गेटों से नियंत्रित तरीके से छोड़ा जा रहा है। राहत बचाव और पुनर्वास का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, खासकर बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर जिलों में जहाँ लोग बहुत मुश्किल हालात में है। राज्य सरकार का कहना है कि प्रभावित परिवारों को भोजन, सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं, पशु चिकित्सा सेवाएं, पॉलिथिन सीट और अन्य जरूरी मदद दी जा रही है। जैसे जैसे बाढ़ का पानी कम हो रहा है, कई जिलों में स्कूल फिर से खुल गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने 4 और 5 अगस्त को मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग ने असम से सटे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन मौसमीय परिस्थितियों का प्रभाव असम के कचार, दिमा हसाव, पश्चिम कार्बी आंगलोंग, विश्वनाथ, लखीमपुर, धेमाजी और तिनसुकिया जिलों पर पड़ सकता है। विभाग ने असम से सटे नागालैंड के अधिकांश जिलों के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है, जिसका प्रभाव सराइदेव, शिवसागर, जोरहाट और गोलाघाट जिलों पर पड़ सकता है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने संबंधित जिलों के लोगों से सभी आवश्यक सावधानियां बरतने और सतर्क रहने की अपील की है। कल बाढ़ से संबंधित 2 और मौतें दर्ज होने के साथ ही राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: केरलम के 14 में से 12 जिलों में आज मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा की संभावना है। विभाग के अनुसार दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरलम, माहे, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिन के समय तेज वर्षा होने की उम्मीद है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ तूफान की संभावना व्यक्त की गई है। और अब बात खेलों की कर लेते हैं। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी आज से दक्षिण कोरिया में शुरू हो रहे BWF सुपर 300 टूर्नामेंट कोरिया मास्टर्स में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। ये टूर्नामेंट 9 अगस्त तक चलेगा। सभी की निगाहें 17 वर्षीय तन्वी शर्मा पर होंगी, जिन्होंने ताइपे ओपन में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतकर इस टूर्नामेंट में प्रवेश किया है। तन्वी भारत की महिला एकल टीम का नेतृत्व करेंगी। पुरुष एकल में किदांबी श्रीकांत अमरीका ओपन में उपविजेता रहने और पूरी तरह फिट कर वापसी कर रहे हैं। पुरुष एकल टीम में श्रीकांत के साथ किरण जॉर्ज, मिथुन मंजुनाथ, थारुन मन्नपल्ली, रौनक चौहान और सनेथ दयानंद शामिल हैं। वहीं महिला युगल में सोनाली सिंह और ऋतिका ठाकुर के साथ प्रिया कोंजिंग बाम और श्रुति मिश्रा प्रतिस्पर्धा करेंगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
4: धन्यवाद फरहत। बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात में विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आज आने की खबरें आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, नवीन के गढ़ में पीके का चमत्कार। जनसत्ता लिखता है, जीते प्रशांत, विरोधी अशांत। भाजपा के राष्ट्राध्यक्ष का किला ढहा, उपचुनाव में करारी हार। हंगामे के बीच सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का विधेयक पारित। गृहमंत्री अमित शाह के सदन में नहीं आने पर विपक्ष का हंगामा जारी, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। दैनिक जागरण ने जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट के शब्द को प्रकाशित किए हैं, छात्रों के प्रदर्शन की आड़ में अपराधी रियायत के हकदार नहीं। ग्लासगो के बाद नजरें अहमदाबाद पर। भारत 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों को सिर्फ एक आयोजन के तौर पर नहीं बल्कि 2036 के अहमदाबाद ओलंपिक दावेदारी के लिए मेगा ड्रेस रिहर्सल के रूप में देख रहा है। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, अलविदा ग्लासगो, अहमदाबाद को 2030 के गेम्स की मशाल मिली। ईरान से बातचीत शुरू, डोनाल्ड ट्रंप ने टाला संभावित बड़ा सैन्य हमला, लोकसत्य की सुर्खी है। पत्र ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द भी प्रकाशित किए हैं, कूटनीति की राह, बातचीत से बचेगी हजारों जिंदगियां। हिंदुस्तान ने इस विषय पर अपने संपादकीय पन्ने पर एक लेख भी प्रकाशित किया।

0: है। पत्र लिखता है, क्या ईरान पर काम करेगी नई अमरीकी रणनीति? विश्लेषण में कहा गया है कि अमरीका और ईरान के बीच जब तक बुनियादी सवालों के जवाब नहीं तलाशे जाते, युद्ध विराम का कोई फैसला अंतिम नहीं माना जाएगा। नवभारत टाइम्स ने देश में अंगदान को लेकर बढ़ रही जागरूकता का समाचार आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, अंगदान बढ़ा, रिकॉर्ड 20,000 से अधिक ट्रांसप्लांट। डिजिटल पोर्टल शुरू होने के बाद 5,00,000 से ज्यादा लोगों ने अंगदान की शपथ।
1: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसदीय समिति ने फेसबुक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने पर मेटा की आलोचना की। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग से माफी की मांग की। एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज नई दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, राज्य सरकारें हालिया विरोध प्रदर्शनों में विद्यार्थियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के पास समझौता करने का एक आखिरी मौका। ईरान ने बातचीत की खबरों का खंडन किया। और खेलों में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आज कोरिया मास्टर्स 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना अभियान शुरू करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: अभी आप समाचार प्रभात सुन रहे थे, इसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे थे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का सासाराम केंद्र FM 103.4 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:15 हुए हैं। अब आप सुनेंगे देशभक्ति संगीत कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज लीजिए सुनिए लीडर फिल्म से एक देशभक्ति गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और साथियों ने। गीत लिखा है शकील बदायूनी ने और संगीत है नौशाद का।

सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। लीडर फिल्म का ये देशभक्ति गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और साथियों के स्वर में। इसी के साथ हमारा आज का यह देशभक्ति संगीत कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से और अब आप सुनेंगे पत्रों पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम पसंद आपकी।

हमारे तमाम श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में, और हम लेकर हाजिर हैं आप सभी के लिए एक से बढ़कर एक आपके पसंदीदा गीत। सभी सुनने वालों को रागिनी का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी को चहलुम पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं, और चहलुम पर्व के इस अवसर पर हम भी ये बेहद ही खूबसूरत गीत आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर सुनवाने जा रहे हैं, कच्चे धागे फिल्म से। और फरमाइश करता है नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी बिहार के अक्रम हुसैन, वसीम अक्रम, आरिज वसीम, शमीम अक्रम, इशरत अक्रम, रुबीना वसीम, नदीम अक्रम, अमन अक्रम, बच्चू सैक, चीना सैक। और आप हैं कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान, बेगम निखत प्रवीण, नूर महल महसौल से हुमैरा नाज, सुमैरा नाज, अबीहा नाज, अरहान बाबू, हमजा बाबू, मुजम्मिल बाबू। और आप हैं हमारे नियमित श्रोता जी हाँ कोवात से शेख जफर हसन और राकेश रोशन। कलेर बिहार से हैं सदफ आरजू, साहिल अरमान, शमा प्रवीण, सादिया तस्नीम और अलीसा। वाराणसी उत्तर प्रदेश से किशोरी श्रीवास्तव, पिंकी श्रीवास्तव और संध्या श्रीवास्तव। थाना मोड़ गढ़नोखा रोहतास से हैं मुन्ना भाई मंसूरी, नजमुन निशा, सद्दाम मंसूरी, नगमा निशा, सिमरन अली, अरबाज मंसूरी, सैफ अली, शबाना शाहबाज और लाल बाबू। चलिए आप सभी को सुनवाते हैं बलिदान और शहादत के पर्व के अवसर पर जी हाँ कच्चे धागे फिल्म का ये गीत नुसरत फतेह अली खान की आवाज़ में। गीत और संगीत भी है नुसरत फतेह अली खान का।

श्रोताओं, चेहल्लुम पर्व के अवसर पर आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर हमने ये बेहद ही प्रसिद्ध कव्वाली आप सभी को सुनवाई। और हम बता दें कि ये कव्वाली जो आपने सुनी उसे गाया था, जी हाँ, भारत के सबसे महान और प्रसिद्ध कव्वाल नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने। तो इनकी आवाज़ में ये खूबसूरत कव्वाली आप सभी ने सुनी। और अब इसी के साथ कार्यक्रम में अगला गीत हम सुनवाने जा रहे हैं शराबी फिल्म से। ये हमने खुद से चुना है क्योंकि हमारे श्रोताओं ने अपने पत्रों में लिखा है कि आप अपनी पसंद से कोई सा भी गीत सुनवा दें। तो ज़रूर भाई, हम सुनवाएंगे आपको। और आप हैं ब्रह्मपुरा मनीगांछी से अच्छे लाल रॉय, पानो देवी, मुकेश कुमार रॉय, प्रेम कुमार और प्रिंस कुमार। ये हमारे श्रोता कोई सा भी गीत सुनना चाहे हैं, ये हैं ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, संचित वायाल। मौताला से हैं प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, करजा रिसोर्ट से सानवी देशमुख और सरवद देशमुख। ये हमारे श्रोता रिंगनी छत्तीसगढ़ के दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, इनकी भी फरमाइश कोई सा भी गीत सुनने की है। और दतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, चरडोंगरी पीपरिया से दुर्गा राम साहू। इन्होंने अपने पत्र में लिखा है, नमस्कार, कोई सा भी गीत सुनवा दें। तो जी बिल्कुल, हम आपको सुनवा रहे हैं शराबी फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। जी हाँ, आज भारत के महान पार्श्व गायक, अभिनेता और निर्देशक किशोर कुमार जी की जयंती है। तो चलिए उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और सुनते हैं शराबी फिल्म का उनकी आवाज़ में ये बेहद ही मशहूर गंभीर गीत।

0: जब कदम ही साथ ना दे तो मुसाफिर क्या करे। मंजिलें अपनी जगह हैं, रास्ते अपनी जगह। किशोर कुमार की खूबसूरत आवाज़ में अभी आपने शराबी फिल्म का ये गीत सुना। और आपको बता दें कि किशोर कुमार की आवाज़ में एक जादुई अपनापन था। उनके गाने के जो ये बोल हैं वो सीधे हमारे दिल पर लगते हैं। और जो ये बेताज बादशाह शुरू की महफिल सजाने वाला ये गायक था, इसने एक से बढ़कर एक गंभीर के साथ साथ मस्ती भरे गीत भी गाए, जो कि आज भी हमारी यादों में, हमारे दिल के जहन में कहीं ना कहीं हर समय गूंजते रहते हैं। तो आज उनकी जयंती है और हम उन्हें नमन कर रहे हैं। इसी के साथ अब कार्यक्रम में लीजिए, सुनिए ये संदेश।
1: तीनों कॉलेज में,
2: डोंट वरी,
1: फीस तो देखो।
3: क्या हाल है, क्या हुआ?
2: फीस की टेंशन,
3: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
4: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल।
3: वो कहाँ है?
4: मिठाई।
5: RBI कहता है,
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
0: पसंद आपके कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का सासाराम केंद्र। और अब कार्यक्रम में लेते हैं आदर्श नगर मलोट पंजाब से आए हुए इस पत्र को, जिसे लिखा है राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंगी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवांश शर्मा ने। गोकुल चौक गंगजला सहरसा से आप सभी हैं राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे, राकेश रंजन, राजीव रंजन, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम, कुमारी साक्षी, फलना झा। नया नगर सुपौल से हैं श्वेता रंजन, पप्पू जी, रजनीश कुमार, आनंद कुमार, गजेंद्र कुमार निराला। ताजपुर मोरबा से हैं भाई कारी राय कारी, मीना कारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक और ललन मिश्रा। ढोली सकरा से आप हैं जयंत कुमार बैरागी। तो आप सभी श्रोताओं के लिए सुनवा रहे हैं नाम फिल्म का गीत, जिसकी फरमाइश आप सभी श्रोताओं ने की थी। कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ है, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

और श्रोताओं, नाम फिल्म का ये गीत कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में एक और श्रोताओं ने, जी हाँ, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश ने भी सुनना चाहा था। इत्तेफाक की बात है कि बहुत सारे श्रोताओं ने इस गीत को सुनना चाहा था, तो हमने आप सबकी पसंद को पूरा कर दिया। और इसी के साथ कार्यक्रम में ये अंतिम गीत भरोसा फिल्म से महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की युगल आवाज़ में, जिसे सुनना चाहा है छत्तीसगढ़ भाटपारा दतरेंगी से झावेंद्र कुमार वर्मा और किशोर कुमार वर्मा ने, महादेव घाट अमलेश्वर से टोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश तारनी, सूरज, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रेयांश। और आप सबको सलाम, इस तरह का ये संदेश इस पत्र में लिखकर भेजा तेलंगाना भोंगीर विद्यानगर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, यूसुफुद्दीन, फरजान लल्ला, फरहान लल्ला, अजीज़ भाई और अब्दुल बाबा अंजाना ने। कोटवा नारायणपुर बावपट्टी बलिया से हैं ओम प्रकाश, उषा, अमित कुमार रॉय, हैप्पी रॉय। दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक, रोशनी रॉय, प्रांजल रॉय। शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश रॉय, प्रीति रॉय, नवनीत रॉय। तो लीजिए, सुनिए आप सब भरोसा फिल्म का गीत, जिसे लिखा राजेंद्र कृष्ण ने है और संगीत से संवारा रवि ने।

और श्रोताओं, हमारी भी मुलाकात आप सभी से बस इतनी ही सी रही, लेकिन वादा करते हैं कि कल फिर से इसी कार्यक्रम में आप सबसे मुलाकात होगी। तो मुझे यानी रागिनी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:45 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी पटना से प्रादेशिक समाचार। कृपया कीजिए थोड़ा सा इंतज़ार।

0: AIR at 90.
1: सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के सभी पेंशन धारियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। अपनी पेंशन बिना रुकावट के पाने हेतु यथाशीघ्र जीवन प्रमाणीकरण अवश्य कराएं। पंचायत या प्रखंड स्तर पर या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर आधार कार्ड या बैंक खाता संख्या या लाभार्थी संख्या लेकर जाएं एवं निःशुल्क जीवन प्रमाणीकरण कराकर प्रमाण पत्र प्राप्त करें। अतिवृद्ध एवं दिव्यांग पेंशन धारियों का बायोमेट्रिक के माध्यम से जीवन प्रमाणीकरण नहीं होने पर भौतिक सत्यापन की व्यवस्था की गई है। ध्यान दें, जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराने पर आपकी पेंशन बाधित हो सकती है। अपने पेंशन को निरंतर जारी रखने के लिए आज ही जीवन प्रमाणीकरण कराएं।
2: अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800-345-6262 पर संपर्क करें। समाज कल्याण विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: बरसात के मौसम में कई प्रकार के रोगों से पशु का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, जिससे पशुपालकों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।
4: इसलिए वर्षा ऋतु के दौरान कुछ अपनाने योग्य बातों का ध्यान रखें। बारिश से पहले पशुओं की पशुशाला के छत की मरम्मत कर दें ताकि पानी न टपके। पशुशाला की खिड़कियों को खुली रखें तथा गर्मी और उमस से बचने के लिए पंखों का प्रयोग करें। साफ सफाई का ध्यान रखें और पानी एकत्र न होने दें।
3: नियमित अंतराल पर कीटनाशक का भी छिड़काव करें। जानवरों को ज्यादा शारीरिक थकावट न होने दें और बार बार धूप में न लाएं।
4: कोशिश करें कि पशु को बाल्टी से साफ एवं ताज़ा पानी पिलाएं। दाने का भंडारण नमी रहित जगह पे करें।
5: संक्रामक रोगों के विरुद्ध अपने पशुओं का टीकाकरण करवा लें।
1: डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर जीते, भाजपा के नीरज कुमार को 19,324 मतों से किया पराजित। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, राज्य सरकारें हालिया विरोध प्रदर्शनों में छात्रों के नाम दर्ज एफआईआर वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया

0: अपना सकती हैं। प्रदेश में 9 से 17 अगस्त तक होगा हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारी की समीक्षा की। और मौसम विभाग ने आज भोजपुर, बक्सर, सारण, सीवान, पश्चिम चंपारण, वैशाली, समस्तीपुर, अररिया, कटिहार और किशनगंज जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर को जीत मिली है। उन्होंने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भाजपा के नीरज कुमार को 19,324 मतों के अंतर से पराजित किया है। प्रशांत किशोर को कुल 64,151 मत प्राप्त हुए, जबकि भाजपा के नीरज कुमार को 44,827 मत मिले हैं। राष्ट्रीय जनता दल की रेखा कुमारी 14,273 मतों के साथ तीसरे स्थान पर रही हैं। वे अपना जमानत भी नहीं बचा सकी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने प्रशांत किशोर को इस जीत के लिए बधाई दी है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने कल नई दिल्ली में मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने के संबंध में मुलाकात की। भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने के लिए मेटा इंडिया की आलोचना की है। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए श्री दुबे ने कहा कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग से इसके लिए माफी मांगने की मांग की है, और यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो धारा 79 के अंतर्गत उन्हें दी गई सेफ हार्बर प्रोटेक्शन वापस लिया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज FIR को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत FIR बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। समाचार कक्ष से अतहर सईद।
0: प्रदेश में 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान आयोजित किया जाएगा। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कल इस अभियान के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए सभी जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में बताया गया कि 12 अगस्त को राज्य के सभी जिलों में जिला स्तरीय भव्य तिरंगा यात्रा आयोजित की जाएगी। इस यात्रा में संबंधित जिले के प्रभारी मंत्री भी शामिल होंगे। वहीं 13 अगस्त को मुख्यमंत्री की उपस्थिति में राज्य स्तरीय तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है। एक रिपोर्ट।
2: प्राधिकरण ने बताया कि प्रतिबंधित किए गए उत्पादों में शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। प्राधिकरण ने कहा कि कंपनी की वेबसाइट पर बेचे जा रहे खाद्य उत्पादों पर 100% प्राकृतिक, 100% शुद्ध, 100% शुद्धता की गारंटी, 100% जैविक और 100% नारियल पानी जैसे भ्रामक दावे पाए गए हैं। प्राधिकरण के अनुसार 100% के दावे FSS विज्ञापन और दावे विनियम 2018 का उल्लंघन है। डाबर इंडिया ने आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो नोटिस में उल्लिखित बातों की जांच कर रहा है। ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस फर्जी खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चेतावनी दी है कि यदि दूध में मिलावट को तेजी से नहीं रोका गया तो इससे भारत की 87% आबादी को कैंसर का खतरा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि डब्ल्यू

0: द्वारा ऐसा कोई परामर्श जारी नहीं किया गया है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक मंगल मिलन आज संसद भवन में आयोजित की जाएगी। इस बैठक का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। पिछली बैठक 28 जुलाई को हुई थी, जिसमें तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए गुट नवगठित नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई के सांसदों ने भी भाग लिया था। आकाशवाणी पटना से प्रसारित होने वाले भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण समय में परिवर्तन किया गया है। 7 अगस्त से यह समाचार बुलेटिन संध्या 6:05 की जगह संध्या 5:30 से सुना जा सकता है। भोजपुरी समाचार बुलेटिन का प्रसारण आकाशवाणी पटना के साथ ही 101.6 MHz पर FM रेनबो चैनल पर भी सुना जा सकेगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में मानसून की सक्रियता से विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश हो रही है। राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकतर हिस्सों में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून की ट्रफ रेखा वर्तमान में पटना से होकर गुजर रही है। इसके प्रभाव से अगले 2 दिनों तक प्रदेश में बारिश की परिस्थितियां बनी रहेंगी। मौसम विभाग ने आज भोजपुर, बक्सर, सारण, सीवान, पश्चिम चंपारण, वैशाली, समस्तीपुर, अररिया, कटिहार और किशनगंज जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
2: दिनांक 4 अगस्त को राज्य के पश्चिम चंपारण, समस्तीपुर एवं वैशाली जिलों के एक या दो स्थानों पर अति भारी वर्षा तथा सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, अररिया, किशनगंज एवं कटिहार जिलों के एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। राज्य के सभी भागों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर हमारे अररिया संवाददाता ने बताया है कि जिले के विभिन्न भागों में देर रात से मूसलाधार बारिश हो रही है। इससे लोगों को एक तरफ गर्मी से राहत मिली है, वहीं कई स्थानों पर जल जमाव की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। इस बीच बांका जिले में बारिश के दौरान वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग झुलस गए हैं। प्रदेश के विभिन्न भागों में आज चेहल्लुम पूरे श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इमाम हुसैन की शहादत की याद में यह पर्व मनाया जाता है। इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर ताजिया, अलम और मातमी जुलूस निकाले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हजरत इमाम हुसैन और कर्बला के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी कुर्बानी अमर है और यह समाज को हर दौर में रास्ता दिखाती है। प्रदेश के नगर निकायों में सफाई कर्मियों और चालकों की हड़ताल के कारण साफ सफाई प्रभावित है। हड़ताल के 6ठे दिन आज भी विभिन्न स्थानों पर कूड़ा उठाव और निस्तारण का काम ठप है। बारिश के मौसम में गली मोहल्लों में कचरे का अंबार लगने से संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। हालांकि साफ सफाई की वैकल्पिक व्यवस्था का दावा किया गया है, लेकिन ये नाकाफी साबित हो रहा है। इधर नगर निगम प्रशासन ने सफाई व्यवस्था में बाधक डालने और अनुबंध की शर्तों के अनुरूप पर्याप्त मानव बल तथा वाहन उपलब्ध नहीं कराने के मामले में एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई की है। प्रशासन ने एजेंसियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है, साथ ही अतिरिक्त आर्थिक दंड भी लगाया है। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से विभिन्न पदों के लिए 6 अगस्त तक कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित की जा रही है। रेलवे ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 2 जोड़ी विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन जयनगर, लखनऊ और राजगीर वाराणसी के बीच परिचालित हो रही है। इधर श्रावणी मेले के मद्देनजर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने लखीसराय

के अशोक धाम पर 6 जोड़ी ट्रेनों का अस्थायी ठहराव करने का निर्णय लिया है। पटना के मोकामा और बरौनी के बीच राजेंद्र सेतु से समानांतर बने नए रेल पुल को चालू करने और दानापुर तथा सोनपुर मंडल के रेलवे स्टेशनों पर इंटरलॉकिंग कार्य होंगे। इसके मद्देनजर रेलवे ने 21 सितंबर से 4 अक्टूबर तक अलग अलग तिथियों पर 339 ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया है। वहीं 384 ट्रेन परिवर्तित मार्ग से चलाई जाएंगी। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने बांका जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के निजी सहायक ओम प्रकाश मंडल और रात्रि प्रहरी जागेश्वर मंडल को 1,26,000 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों की गिरफ्तारी बिल भुगतान के एवज में रिश्वत की मांग के आरोप में की गई है। इस मामले में 7 अन्य लोगों पर भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। मधुबनी जिले के जयनगर में पदस्थापित तत्कालीन एसडीएम गुलाम मुस्तफा की 49 लाख रुपए से अधिक चल और अचल संपत्ति जब्त कर ली गई। आय से अधिक मामले में निगरानी विभाग की टीम ने यह कार्रवाई की है। पटना पुलिस ने सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत सनिचरा मोड़ के पास वाहन जांच के दौरान एक चार पहिया वाहन से 35 लाख रुपए के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। अररिया जिले के सोनमनी गोदाम थाना क्षेत्र के डुब्बा टोली से एसएसबी की टीम ने नेपाल के रास्ते बिना पासपोर्ट वीजा भारत में प्रवेश करते 2 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया। एसएसबी के 56वीं बटालियन के द्वितीय कमान सह कमांडिंग अधिकारी नितिन गुप्ता ने यह जानकारी दी है। पटना पुलिस ने बाढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत बूढ़ी चक में पिछले दिनों हुई लूटपाट की घटना का उद्भेदन करते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। अपराधियों के पास से एक देसी पिस्तौल, कारतूस और लूटे गए चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं। राजधानी पटना में आज से 6 अगस्त तक 52वीं बिहार राज्य जूनियर बाल कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर के इंडोर हॉल में आयोजित इस प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न जिलों की 16 टीमें भाग लेंगी। सभी टीमों को 4 पूलों में विभाजित किया गया है। इस प्रतियोगिता के आधार पर बिहार टीम का चयन किया जाएगा। फ्रांस में संपन्न 19वें फेस्टिवल इंटरनेशनल शतरंज प्रतियोगिता में पटना के रयान मोहम्मद ने अंतर्राष्ट्रीय मास्टर नॉर्म प्राप्त किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने बांकीपुर उपचुनाव के परिणाम से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, प्रशांत ने भाजपा का बांकीपुर किला ढहा, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रशांत किशोर को जीत पर दी बधाई। दैनिक जागरण ने इसी खबर को अपनी लीड बनाते हुए लिखा है, भाजपा के गढ़ बांकीपुर में प्रशांत किशोर की सेंध। दैनिक भास्कर ने बर्निंग ट्रेन शीर्षक से लिखा है, समस्तीपुर सहरसा पैसेंजर में लगी आग, 500 यात्री बचे। प्रभात खबर लिखता है, राम मंदिर ट्रस्ट में हुआ बदलाव, आरएसएस के पूर्व सर कार्यवाह भैयाजी जोशी ने छोड़ा पालक का पद। राष्ट्रीय सागर का शीर्षक है, नीट पीजी परीक्षा एक ही शिफ्ट में होगी, घर के पास ही रहेगा सेंटर। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर जीते, भाजपा के नीरज कुमार को 19,324 मतों से किया पराजित। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, राज्य सरकारें हालिया विरोध प्रदर्शनों में छात्रों के नाम दर्ज एफआईआर वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं। प्रदेश में 9 से 17 अगस्त तक होगा हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारी की समीक्षा की। और मौसम विभाग ने आज भोजपुर, बक्सर, सारण, सीवान, पश्चिम चंपारण, वैशाली, समस्तीपुर, अररिया, कटिहार और किशनगंज जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है।
1: स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: आसमान में बिजली के चमकने, गरजने, कड़कने के समय यदि आप खुले में हो तो शीघ्रातिशीघ्र किसी पक्के मकान में शरण लें। जहां हैं वहीं रहें। हो सके तो पैरों के नीचे सूखी चीजें जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, बोरा या सूखे पत्ते रख लें। ऊंचे पेड़ के नीचे न खड़े हों। बिजली के सुचालक वस्तुओं से दूर रहें। समूह में न खड़े हों। रेडियो और टीवी पर मौसम के साफ होने का संदेश प्रसारित होने का इंतजार करें। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
3: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आकाशवाणी के पटना दरभंगा केंद्र से आइए अब सुनते हैं उर्दू कार्यक्रम अंजुमन।
4: ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम व्यूरर में आज हमारे सासाराम केंद्र से प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में संक्षिप्त जानकारी।

अब से थोड़ी देर बाद 9:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम गीत मालिका। 9:30 पर आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के विविध भारती केंद्र आज के फनकार कार्यक्रम के लिए। सुबह 10 से आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार। सुबह 10:05 पर हम लेकर आएंगे आकाशवाणी सासाराम से साप्ताहिक कार्यक्रम आवाज का प्रसारण। 10:30 पर आप सुनेंगे लोकमाधुरी कार्यक्रम में भोजपुरी एल्बम लोकगीत। 10:45 पर सुनिएगा रसधार कार्यक्रम में भोजपुरी एल्बम सॉन्ग।

रंग तरंग आकाशवाणी विविध भारती से इस कार्यक्रम का प्रसारण हम आज लेकर आएंगे पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 12 बजे तक। अपराह्न 12 बजे आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे हिंदी समाचार। विविध भारती के कार्यक्रम एक बार फिर आप सुनेंगे अपराह्न 12:05 से अपराह्न 2 बजे तक। दोपहर 2 बजे प्रादेशिक समाचार, 2:05 पर इलाकाई खबरें और 2:10 पर रोजगार सूचना हम रिले करेंगे आकाशवाणी पटना से। अपराह्न 2:15 पर सुनिएगा आकाशवाणी दिल्ली से मध्याह्न समाचार। 2:30 से लिए चलेंगे आपको आकाशवाणी के विविध भारती केंद्र, जहां आप बने रहेंगे शाम 5 बजे तक।

शाम 5 बजे आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे हिंदी समाचार। शाम 5:05 पर हम आकाशवाणी सासाराम से लेकर आएंगे उद्घोषणा और कार्यक्रम विवरण। शाम 5:10 पर वंदन कार्यक्रम में आप सुनेंगे भक्ति संगीत। युवा श्रोताओं के लिए युवाणी कार्यक्रम हम लेकर आएंगे शाम 5:30 पर। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे भारतीय राष्ट्रवाद के अग्रदूत फिरोज शाह मेहता की जयंती पर, उनके बारे में विशेष जानकारी। साथ ही डिजिटल युग में युवाओं की जिम्मेदारियां, इस विषय पर भी खास चर्चा की जाएगी। शाम 6 बजे सुनिएगा भोजपुरी लोकगीत। 6:05 पर हम लेकर आएंगे आकाशवाणी पटना से भोजपुरी समाचार बुलेटिन। शाम 6:10 पर सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। शाम 6:40 से हम लेकर आएंगे सांझ गीत कार्यक्रम में कुछ भोजपुरी फिल्मी गीत। 7:15 पर आप सुनेंगे सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास। प्रादेशिक समाचार हम सुनवाएंगे आकाशवाणी पटना से शाम 7:25 से।

7:50 पर सुनिएगा ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मनपसंद। ई मनपसंद कार्यक्रम आप सुनेंगे आज 7:50 से रात 8 बजे तक और 8:15 से रात 8:45 तक। रात 8 बजे से 8:15 तक हम आपको सुनवाएंगे आकाशवाणी दिल्ली से संसद समीक्षा। रोजाना की तरह समाचार संध्या आप सुनेंगे रात 8:45 पर। लोकधारा कार्यक्रम में सुनिएगा भोजपुरी लोकगीत रात 9 बजे और महफिल कार्यक्रम में चंद गजल 9:15 पर। आकाशवाणी विविध भारती से आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9:30 से रात 10 बजे तक। रात 10 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही के रिकॉर्डिंग का प्रसारण समापन तक। 10:15 पर हम लेकर आएंगे रसरम कार्यक्रम में हिंदी एल्बम सॉन्ग और 10:30 पर चित्रपट तराने कार्यक्रम में हिंदी फिल्म संगीत। अगले दिन का कार्यक्रम विवरण और मौसम पूर्वानुमान आप सुनेंगे रात 10:55 पर हमारे सासाराम केंद्र से। रात 11 बजे

रोजाना की तरह समाचार संध्या आप सुनेंगे रात 8:45 पर। लोकधारा कार्यक्रम में सुनिएगा भोजपुरी लोकगीत रात 9 बजे और महफिल कार्यक्रम में चंद गजल 9:15 पर। आकाशवाणी विविध भारती से आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9:30 से रात 10 बजे तक। रात 10 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही के रिकॉर्डिंग का प्रसारण समापन तक। 10:15 पर हम लेकर आएंगे रसरम कार्यक्रम में हिंदी एल्बम सॉन्ग और 10:30 पर चित्रपट तराने कार्यक्रम में हिंदी फिल्म संगीत। अगले दिन का कार्यक्रम विवरण और मौसम पूर्वानुमान आप सुनेंगे रात 10:55 पर हमारे सासाराम केंद्र से। रात 11 बजे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी समाचार हम रिले करेंगे। हमारी आज की यह सभा संपन्न हो जाएगी रात 11:10 पर। कार्यक्रम विवरण में अभी आप जानकारी ले रहे थे आज हमारे केंद्र से प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है FM 103.4 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9:10 हुए हैं। गीत मालिका कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए हिंदी फिल्म संगीत। हिंदी फिल्म संगीत कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को रागिनी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज 4 अगस्त है और 4 अगस्त ही वो तारीख है जब भारतीय सिनेमा के मशहूर पार्श्व गायक किशोर कुमार का जन्म हुआ था। जी हाँ, 1929 में मध्य प्रदेश के खंडवा में। और इस पार्श्व गायक की जयंती पर हम उन्हें नमन करते हैं और इस कार्यक्रम में आज सुनते हैं उनकी फिल्मों के एक से बढ़कर एक बेहतरीन सदाबहार दिलकश गीत। तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं मेरे जीवन साथी फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने है, संगीत दिया है RD बर्मन ने।

ओ मेरे दिल के चैन, बेहद ही खूबसूरत सदाबहार और मस्ती भरा ये गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार की सुरीली आवाज़ में। जी हाँ श्रोताओं, किशोर कुमार की आवाज़ सिर्फ प्राकृतिक आवाज़ ही नहीं थी बल्कि जादुई भरी अपनापन लिए हुए आवाज़ थी, और जो उनके गीत होते थे वो हम श्रोताओं के सीधे दिल पर असर करते थे। बेहद ही बेहतरीन गायक, और न सिर्फ गायक बल्कि अभिनेता और निर्देशक भी रहे किशोर कुमार। और हम आपको बताना चाहेंगे कि किशोर कुमार ने सिर्फ भारतीय फिल्मों में ही नहीं पार्श्व गायन किया बल्कि उन्होंने बंगाली, मराठी, असमी, गुजराती, कन्नड़, भोजपुरी, मलयालम, उड़िया और उर्दू सहित कई भारतीय भाषाओं में गीत गाए थे, और उन्हें सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन के लिए 8 फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिए गए थे, उन्होंने जीते थे, और अब तक का सबसे ज़्यादा फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड भी अगर किसी ने बनाया है तो मशहूर पार्श्व गायक किशोर कुमार जी ने बनाया है। तो चलिए उनकी आवाज़ से सजा हुआ एक और बेहतरीन गीत सुनते हैं, अलग अलग फिल्म से। आनंद बख्शी के बोल, आर डी बर्मन का संगीत।

कहीं दुश्मनी ने लूटा, कहीं दोस्तों ने मारा, गिला मौत से नहीं है, मुझे ज़िंदगी ने मारा। बेहद ही खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में। जी हाँ श्रोताओं, आज उनकी जयंती है और हम आपको बताना चाहेंगे कि जो आपने ये गीत सुना इसमें अलग ही खुलापन और पारदर्शिता थी। और ये जो गंभीर गीत अभी आपने इनकी आवाज़ में सुना, इसे उन्होंने इतना डूब कर गाया है कि लगता है कि ये गीत किशोर कुमार जी के लिए ही बना था। लेकिन अब बारी है कार्यक्रम में एक मस्ती भरे गीत की। जी हाँ, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, जॉनी मेरा नाम फिल्म का ये गीत है किशोर कुमार जी की आवाज़ में। लिखा है इस गीत को इंदिवर ने और संगीत से संवारा कल्याण जी आनंद जी ने।

पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, जॉनी मेरा नाम फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार की मखमली आवाज़ में। और आपको बता दें श्रोताओं कि किशोर कुमार ने बिना किसी औपचारिक शास्त्रीय प्रशिक्षण के अपनी प्राकृतिक आवाज़ और मस्ती से अपनी पहचान बनाई थी फिल्म संसार में। फिल्म संसार में उस समय नामी गिरामी कई प्रसिद्ध गायक थे। एक तरफ रफ़ी साहब और मन्ना जी जैसे शास्त्रीय संगीत के धुरंधर पार्श्व गायक थे, तो एक तरफ मुकेश जी का दर्द भरा अंदाज था, दूसरी तरफ महेंद्र कपूर जी भी थे, लेकिन इन सब में किशोर कुमार की सदाबहार गायकी ने दर्शकों का श्रोताओं का दिल लूटा। उनका उत्साह और मस्ती भरा अंदाज आज भी हम सभी को उनके गीतों को सुनकर झूमने पर मजबूर कर देता है। लीजिए अब सुनवाते हैं आपको बंदिश फिल्म का गीत, आनंद बख्शी का लिखा हुआ। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इसे संगीत से सजाया है। आवाज़ें किशोर कुमार के साथ आशा भोसले की।

अलग पहचान बनाई और हम सभी को एक से बढ़कर एक खूबसूरत गीत दिए। और इसी के साथ हम एक बार फिर कहना चाहेंगे कि किशोर कुमार जी सिर्फ एक गायक ही नहीं बल्कि एक महान अभिनेता, बेहतरीन कॉमेडियन, संगीतकार, गीतकार और निर्देशक भी थे। तो उनकी जयंती पर उन्हें शत शत नमन।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का सासाराम केंद्र। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9:30 हो रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी विविध भारती से कार्यक्रम आज के फनकार का प्रसारण। कीजिए थोड़ा सा इंतजार।
1: यह है विविध भारती। आज के फनकार ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित है, मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम समर्पित है भारतीय सिनेमा के बेहद प्रतिभाशाली अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, गायक और संगीतकार किशोर कुमार को।

सन 1929 के अगस्त महीने की चौथी तारीख को जन्मे किशोरदा ने तारीख यानी इतिहास में अपना वो स्थान बनाया कि उस ऊंचाई को किसी और कलाकार के लिए छू पाना लगभग नामुमकिन सा है। उनकी टाइमिंग, नाटकीयता, भूमिका की समझ और अदायगी, सब कुछ अद्भुत। सच तो ये है कि किशोरदा अपने आप में अभिनय और गायन की एक संपूर्ण संस्था।

मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में जन्मे किशोर कुमार का वास्तविक नाम था आभास कुमार गांगुली। उन दिनों आभास कुमार गांगुली के बड़े भाई अशोक कुमार हिंदी सिनेमा का एक स्थापित नाम बन चुके थे। परिवार के सदस्य अब नियमित रूप से मुंबई आने जाने लगे थे। मुंबई में किशोरदा की नई पारी की शुरुआत हुई किशोर कुमार के नाम से। 1946 में आई फिल्म शिकारी में उन्होंने पहली बार अभिनय किया। इसके दो बरस बाद सन 1948 में आई फिल्म जिद्दी में उन्हें पार्श्व गायन का मौका मिला।

0: मांगू।
1: सन 1951 में किशोर दा ने बॉम्बे टॉकीज की फिल्म आंदोलन में नायक की भूमिका निभाई। इसे निर्देशित किया था फणी मजूमदार ने। इसके बाद सन 1957 में किशोर दा ने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म मुसाफिर में अभिनय किया। यह फिल्म ऋषि दा की बतौर निर्देशक पहली फिल्म थी। लगभग उसी दौर में फिल्म नौकरी में किशोर दा ने एक गीत गाया जिसे पहले हेमंत कुमार गाने वाले थे, लेकिन बाद में सलिल दा ने फिल्म नौकरी का वो गाना किशोर दा से गवाया।

किशोरदा की अभिनय यात्रा जारी थी। अभिनय के साथ साथ फिल्मों के लिए गायन भी जारी था। अपने आप पर फिल्माए गए गीत तो उन्होंने गाए ही, वहीं देवानंद जैसे दिग्गज कलाकारों के लिए भी गीत गाए। उस दौर में संगीतकार सचिन देव बर्मन ने उनसे कई फिल्मों में गीत गवाए। उनमें से कुछ फिल्मों के नाम हैं, मुनीम जी, टैक्सी ड्राइवर, हाउस नंबर 44, फंटूश, 9 2 11 और पेइंग गेस्ट।

किशोरदा की प्रतिभा अनूठी थी। उनकी फिल्में आज हिंदी सिनेमा की अमूल्य निधि हैं। अपने गीतों में भी स्वरों से वो अभिनय किया करते थे।

0: सिंगार
1: धम
2: अयो
1: धम अरे धम धम धम रुक ब्रम ब्रम ना

0: एक चतुर नार बड़ी होशियार।
1: हास्य व्यंग पर किशोरदा की गहरी पकड़ थी, लेकिन गंभीर भूमिकाओं को भी किशोरदा ने बखूबी निभाया। सुनिए, उन्हीं पर फिल्माया गया

0: मेरे महबूब।
1: किशोर दा खुद एक मंजे हुए शानदार अभिनेता थे, इसलिए जिन अभिनेताओं के लिए उन्होंने पार्श्व गायन किया उन अभिनेताओं के अंदाज को अपनी गायकी में बड़े असरदार तरीके से उतारा और दिलकश अंदाज में पेश किया। फिर चाहे वो धर्मेंद्र हो, राजेश खन्ना हो या फिर अमिताभ बच्चन।

अपने करियर के शुरुआती दौर में किशोर दा ने गायन को लंबे समय तक गंभीरता से नहीं लिया। सन 1969 में रिलीज हुई फिल्म आराधना। फिल्म आराधना से भारतीय सिनेमा के आकाश में उदित हुए पहले सुपरस्टार के रूप में

फिल्म आराधना, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार सचिन देव बर्मन और गायक किशोर कुमार के लिए बहुत भाग्यशाली साबित हुई। इस फिल्म से किशोरदा के करियर में एक रचनात्मक बदलाव की भी शुरुआत हुई और बाद के दशकों में फिल्म संगीत की दुनिया में किशोरदा ने गायन की बुलंदियों को छुआ। किशोरदा ने कई दिलचस्प फिल्मों का भी निर्माण किया, इनमें से कुछ के नाम हैं, दूर गगन की छाव में, दूर कराही, दूर वादियों में कहीं, झुमरू, जिंदगी, चलती का नाम गाड़ी, शाबाश डैडी और बढ़ती का नाम दाढ़ी। आज किशोरदा की बनाई फिल्में अभिनय के छात्रों के लिए एक मार्गदर्शक की तरह हैं। किशोरदा की फिल्मों में जहां हास्य का अपना रंग था, वहीं उतनी ही गहरी संवेदना भी। उनकी फिल्म का ये गीत जितना अर्थपूर्ण है, उतना ही मर्मस्पर्शी भी।

0: एक कलाकार के रूप में किशोरदा बेमिसाल थे, हरफन मौला थे। उनके कद्रदानों ने उन्हें नट सम्राट भी कहा। उनकी प्रतिभा के रचनात्मक आयाम एक से कहीं ज्यादा थे। उनके भीतर हास्य व्यंग्य का एक चितेरा, एक दार्शनिक, एक नटखट बच्चा, एक बेहद संवेदनशील इंसान और एक शानदार कलाकार समाहित था, जिसने अपने अभिनय और गीतों से हमें जाने कितनी बार हंसाया और गुदगुदाया।
1: हाँ, कैसी भी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया, ओए। हाँ, कैसी भी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया, ओए, ओए, ओ तेरी तिरछी नजरिया
2: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया, ओए ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया, ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया।
1: हाँ, कैसी भी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया।
0: 13 अक्टूबर सन 1987 को किशोरदा ने सांसों की सरगम पर अपना अंतिम गीत छेड़ा और फिर चले गए महायात्रा पर।

किशोरदा को अनेक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय फिल्मी गैर फिल्मी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। किशोरदा भारतीय संगीत के अनमोल रत्न थे और रत्न रहेंगे। एक अभिनेता, गायक, संगीतकार और फिल्मकार के रूप में किशोरदा ने भारतीय सिनेमा में जो अमूल्य योगदान दिया है, उसके लिए फिल्म जगत, फिल्मों के दर्शक और उनके गीतों के श्रोता सदैव उनके ऋणी रहेंगे।

0: शोध आलेख और स्वर कमल शर्मा का, प्रस्तुति रमेश गोखले की।
1: आज के फनकार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। कल नई दिल्ली में मेटा के अधिकारियों के साथ बैठक में भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री के वीडियो को हटाने के लिए मेटा इंडिया की आलोचना की। बैठक के बाद श्री दुबे ने बताया कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग को से इससे माफी मांगने की मांग की है।
1: ये माफीनामा जकरबर्ग के तरफ से आना चाहिए और ये जकरबर्ग नहीं देते हैं तो जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है उनको सेक्शन 79 में, वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उनसे वापस ले लेना चाहिए। जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को नहीं मानते हैं, इन सारे चीजों से सेफ हार्बर हटाने की बात करनी।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली सरकार और विभिन्न राज्यों की सरकारें जंतर मंतर और देश में अन्य जगहों पर हाल ही में प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों और प्रदर्शनकारियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के नेतृत्व में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया है कि 28 जुलाई को न्यायालय के आदेश में पहले आपराधिक मामलों से जुड़े प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई रखने की अनुमति का तात्पर्य केवल गंभीर और जघन्य अपराधों से जुड़े लोगों से था। अदालत नीट पेपर लीक के विरोध में जंतर मंतर पर 20 जुलाई को और अन्य जगहों पर प्रदर्शन में विद्यार्थियों पर पुलिस की अत्यधिक सख्त कार्रवाई के आरोप से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। प्रदर्शन में घायल पुलिस अधिकारियों के परिवारों ने भी यह आरोप लगाते हुए प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की मांग की है कि पुलिसकर्मियों पर हमले किए गए हैं। अब इस मामले की सुनवाई 18 अगस्त को होगी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक मंगल मिलन संसद भवन में हो रही है। इस बैठक का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। पिछली बैठक 28 जुलाई को हुई थी, उसमें तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए गुट नवगठित नेशनलिस्ट सिटीजन्स और पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई के सांसदों ने भी गठबंधन में हिस्सा लिया। ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में शुरू होगी। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधियों की भागीदारी होगी। सदस्य संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने, सीमा पार भ्रष्टाचार से निपटने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर भी विचार विमर्श करेंगे। भारतीय सुरक्षा खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है, क्योंकि इस तरह का लेबल लगाना कानून के खिलाफ है। प्राधिकरण ने सोशल मीडिया पर सूचित किया कि इन उत्पादों में शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने का आखिरी मौका दिया गया है। श्री ट्रंप ने दावा किया कि ईरान और कई खाड़ी देशों के कूटनीति आग्रह करने के बाद नियोजित सैन्य हमलों को रोक दिया गया है। श्री ट्रंप ने हुर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए बातचीत जारी रखने की पहल को पहला

0: और ईरान में परमाणु निरस्त्रीकरण पर ध्यान केंद्रित करने को दूसरा चरण बताया। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की संभावना है। और खेलों में कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो रही है। यह 9 अगस्त तक चलेगी। तन्वी शर्मा और किदाम्बी श्रीकांत प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु और उन्नति हुडा टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले रही है, इसलिए तीसरी वरीयता प्राप्त तन्वी महिला एकल वर्ग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली भारतीय खिलाड़ी होंगी। किदाम्बी श्रीकांत जुलाई में कनाडा ओपन में पहले दौर में हार के बाद प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी समाचार अभी आप सुन रहे थे, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे थे। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम आवाज। आवाज के आज के अंक में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कैमूर जिला के नुआव प्रखंड मुखराव पंचायत के अहिरौली गांव के लोगों से नाली, गली, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि कार्य के लिए मिल रही सुविधाओं पर की गई बातचीत। संकलन व वाचन है मुमताज अहमद का।

0: दोस्तों नमस्कार, साप्ताहिक कार्यक्रम आवाज के इस अंक में आपका स्वागत है। हम हैं आपके दोस्त मुमताज अहमद। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी कोशिश होती है आम लोगों की आवाज़ आप तक पहुंचाने की। आज के इस अंक में हम आपको सुनवाएंगे कैमूर जिला के मुखराव पंचायत के अहिरौली गांव के लोगों से की गई बातचीत। दोस्तों, सफाई क्यों ज़रूरी है, इसका आकलन हम इस आधार पर कर सकते हैं कि जो इलाका साफ रहता है, नाली गली की सफाई एक अंतराल के बाद होती रहती है, उस क्षेत्र के लोग स्वस्थ रहते हैं, खुशहाल रहते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें भी अपने आसपास के क्षेत्र की सफाई पर ध्यान देते रहना चाहिए ताकि बीमारी फैलाने वाले कीड़े को किसी भी तरह से पनपने का मौका न मिल पाए। यदि ये कीड़े पनपने लगेंगे, इन्हें पनपने का मौका मिल गया, हम सफाई पर ध्यान नहीं देंगे तो ये कीड़े हमें किसी न किसी रूप में प्रतिकूल प्रभाव डालना शुरू कर देंगे। हम बीमार भी हो सकते हैं और बीमारी का शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें अपने आसपास के क्षेत्र की सफाई पर हमेशा ध्यान देते रहना चाहिए और आसपास के लोगों को भी समझाते रहना चाहिए कि वे लोग भी अपने आसपास के क्षेत्र की सफाई करते रहें, चाहे वो नाली हो, गली हो, घर हो या आसपास खुला हुआ मैदान हो। सफाई बहुत ज़रूरी है और सफाई के साथ साथ पेड़ पौधों का लगाना भी बहुत ज़रूरी है। पेड़ पौधों की हिफाजत करना हमारा कर्तव्य बनता है। हमें चाहिए कि आसपास के पेड़ पौधों की रक्षा भी करें, उनकी हिफाजत करते रहें। दोस्तों, कैमूर ज़िला के नुआव प्रखंड के अहिरौली गांव के लोगों से हमने बात की। ये गांव यानी अहिरौली गांव मुखराव पंचायत में पड़ता है और जानना चाहा कि अहिरौली गांव के लोगों को नाली गली बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य और कृषि कार्य के लिए अभी तक क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। आइए सुनते हैं अहिरौली गांव के लोग अपने गांव में मिल रही सुविधाओं के बारे में क्या बताते हैं, क्या कहते हैं।
1: अहिरौली गांव के कई लोग खड़े हुए हैं, हम इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। नाम अपना बता दीजिए।
2: सतेंद्र चौबे।
1: गांव का नाम?
2: अहिरौली।
1: पंचायत?
2: मुखराव।
1: मुखराव पंचायत में पड़ता है अहिरौली गांव। सबसे पहले आप अपने गांव की गली के बारे

0: बताइए, सभी गली बन चुकी है या कुछ बाकी है बनानी भी?
1: अभी बाकी है,
0: कुछ बनी भी है?
1: कुछ बनी है।
0: जो गली बन चुकी है अभी तक आपके यहाँ आपके गांव में, उसमें आने जाने में परेशानी होती है कि नहीं?
1: जो गली बन चुकी है ना, उसमें आने जाने में परेशानी है। जो नहीं बनी है उसमें आने जाने में परेशानी नहीं है।
0: क्यों परेशानी है उसमें आने जाने में जो बन चुकी है अभी तक?
1: इसमें ढंग से नहीं बनाई गई है।
0: आपके गाँव में जो जो गली अभी नहीं बनी है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: बन जाएगा तो अच्छा रहेगा।
0: नाली बनाई गई है आपके यहाँ की गलियों में या बाकी रह गई है अभी?
1: नाली भी नहीं बनाया गया है।
0: कुछ गली में बना है कि नहीं?
1: कुछ गली में भी नहीं बना है, नाली यहाँ पर बना ही नहीं है।
0: किसी भी गली में नाली नहीं बनाई गई है?
1: नहीं।
0: तो फिर लोग अपने घर का पानी कैसे निकालते हैं?
1: अपने अपने व्यवस्था के अनुसार।
0: गली में भी बहता रहता है?
1: गली में भी बहता है।
0: तो फिर आने जाने में परेशानी होती होगी?
1: बहुत परेशानी होती है, गली बदल बदल कर जाना पड़ता है।
0: आपके गांव की जो मेन गली है, चौड़ी गली है, उसमें नाली बनाई गई है कि नहीं?
1: उसमें बनाई गई है।
0: उसमें बनाई गई है जो चौड़ी गली में नाली बनाई गई है आपके गाँव में, उस नाली से आसपास के घर का पानी आसानी से निकल जाता है या नाली बनने के बाद भी गली में जमा रहता है?
1: नाली बनने के बाद

0: परेशानी होती होगी?
1: बहुत परेशानी होती है, गली बदल बदल कर जाना पड़ता है।
0: आपके गांव की जो मेन गली है, चौड़ी गली है, उसमें नाली बनाई गई है कि नहीं?
1: उसमें बनाई गई है।
0: उसमें बनाई गई है जो चौड़ी गली में नाली बनाई गई है आपके गांव में, उस नाली से आसपास के घर का पानी आसानी से निकल जाता है या नाली बनने के बाद भी गली में जमा रहता है?
1: नाली बनने के बाद भी निकास नहीं हो पाता है,
0: पूरी तरह से नहीं निकल पाता है।
1: नहीं।
0: बिजली रहती है कि नहीं आपके यहाँ?
1: बिजली रहती है।
0: बिजली रहती है, वोल्टेज कैसा रहता है?
1: वोल्टेज नहीं रहता है इस समय मानो के चलिए 15 दिन से 20 दिन से वोल्टेज नहीं रहता है, न तो वोल्टेज अच्छा रहता है।
0: अभी वोल्टेज नहीं रह रहा है? ठीक
1: नहीं, इस समय किसान खेती का समय है, मान लीजिए बहुत मोटर सब चल रहा है, इसलिए वोल्टेज नहीं रह रहा है।
0: 125 यूनिट जो फ्री किया गया है, उसका लाभ आपके यहाँ के लोगों को मिल रहा है?
1: लाभ मिलता है।
0: आप लोग अपने गांव के बिजली के तार के बारे में कुछ कहना चाहेंगे?
1: बिजली का तार कम पावर का डाल दिया गया है, इससे भी परेशानी होता है। मान लीजिए तार गल जाता है, तार रोज टूटता है, रोज गलता है।
0: आपके गांव में कितना वार्ड है?
1: हमारे गांव में 2 वार्ड है।
0: दोनों वार्ड में बिजली की सप्लाई का तार जो है कमजोर है?
1: हाँ हाँ, पूरा पंचायतें में कमजोर है।
0: नल जल योजना के अंतर्गत पीने के लिए शुद्ध पानी आप लोगों को मिल रहा है?
1: नहीं, नल जल योजना हमारे गाँव में नहीं चलता है।
0: नल नहीं लगाई गयी है?
1: नल जल योजना बैठाया गया था, लेकिन उसका टंकी कबर कुबर कर फेंका गया नदी में।
0: आपके घर में नल लगाई गयी थी?
1: नहीं, नल नहीं लगा था।
0: आपके आसपास के घरों में नल लगाई गई थी?
1: कहीं भी नहीं लगा था, आधा गांव में उधर लगा था, आधा गांव में इधर लगा ही नहीं है।
0: आपके गांव के जिस क्षेत्र में नल लगाई गई थी, उधर पानी सप्लाई किया जा रहा था?
1: हाँ, उधर पानी जा रहा था।
0: अभी जा रहा है कि नहीं? उधर
1: अभी बोल रहे हैं कि टंकी कवर कर फेंका गया था, अब कहाँ से पानी आएगा?
0: अभी कहीं नहीं जा रहा है?
1: कहीं नहीं, सब सिस्टम बंद हो गया है, टंकी फाट फूट कर खत्म हो गया।
0: आपका सरकारी विद्यालय कौन सी है?
1: सरकारी विद्यालय प्राथमिक विद्यालय अहिरौली।
0: कितने क्लास तक पढ़ाई होती है?
1: 5 तक।
0: 5 तक होती है
1: जी।
0: 5 तक पढ़ाई कराने के बाद आप लोग अपने बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ ले जाते
1: हैं? हाई स्कूल में ले जाते हैं, गुड़िया उड़िया बोवारा।
0: जिस हाई स्कूल में आप लोग नाम लिखवाते हैं, अपने बच्चों को भेजते हैं यहाँ के बाद, वो कितनी दूरी पर पड़ता है?
1: लमसम में 6-7 किलोमीटर।
0: बहुत दूर है
1: जी।
0: आपके पंचायत में कोई हाई स्कूल है या नहीं?
1: अब दूर है, बोवारा में है, गुड़िया में है।
0: जब बहुवारा अभी पंचायत में पड़ता है?
1: हमारे ही पंचायत में पड़ता है।
0: बहुवारा जाने में परेशानी होती है बच्चों को?
1: हाँ, साधन कोई नहीं है, रोड है, अपना साइकिल चाहे पैदल जाते हैं।
0: आपके यहाँ कोई उप स्वास्थ्य केंद्र है कि नहीं?
1: नहीं, एक छोटा मुखरा पंचायत जो है उसी में एक छोटा
0: उप स्वास्थ्य केंद्र है।
1: हाँ।
0: तो आप लोग वहाँ नहीं जा पाते हैं?
1: नहीं, हम लोग नहीं जाते हैं।
0: खेती करते हैं आप?
1: हाँ हाँ।
0: पटवन का मुख्य साधन क्या है आपके यहाँ?
1: पटवन का मुख्य साधन है नहर भी है।
0: नहर पास करती है आपके यहाँ से?
1: हाँ।
0: नहर का पानी सभी खेतों में चला जाता है?
1: हाँ हाँ।
0: नहर के पानी से आपके यहाँ के खेतों को नुकसान भी होता है?
1: काहे नुकसान भी होता है, गेहूँ में
0: धान की फसल डूबती है कि नहीं?
1: नहीं, धान में नहीं डूबता।
0: नहीं डूबता है?
1: धान में फायदा होता है, गेहूँ में कुछ बर्बादी होता है।
0: आपके बगल से चूंकि नहर गुजर रही है, तो नहर से कोई हानि?
1: कोई हानि नहीं है,
0: कोई लाभ है?
1: हाँ, लाभ है।
0: कौन कौन सी फसल लगाई जाती है आपके यहाँ?
1: फसल धान गेहूँ का फसल होता है।
0: सब्जी की खेती होती है कि नहीं?
1: नहीं नहीं, सब्जी खेती नहीं।
0: कुछ कहना चाहते हैं अपने गांव के लिए?
1: अब गांव के लिए यही हम कहना चाहते हैं कि मान लीजिए रोड है, उस रोड के बगल में लोग अतिक्रमण करके घेर कर मकान बनवा रहे हैं। रोड चौड़ा जो रोड है उसको पतला कर देते हैं, आने जाने में परेशानी होती है। और स्कूल भी नियमित समय से मान लीजिए टीचर नहीं आते हैं।
0: आपके यहाँ जो स्कूल है उसकी बिल्डिंग कैसी है?
1: बिल्डिंग तो ठीक है, इस समय बिल्डिंग बन गया है।
0: पानी का इंतजाम है पीने के पानी का?
1: हाँ हाँ, टंकियों की बैठाया गया है स्कूल में।
0: आपके यहाँ जो स्कूल है उसमें आप ही के गांव के बच्चे पढ़ने जाते हैं या आसपास के गांव के भी आते हैं?
1: नहीं, हमारे ही गांव के ही।
2: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कैमूर जिला के अहिरौली गांव के लोगों से की गई बातचीत। अहिरौली गांव के कुछ और लोगों से की गई बातचीत सुनने से पहले आइए हम आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत। लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, इसके गीतकार हैं सावन कुमार, संगीतकार उषा खन्ना और फिल्म का नाम है सौतन।

0: दोस्तों, अभी आप सौतन फिल्म का गीत सुन रहे थे। आवाज़ थी लता मंगेशकर की। अब आइए सुनते हैं कैमूर जिला के अहिरौली गांव के कुछ और लोगों से की गई बातचीत।
1: नाम अपना बता दीजिए।
2: आशुतोष चौधरी।
1: गांव का नाम?
2: अहिरौली।
1: पंचायत?
2: पंचायत मुखरा।
1: आप अपने गांव की गली के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सभी गलियों का पक्कीकरण हो चुका है या कुछ गली बनानी अभी बाकी है?
2: पक्कीकरण तो हुआ है, लेकिन कुछ साइड में गांव के थोड़े से उधर साइड में रह गया है कुछ जगहों पे।
1: जो जो गली बन चुकी है अभी तक, जिसका पक्कीकरण हो चुका है आपके गांव में, उसमें आने जाने में परेशानी होती है कि नहीं?
2: हाँ, कुछ गली में है ऐसा, जैसे नाली का पानी वानी, नाली की सफाई नहीं होने के कारण हो जाती है, तो उसमें दिक्कत होती है।
1: जो गली नहीं बनाई गई है आपके गाँव में, अहिरौली गाँव में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
2: उसके बारे में यही है कि जो भी है हमारे गाँव के जो पंचायत में जो भी लोग हैं, उनको थोड़ा ध्यान दे, उससे बनवाएं।
1: नाली बनाई ही आपके यहाँ की गलियों में?
2: नाली भी है,
1: बनी हुई
2: कुछ जगहों पर, नहीं भी है।
1: जो मेन गली है आपके यहाँ, चौड़ी गली है, उसमें नाली बनाई गई है कि नहीं?
2: उसमें है नाली है, उसमें
1: है नाली। उस नाली से घर का पानी निकल जाता है आसपास जो घर है?
2: हाँ, उस घर में गली में निकल जाता है,
1: कोई दिक्कत नहीं होती?
2: वहीं जब कभी जाम हो जाती है तो सफाई नहीं होने के कारण हो जाता है, जाम हो जाती है, वही मेन गली में ही पानी हो जाता है।
1: जिन जिन गलियों में नाली नहीं बनाई गई है, उन गलियों के लोग अपना पानी कैसे निकालते हैं?
2: पहले से जैसे लोग बनाए हुए अपने से नाली जो बनाए हैं, जिस तरफ की ढलान है उस तरफ किए हैं, उसी तरफ पानी निकलते रहता है।
1: गली में बहता रहता है कि नहीं?
2: अपने से बनाए हैं तो कच्ची है, तो कहीं टूट गई तो गली में पानी आ जाता है,
1: तो फिर आने जाने में परेशानी होती है।
2: हाँ,
1: अभी बरसात का मौसम चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में गांव के लोग

0: आने जाने में परेशानी होती है कि नहीं?
1: होती है, घूम कर जाना पड़ता है, गली से घर जाना है इस तरह, थोड़ा घूम कर जाना पड़ता है दूसरे गली से।
0: बिजली रहती है आपके यहाँ?
1: हाँ बिजली तो रहती है, बिजली का व्यवस्था सही है।
0: वोल्टेज कैसा है?
1: वोल्टेज इस समय थोड़ा सही नहीं है और बाकी समय में सही रहता है।
0: आपके यहाँ के बिजली का तार कैसा है, ठीक है या जर्जर हो चुका है?
1: जर्जर हुआ है तो कुछ जगहों पे, जैसे पहले का जो है ना, पहले जो ट्रांसफार्मर था, अब फिर कुछ सालों के बाद एक ट्रांसफार्मर लगा, तो नया वाला ट्रांसफार्मर तभी सही है, लेकिन पुराने ट्रांसफार्मर से जो कनेक्शन है उसमें के तार का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है।
0: कवर का तार लगाया गया है कि नहीं आपके यहाँ?
1: कवर तार है।
0: बिजली का जो 125 यूनिट फ्री कर दिया गया है, इसका लाभ मिल रहा है लोगों को?
1: हाँ इसका लाभ मिलता है।
0: आपके यहाँ कोई सरकारी विद्यालय है कि नहीं?
1: हाँ प्राथमिक विद्यालय है,
0: प्राथमिक विद्यालय हिरौली। कितने क्लास तक पढ़ाई होती है?
1: 5 क्लास तक।
0: उसके बाद बच्चों को कहाँ ले जाते हैं आपके यहाँ के लोग?
1: हमारे यहाँ बगल में वही पंचायत मुखराम है, नहीं तो उससे थोड़ा सा आगे गुड़िया पड़ता है, वहीं पर लोग जाते हैं।
0: वहाँ आने जाने के लिए पक्की सड़क है?
1: हाँ पक्की सड़क है,
0: कोई दिक्कत नहीं होती है?
1: नहीं दिक्कत नहीं है। उधर का सड़क सही है, पर गांव में कहीं जो सड़क है वो खराब है।
0: आपके गांव में जो स्कूल है उसकी बाउंड्री है?
1: हाँ बाउंड्री है।
0: आने जाने का रास्ता कैसा है स्कूल पर?
1: स्कूल पर वही गांव में जो जैसे रास्ते जो जहाँ पर कुछ जगह पर खराब हो गया पिछले साल, कहीं वो खराब है, पिछले साल की बरसात कहीं टूटा हुआ अभी तक नहीं बना हो।
0: बच्चों को आने जाने में परेशानी होती है?
1: हाँ।
0: अपने यहाँ के स्कूल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे?
1: स्कूल के बारे में क्या, वही पढ़ाई लिखाई थोड़ा सा, बच्चों को बच्चे घूमते रहते हैं और क्या कर।
0: नल जल योजना के अंतर्गत नल का पानी पीने के लिए आप लोग को मिल रहा है?
1: नहीं
0: नल लगाई गई है?
1: नल कुछ जगह पे लगाया गया गांव में,
0: पानी सप्लाई नहीं हो रहा है?
1: है ही नहीं, वो जो टंकी बैठाई गई थी वो है ही नहीं, टूट गया वो पूरा, वो खत्म हो गया है।
0: अभी नहीं है या कभी नहीं पानी सप्लाई हुआ?
1: शुरू में जब लगे थे तभी कुछ दिनों तक हुआ, उसके बाद तो खत्म है, बहुत जल्दी खत्म हो गया वो। उस समय भी आधे ही गांव में लगा था, लेकिन आपको लगा ही नहीं था।
0: आपके यहाँ कोई उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है तो फिर बीमार पड़ते हैं तो पेशेंट को आप लोग कहाँ ले जाते हैं?
1: अब पेशेंट का हम लोग तो जैसे कि अब नजदीक में बहुत जरूर नजदीक में तो कोचस नहीं तो बक्सर जाता सर।
0: नजदीक कोचस पड़ता है आपके यहाँ से?
1: हाँ
0: आपके यहाँ से कोचस नजदीक पड़ता है।
1: हाँ
0: आपका जो प्रखंड मुख्यालय है नुआओ, प्रखंड मुख्यालय पर आपके यहाँ से जाने के लिए पक्की सड़क है?
1: हाँ सड़क।
0: आने जाने में कोई परेशानी
1: नहीं?
0: आप अपने गांव से अगर अपने जिला मुख्यालय भभुआ जाना चाहें तो आने जाने में कोई परेशानी होती है कि नहीं?
1: नहीं नहीं इधर कोई परेशानी नहीं,
0: कोई दिक्कत नहीं है?
1: नहीं।
0: खेती करते हैं आप लोग?
1: हाँ हाँ।
0: कौन कौन सी फसल लगाते हैं?
1: वही धान और गेहूँ।
0: पटवन का मुख्य साधन क्या है?
1: नहर भी है और मशीन।
0: नहर भी आपके यहाँ से गुजरती है?
1: हाँ।
0: कोई दिक्कत नहीं है पटवन?
1: नहीं।
0: जब खेती की जाती है आपके यहाँ तो बीज की जरूरत पड़ती है, खाद की जरूरत पड़ती है, दवा की जरूरत पड़ती है, चाहे इंसेक्टिसाइड्स हो पेस्टिसाइड्स हो, ये सब आसानी से मिल जाती है?
1: खाद लेने में परेशानी होती है, जल्दी से नहीं मिल पाता है हम लोगों को।
0: और कुछ कहना चाहेंगे?
1: वही जो भी सुविधा है हम लोग रोड और खाद को कृषि से लेकर उसको थोड़ा सुधार किया जाए।
2: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कैमूर जिला के अहिरौली गांव के लोगों से की गई बातचीत। अब आइए हम आपको सुनवाते हैं एक और खूबसूरत गीत। ये गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं दोस्तों, इसे हमने लिया है फिल्म रोटी से। इसके गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आवाज़ें हैं दोस्तों किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। सरकार की किसी भी योजना को सफल बनाने के लिए सरकारी मशीनरी के साथ साथ जनता की भागीदारी भी बहुत ज़रूरी होती है। आशा है सरकार की किसी भी योजना को सफल बनाने के लिए प्रशासनिक मदद के साथ साथ जनता का सहयोग भी मिलता रहेगा। दोस्तों, अब घड़ी इशारा कर रही है हमारे इस कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए। तो साप्ताहिक कार्यक्रम आवाज का ये अंक कैसा लगा, आप पत्र द्वारा हमें सूचित कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम आपने लिखा द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी सासाराम, पिन कोड 821115। आप अपनी राय मेल पर भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है akashwani.sasaram@gmail.com। akashvanisasaram@gmail.com। इसी के साथ आप अपने रेडियो दोस्त मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी कुछ नई जानकारियों के साथ। स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। नमस्कार। स्वर एवं संकलन मुमताज़ अहमद और प्रस्तुतकर्ता संतोष कुमार।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: अभी आप सुन रहे थे ये संदेश। संदेश से पहले आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम आवाज। हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का सासाराम केंद्र। स्टूडियो की घड़ी में 10:30 हुए हैं। लोक माधुरी कार्यक्रम में लीजिए सुनिए कुछ भोजपुरी एल्बम लोकगीत। सबसे पहले कशिश सिन्हा की आवाज़ में एक पारंपरिक लोकगीत जिसे लिखा पंडित ज्वाला प्रसाद और संगीत भी इन्हीं का। एल्बम है राम नाम लड्डू।

शारदा सिन्हा की आवाज़ में अभी आपने सुना ये पारंपरिक भोजपुरी एल्बम लोकगीत। संगीत शारदा सिन्हा का था और एल्बम का नाम था परदेसिया बलमुआ। लोक माधुरी कार्यक्रम के अंत में अब लीजिए सुनिए डॉक्टर राम रक्षा मिश्रा का लिखा हुआ एक भोजपुरी एल्बम लोकगीत, जिसकी धुन बनाई भरत शर्मा व्यास ने, आवाज़ भी है भरत शर्मा व्यास की और एल्बम का नाम राजा पिया जानी।

रोज रहिया निहारे नयनवा सजनवा कहिया ले आई हैं। राजा पिया जानी से लिया गया ये भोजपुरी एल्बम लोकगीत अभी आप सुन रहे थे भरत शर्मा व्यास की आवाज़ में। लोक माधुरी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। रसधार कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए कुछ भोजपुरी एल्बम सॉन्ग। सबसे पहले खुशी कक्कर और मोहन राठौर की आवाज़ में लीजिए सुनिए बाड़ू भुलाइल देवघर में एल्बम का ये एल्बम सॉन्ग।

जी हाँ, सभी कांवर ये जो हैं वो भगवान शिव पर जल अर्पित करते हैं, शिवलिंग पर जल, दूध व बिलपत्र चढ़ाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। तो अभी आपने हमने ये की तभी आपको सुनवाया, और अब इसी के साथ रसदार कार्यक्रम में सुनवाते हैं इसका अंतिम एल्बम सॉन्ग आलोक रंजन की आवाज़ में। वशिष्ठ सुनील सुरीला का लिखा हुआ ये एल्बम सॉन्ग है, जिसे संगीतबद्ध किया अशोक कुमार दीप ने है, और एल्बम है नज़र के सामने सनम।

कावरियन के भीड़ जुटल। अभी आप सुन रहे थे इस एल्बम का ये टाइटल सॉन्ग सुनील छैला बिहारी और शिवानी सिंह की आवाज़ में। जी हाँ श्रोताओं, सावन हिंदू पंचांग का सबसे पवित्र महीना है, जो भगवान शिव की आराधना, सोमवार के व्रत और कांवर यात्रियों के लिए समर्पित है।

0: अब यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में पूर्वाह्न के 11 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी विविध भारती का प्रसारण।
1: रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कलाम मिर्जा गालिब, विनोद सहगल, मौसिकार जगजीत सिंह,

चित्रा सिंह की आवाज में आपने ये गीत सुना। रंग तरंग कार्यक्रम में हम आपको कुछ गीत गजल नगमे सुनवा रहे हैं और अब दिनेश ठाकुर की रचना, अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन की आवाज़ें।

अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन की आवाजों में ये नगमा आपने सुना। विविध भारती आप सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम का नाम है रंग तरंग। सुबह की 11:14 हो चुके हैं। विविध भारती पर भूपेंद्र सिंह की आवाज गूंज रही है। ये जावेद, ये गुलजार साहब का गीत।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए
0: विविध भारती से रंग तरंग। गुलजार के बोल उस्ताद अमजद अली खान की तर्ज है वादा एल्बम का नाम, साधना सरगम की आवाज़।

मोहब्बत पलकों पे कितने हसीन ख्वाब सजाती है, फूलों से महकते ख्वाब, सितारों से जगमगाते ख्वाब, शबनम से बरसते ख्वाब। फिर कभी यूं भी होता है कि पलकों की डालियों से ख्वाबों के सारे परिंदे उड़ जाते हैं और आँखें हैरान।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हाय हाय।
0: पर्वती खान की आवाज एल्बम का नाम है मिसिंग यू। कार्यक्रम की आखिरी पेशकश

0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा की बैठक दोपहर 2 बजे तक और राज्यसभा दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठा दिया। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रश्नकाल के दौरान व्यवधान उचित नहीं है।
1: लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच होने के कारण हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सदन में चर्चा करें, संवाद करें, अपनी सहमति असहमति व्यक्त करें, लेकिन सदन चर्चाओं के लिए ही चर्चा संवाद से हम देश की जनता का कल्याण कर पाएंगे। मैं सबको पर्याप्त अवसर दूंगा। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
0: राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति रही। सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने सदन के पटल पर दस्तावेज रखे। आवासन और शहरी मामलों से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट सदन में पेश की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच शून्यकाल शुरू किया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
2: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने देते हैं। इधर ऑपोजिशन करके जो जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एनओपी के नाम से वो खड़े होकर के
0: लोकसभा में आज बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पर चर्चा होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल ये विधेयक पेश किया था। इस विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्य प्रणालियों के अनुरूप बनाना है। वित्त मंत्री आज लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 तथा विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 भी पेश करेंगी। इस बीच राज्यसभा में आज जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस विधेयक को पेश करेंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज संसद भवन में आयोजित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अन्य नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने का आखिरी मौका दिया गया है। श्री ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान और कई खाड़ी देशों के कूटनीतिक आग्रह के बाद नियोजित सैन्य हमलों को रोक दिया गया है। श्री ट्रंप ने होर्मुज जलडमरु मध्य को फिर से खोलने के लिए बातचीत जारी रखने की पहल को पहला चरण और ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण पर ध्यान केंद्रित किए जाने को दूसरा चरण बताया। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट आज दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो गया है। पुरुष सिंगल्स में भारत के तुषार सुवीर जापान के शोगो ओकावा से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। महिला डबल्स में प्रिया कोनजेंगबांग और श्रुति मिश्रा तथा पुरुष डबल्स में कृष्णा प्रसाद गरागा और प्रीति कृष्णमूर्ति रॉय आज कोर्ट में उतरेंगे। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। महानदी और अन्य प्रमुख नदियों का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। केरलम के 14 में से 12 जिलों में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे यादों की महफिल।

आइए सुने यादों की महफिल। किशोर कुमार का दिन और इस कार्यक्रम में किशोर के कुछ उदास नगमे।

शैलेंद्र के बोल, किशोर कुमार की आवाज, उन्हीं का संगीत, फिल्म का नाम दूर गगन की छांव में, किशोर कुमार की उदास कहानी, यादों की महफिल।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है कि शोधन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे वो गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

इसी के साथ अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम खत्म होता है। इस कार्यक्रम का सफर आपने तय किया अपने दोस्त यूनुस खान के संग। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे सुरीला सफर।

0: रह गए हक्का बक्का, देश छुड़ाए भेष छुड़ाए, क्या क्या न करे ये प्रीत रे। कहीं मिला निराला सुरमा, कहीं प्यारी बिंदु और कहीं भीगी भागी लड़की। पर फिर याद आई गुरुजी की सीख, कुएं में कूद के मर जाना, यार तुम शादी मत करना। तो हमने दिया चकमा ईना मीना डीका को, भले हमें गाना ना आया बचाना ना आया, पर एक रोज हमारी भी दाल गलेगी। तो बढ़ के बोल बेटा बम बम, 1 बजे मिलेंगे हम। ये है आज की इबारत और लीजिए 1 बजे मिल भी गए हम। लेकर आए हैं किशोर कुमार की फुल मस्ती।
1: सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो ए भाई और बहनो, अरे मगन भाई छगन भाई, सांबड़ो रे सांबड़ो, ओ राघोबा ओ दोंडीबा, आई का ओ कर्नल सिंह,
0: भाई सबको सुनने की बात कह रहे हैं किशोर कुमार इस गाने में। क्या आप बता सकते हैं कि ये जो टुकड़ा हमने बजाया ये किस फिल्म के किस गाने का टुकड़ा था? और अब किशोर की दूसरी मस्ती, ये गाना बहुत कम लोगों ने सुना है।

आइए सुने कार्यक्रम सुरीला सफर। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। किशोर कुमार का जन्मदिन फिल्म संगीत के चाहने वालों के लिए एक बहुत ही अनमोल दिन होता है, और आज के सुरीला सफर कार्यक्रम का मिजाज हमने बिल्कुल अलग रखा है, इसीलिए आज की इबारत बिल्कुल अलग तरह की है। ये इबारत, अरे सुनो सुनो गुड़ी जनो, मेरा मतलब है सुनिए सुनिए, जरा सी हुई चूक और आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, अपनी तो बच गई बीन, जाना था जापान पहुंच गए चीन। अरे भाई किसी ने कहा था निकलो घर से दुनिया की रौनक देखो, तो बस निकल पड़े टिम्बकटू काठमांडू।

0: gele ke gele gel gele ke gele gel gele ke gele gel gele bam bam ma kuk bam bam ma kuk bam bam ma kuk bam bam ma kuk zil haku babu jan haku babu jan haku babu zil haku babu ram ram siya ram salam alaikum pyar karo chup chup dud piyo chuk chuk than than phut phut phut phut phut phut than than phut phut how do you do bam chik chik cham chik chik bam chik chik cham chik chik bam chik bub chik bam chik bub chik bam chik bub chik bam chik bub chik pad ke bol beta bam bam
1: भाई बढ़ के बोल बेटा बम बम वाला ये गाना, ये सोचकर हैरत होती है कि इसमें गीतकार का कितना योगदान है और किशोर का कितना योगदान।
0: बाबा लोग सुनो, काका लोग सुनो, दादा लोग सुनो, जल्दी जल्दी ये सुना दे कुड़िये, ये पुत्र देख भाई इधर आ, खाली है पिंजरा, ए देख भाई इधर आ, अरे खाली है पिंजरा, पिंजरे के अंदर।
1: कौन कौन बता सकता है कि ये किस फिल्म का गाना है?
0: अंदर निकलेगा बंदर, यही परिचय है राजा जानी का, बोलो मसाल जवानी दीवानी का। ए चल बेटा बम बम बम बम चीक चीक चाम चीक चीक बम।
1: क्या बात है किशोर कुमार की। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने उनके लाइव कॉन्सर्ट्स देखे हैं सचमुच में या फिर वीडियो पर, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी मस्ती किस तरह की होती थी। लेकिन किशोर कुमार एक बहुत संजीदा आदमी भी थे। किशोर कुमार को सेलिब्रेट करना इसलिए मुश्किल है कि आप किस तरह से उन्हें सेलिब्रेट करेंगे। इतना बड़ा, इतना ज्यादा विस्तृत करियर क्या सुनाएं और क्या नहीं सुनाएं। इसीलिए हमने आज चुना है किशोर कुमार की मस्ती को। लेकिन सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि किशोर कुमार के किस अंदाज के गाने आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं। उनके रूमानी गाने, उनके उदास गाने, ऐसे गाने जिनमें जिंदगी का दर्शन है, या ऐसे गाने जो हमने आज चुने हैं बहुत ही ज्यादा धमाकेदार, बहुत ही ज्यादा मस्ती भरे, बल्कि कहें कि ऊधम भरे गाने। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए जरा चलते हैं टिम्बकटू और काठमांडू।
2: गौरी जरा बती यासु नौजी मोरी मोरी।
1: आप सभी को किशोर कुमार के अपने पसंदीदा तीन गानों की लिस्ट बनाकर हमें भेजनी है।
2: चोरी चोरी चोरी।
1: जरा देखते हैं कि आपकी पसंद के किशोर के तीन फेवरेट्स कौन से हैं।
2: काकरी माकरी आकरी माकरी काकरी माकरी आकरी माकरी।

0: सब चली, ओ गोरी गोरी कली, मैं आया तेरी गली, कोई क्या करेगा गा गा के गे गे गली जरा टिम्बकटू
1: काठमांडू गले हूँ
0: मैं हूँ लोहा चुंबक तू
1: कैसे भला बच बच के रहूं
0: गे गे गली जरा

0: हूँ दीवाना, पलक न गिराना तू जरा सा उठाना आंखों का पर्दा दादा।
1: मैं चुंबक तू
2: भला बच बच के रहूं।

क्या आपको ये अंदाजा लग सकता है कि ये गाना 65 बरस पुराना है, 65 साल पुराना? और किशोर के गानों को सुनते हुए ये भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि गीतकारों के लिए वो कितनी बड़ी चुनौती बन जाते थे, उनके लिए गाना कैसे लिखा जाता होगा। गेगेगेली जरा टिम्बकटू मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गाना है। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स हैं और मैं चाहता हूं कि कुछ कमेंट्स यहां पर मैं पढ़ दूं। तीन पसंदीदा गानों की जो बात हमने कही थी, तो एक श्रोता है, उनके तीन पसंदीदा गाने खिलते हैं गुल यहां, फूलों के रंग से और मेरे महबूब कयामत होगी। बहुत सारे श्रोताओं की कमेंट्स और इतनी तेजी से स्क्रॉल हो रहा है हमारा ये कंप्यूटर स्क्रीन के इन गानों को पढ़ना भी मुश्किल हो रहा है। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं, मंजिलें अपनी जगह हैं। और तीसरा गाना उड़ गया, कहाँ गया ये, आ जा के तुझे ले, आ चल के तुझे लेके चलूं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि बहुत ही कठिन प्रश्न है क्योंकि किशोर कुमार के कौन कौन से रंग पसंद हैं, हमें तो सारे रंग पसंद हैं। एक और श्रोता, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, रुक जाना ओ जाना और फूलों के रंग से, ये उनके फेवरेट हैं। जिंदगी के सफर में मंजिलें अपनी जगह हैं और सलाम इश्क, ये किसी और श्रोता के फेवरेट्स हैं। और इसके अलावा और भी चीज़ों के जवाब हमारे श्रोताओं ने दिए हैं। एक श्रोता ने कहा है कि भाई कहते हैं मुझको राजा फिल्म का गाना था, बढ़ के बोल बेटा बम बम, मजरूह सुल्तानपुरी ने वो गाना लिखा था। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने ये लिखा कि कहानी किस्मत की फिल्म के गाने से आपने कार्यक्रम को शुरू किया था। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन

अपनी बातें शेयर करते हैं तो ये लगता है कि कितना प्यार इस कलाकार से हम सभी को है जो हम फिल्म संगीत को प्यार करते हैं। अभी गाना आ रहा है जो बिल्कुल बीच से आ रहा है, यानी इस गाने का सबसे ज्यादा फनी पोर्शन हम आपको सुनवा रहे हैं। आपको दो बातें बतानी है, एक तो फिल्म का नाम और दूसरा गीतकार का नाम। ऐसा हुड़दंगा गाना आखिर किसने लिखा?

0: जय धर्मेंद्र, जय जय जय हो जय राजेंद्र।
1: जय गोविंद जय गोपाल, जय गोविंद जय गोपाल।
0: जगत नारायण के छोड़ के संतो, जगत नारायण के सब।

0: अरे पीछे पड़ गया इनकम टैक्स हम, अरे बम बम नाचे किशोर कुमार, बम बम मको बम बम मको बम बम मको बम बम मको बम बम मको।
1: जरा सोचिए कि जब गानों की लाइव रिकॉर्डिंग हुआ करती होगी तो कैसे म्यूजिशियंस और कोरस और किशोरदा के साथ के सिंगर सारा तालमेल बैठाते होंगे और इस हुड़दंग के बीच अपने हिस्से की अदाकारी करते होंगे। क्या कमाल है। एक और श्रोता है जिन्होंने अपने तीन पसंदीदा गाने लिखे, मेरे दुख सुख का संसार, तेरे दो नैनन में, लहरों से पूछ लो और हरे कृष्ण, नया दिन नई रात, काफिला और फरेब फिल्म के गाने, बहुत ही अनमोल गाने इन्होंने बताए। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि किशोर कुमार के गानों में बहुत सारी मस्ती सुनने को मिलती है, उनकी यूडलिंग कमाल की है और इसीलिए उन्हें सारी दुनिया में प्रसिद्धि प्राप्त हुई। ठंडी हवा, ये चांदनी सुहानी, वो शाम कुछ अजीब थी और कश्ती का खामोश सफ़र, ये हमारे एक श्रोता के तीन पसंदीदा गाने। एक और श्रोता हैं जो लिखती हैं कि जिस तरह से वो संजीदा गीत गाते थे, लगभग उसी सुरूर में वो शोख गीतों की कलियाँ चटकाते रहे हैं। आंसू और मुस्कान फिल्म का गाना भी हमने आपको सुनवाया, कमर जलालाबादी ने इस गाने को लिखा, जय गोविंदम जय गोपालम, पीछे पड़ गया इनकम टैक्सम। ये जो बोल है कमाल, मतलब आप ये जरा ये सोचिए कि सामान्य गीतकारी में इनकी गुंजाइश कहाँ है, लेकिन किशोर कुमार गानों में जो गुंजाइश निकालते हैं वो अद्भुत है। जैसे कि ये गाना, आज अगर किशोर कुमार होते तो पहली बात आप उनसे क्या कहते, बताइए।

0: बैठे जाने मेम साहब
1: गर्ल कॉलेज।
0: टैक्सी पकड़ी कॉलेज पहुंची, सुन लिया लेक्चर राधा, पढ़ते पढ़ते याद आ गया किसी से लंच का वादा। खिसक के पहुंची रेस्टोरा, जान में आई जो
1: हाय हीरो, हाय हीरो, हाय हीरो,
2: हाय बेबी, हाय बेबी, हाय बेबी,
1: हाय हाय हाय
2: हाय हाय। हनी मैं तो बोर हो गया।

मेकअप कदम कदम पर धोती वाले मोटी तोंदों वाले लाले क्रिसमस में जापान चलेंगे नहीं तो इंग्लिश थान चलेंगे।

एक श्रोता ये लिखते हैं कि अगर आज किशोर कुमार होते तो उनके सामने बैठकर उनके गाए हुए उनके कुछ गाने सुनती। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिखते हैं कि फिल्म जगत में जो योगदान है उसके लिए हम हमेशा किशोर कुमार के ऋणी रहेंगे। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि आज अगर किशोर कुमार होते तो हम उनसे एक चतुरनार, पाँच रुपया, बारह आना जैसे गाने सुनते। और इसके अलावा एक और श्रोता ने जो बात कही है कि आज के तमाम हीरोज़ के गाने वही गा रहे होते और सबसे ज़्यादा गाने उनके नाम पर होते आज अगर किशोर कुमार होते। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने ये कहा है कि बहुत ही अनसुना गीत आपने बजाया। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने कहा कि अगर आज किशोर कुमार होते तो ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार के सभी गाने वही गा रहे होते। और एक और श्रोता कहते हैं कि हम तो भाई उन्हें साष्टांग प्रणाम करते आज अगर होते। एक और श्रोता हैं जिनका कहना है कि हम उनसे कहते हैं कि आप अपनी यूडिलिंग हमें सुनवा सिखा दीजिए। और फिर एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि आज अगर किशोर कुमार हमारे सामने होते तो हम सैल्यूट करते, चरण स्पर्श करते, कितने लोगों के कितने जज्बात। एक श्रोता लिखते हैं कि किशोर मरते नहीं, किशोर सबके दिलों में जिंदा हैं। किशोर कुमार को समर्पित ये आज का कार्यक्रम सुरीला सफर सीधे रास्ते पर नहीं जा रहा है। आज का जो कार्यक्रम है ये बिल्कुल वैसा है जैसी किशोर कुमार की मस्ती, जैसे किशोर कुमार का हुड़दंग। यानी ऐसे गाने जिन्हें सुनकर आप रह जाएं हक्का।

0: ए बी हक्का हक्का बक्का दुनिया पागल है अलबत्ता। अरे डाली टूटी फल है कच्चा बाग लगाया पक्का। ए बी हक्का हक्का बक्का दुनिया पागल है अलबत्ता। अरे डाली टूटी फल है कच्चा बाग लगाया पक्का। ए बी हक्का।
1: किस फिल्म का है ये गाना ये बताइए।
0: चाहे हम

मुझे ये हवा मिली ऐसी नजर किसको बूम धाम बड़ा बड़ा बूम आई आधी टूटा पत्ता डाली टूटी फल है कच्चा बाग लगाया पक्का ये भी हक्का हक्का पक्का दुनिया पागल हो है।

चूमे। अरे दूर फिटे मुंह चलते जाना, देखे धक्का आई आधी, टूटा पत्ता डाली टूटी, फल है कच्चा, भाग लगाया पक्का, ए भी हक्का, हक्का बक्का, दुनिया पागल है अलबत्ता, है डाली टूटी, फल है कच्चा, भाग लगाया पक्का, ए भी हक्का, मच मैं हूँ इंसान, वो है कुत्ता, कहता हूँ पते की सुन, वो सोनियो मैं हूँ इंसान, वो है कुत्ता, कहता हूँ पते की सुन, वो भी काटे मैं भी काटू, यहाँ सबको है अपनी धुन। अरे भागो बंबई से कलकत्ता, चलते जाना देके धक्का आई आधी, टूटा पत्ता डाली टूटी, फल है कच्चा, बाग लगाया पक्का। ए भी हक्का, हक्का बक्का, दुनिया पागल है अलबत्ता, अरे डाली टूटी, फल है कच्चा, बाग लगाया पक्का, ए भी हक्का, हक्का बक्का, दुनिया पागल।

0: भाई इस गाने को सुनकर क्या कहेंगे आप। मजरूह सुल्तानपुरी के ये बोल हैं, कितने सारे श्रोताओं ने अपनी बात कही है और अपने जज्बात का इशार भी किया है। और एक श्रोता है जो कहते हैं कि उनके फेवरेट गाने हैं एक लड़की भीगी बागी सी, अजनबी, तुम जाने पहचाने से लगते और कश्ती का खामोश सफ़र। एक श्रोता और हैं जिन्हें बिंदु रे बिंदु गाना बहुत पसंद है, ये जो गाना हमने आपको सुनवाया इसके बारे में भी कई श्रोताओं ने अपनी बात कही है। और इसके अलावा किशोर कुमार की गाय नगमे मनोरंजन ही नहीं करते, अपनी आवाज़ के जादू से हम सबके दिलों में जगह बना लेते हैं, ये किसी ने कहा है। वो दुनिया से ज़रूर विदा हो गए मगर उनके गीतों को क्या हम अपने दिल से विदा कर सकते हैं, ये भी एक बात। और इसके अलावा एक और श्रोता लिखती हैं कि किशोर दा के सामने मौजूद होना ये किसी भी कला प्रेमी के लिए जीवन का सबसे बड़ा और जादुई पल हो सकता है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं, लहरों की तरह यादें, मेरा जीवन कुछ काम ना आया, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, ये तमाम गाने। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि खंडवा में हम उनके घर उनके समाधि स्थल तक गए और इन जगहों के दर्शन करने का सौभाग्य हमें मिला है। और इसके अलावा एक श्रोता है जो कहते हैं कि किशोरदा अगर आज होते तो खंडवा में दूध जलेबी का आनंद ज़रूर लेते। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि अपने घर को लेकर उनका अपना एक अलग सपना था जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने अपने घर में एक आर्किटेक्ट को बुलाया और कहा कि मेरा एक ऐसा घर बनाओ जिसके हर कमरे में पानी हो और पूरे घर में नाव चलाकर एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाए। आर्किटेक्ट भाग खड़ा हुआ। ये घटना जो है ये बहुत ही दिलचस्प है, पर आज के इस कार्यक्रम में ना जगह है ना सही समय है इसे बताने का। दरअसल उन्होंने उस आर्किटेक्ट से एक तरह का बदला लिया था, उसे सताया था। चलिए छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। और किशोरदा एक सलाह दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कुएं में कूद के मर जाना यार, तुम शादी मत करना। अब आप लोग विविध भारतीय फेसबुक पेज पर जाकर बताइए कि ये सलाह सही है या नहीं है।
1: कुएं में ठंडा जल में नहाने से गला ठोचरा बैठ गया।

हो, देखी दिल्ली की एक लड़की, जिसको देख तबीयत भड़की, मुख से आह निकल गई ठंडी, अंदर अंदर आग सी भड़की।

0: पहुंचा मैं उसके बंगले पर। अपने दिल की उमंगे लेकर पहुंचा मैं उसके बंगले पर। जाते ही झुके सलाम बजाया डैडी को, दिल का बयान सुनाया, भोले भाले डैडी बोले।
1: हाँ जी अच्छा ख्याल है आपका दीजिए, ये मुझको पता अपने बाप का, आपके बाप को चिट्ठी के जरिए बता दूंगा, अच्छा ख्याल है आपका।
2: चाय पिलाओ

0: कोई बता सकता है कि ये किस फिल्म का गाना है?
1: कहने लगा
2: ये मुंह और मसूर की दाल पे निकल जा, निकल जा, निकल जा यहां से चंडाल के बच्चे। उसका भाई था अक्सर भारी, उसका भाई

0: मिस खंबा
1: बम्पी बम्पी बम्पी बम्प
0: कुछ खेल हुआ कुछ मेल हुआ दिल फेल हुआ हाय हाय रे
1: बबलू बबलू बबलू बाबा बबलू बबलू बबलू बाबा बबलू
0: होनोलुलू होनोलुलू।
2: कहाँ से पहुंचे और कहाँ चले गए हुनू लुलू, कुएं में कूद के मर जाना, यार तुम शादी मत करना परिवार, फिल्म का ये गाना बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं। शैलेंद्र का ये गीत और सलील चौधरी का संगीत, इस गाने के बोल एक कागज पर लिखकर देखिए और जरा सोचिए कि कैसे लिखे गए होंगे ये गाने और कैसे इनकी रिकॉर्डिंग की गई होगी। 1956 में आई थी ये फिल्म और बिमल रॉय की ये फिल्म थी और बिमल रॉय निर्मित इस फिल्म में किशोर कुमार का स्पेशल अपीयरेंस था, ये भी हमारे एक श्रोताओं हमारे कुछ श्रोताओओं में से किसी एक ने कहा है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि किशोरदा किस तरह से किसी भी गाने को मज़ेदार बना देते हैं कि सुनकर बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि 50-60 साल पहले लड़कियों के लिए अगर शादी ना करनी होती तो भी करनी पड़ती थी, आज की बात कुछ अलग है। एक श्रोता है जिन्होंने सारी बात को समअप कर दिया है कि शादी वो लड्डू है जो खाए पछताए जो ना खाए पछताए, इसलिए शादी करना ही बेहतर है, ये उनका विचार है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि किशोर कुमार को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, भारतीय सिनेमा के सबसे बहुमुखी और प्रभावशाली कलाकार।

में से एक वो माने जाते हैं। एक और श्रोता का कहना यह है कि उनके तीन पसंदीदा गानों को सिलेक्ट करना जरा मुश्किल है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये कहते हैं कि बहुत ही अनोखा कॉम्बिनेशन आज आपने किया है। पहले तो उदास गाने बजाए और उसके बाद ऐसे मस्ती भरे गाने लगाए कि एक श्रोता कह रही है कि ऐसे गीत लाए हैं जो आज हमने इनमें से कुछ पहली बार सुने हैं। ठीक है भाई, अब जरा ये गाना सुनिए और बताइए रुपहले पर्दे पर इस गाने में कौन कौन नजर आते हैं और किशोर कुमार इस गाने में किसकी बैंड बजा रहे हैं।

0: ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया।

0: गोरी अगोरी अगोरी बढ़ के बुदन चीर भी टकर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय हाय नटखट रंगीले सावरिया आंखें सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया।

0: तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी, हो नटखट हो खटपट हो पनघट हो झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़
1: तोरे नैना, ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना, हाय हाय मीठे बहना।

0: ओ गुजरिया
1: ओ समरिया
0: ओ गुजरिया
1: ओ समरिया।
2: भाई खत्म हुआ ये हुड़दंग का गाना, हाफ टिकट फिल्म का गाना शैलेंद्र के बोल। और एक श्रोता है जिन्होंने ये लिखा है कि मध्य प्रदेश के लोग ही नहीं नहीं नहीं ये बात ठीक नहीं है, इस तरह से ना करें क्षेत्रवाद। वो कह रहे हैं मध्य प्रदेश के लोग ही ऐसा हुड़दंगा कार्यक्रम कर सकते हैं। एक और श्रोता है जो कह रहे हैं फिल्म हाफ टिकट शैलेंद्र जी के बोल हैं। और हाँ एक चीज़ आपसे कहनी है कि कई श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने जोश जोश में सखी सहेली वाली या आज शाम के 4 बजे पिटारा वाले कार्यक्रम में जाके अपने कमेंट कर दिए और किशोर कुमार के फेवरेट गाने वहाँ चिपका दिए। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने जाके वहाँ पर आपके कमेंट्स देखे तो मुझे लगा ये कुछ कमेंट्स वहाँ पर क्यों हैं। तो एक श्रोता लिख रहे हैं कि भाई इस गाने में किशोर कुमार प्राण की बैंड बजाते हैं, क्या तो शानदार मुकाबला है दोनों महान कलाकारों का इस गाने में। और इसके अलावा

0: एक श्रोता लिखते हैं कि किशोर कुमार की बहुमुखी प्रतिभा का शानदार उदाहरण है और किशोर कुमार ने ही महिला और पुरुष स्वर में भी गाया है और प्राण के स्वर में भी गाया है। और इसके अलावा और भी तमाम श्रोताओं ने अपनी बातें कही हैं, लेकिन आज गाने भी ज़्यादा हैं और आप सभी के जज्बात जिस तरह से आ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए हौसला बढ़ाने की भी बात है, और ये भी कि किशोर कुमार के प्रति जो आपका प्रेम है वो कितना ज़्यादा है। अब एक श्रोता ये लिख रहे हैं कि पहले हास्य गीतों का एक कार्यक्रम आया करता था विविध भारती पर, आज के इस कार्यक्रम ने उसकी याद दिला दी है। इसके अलावा एक श्रोता का कहना है कि जब वो हास्य गीत गाते थे तो लगता था उन्होंने गाने को किसी धागे की तरह उलझा दिया है, और यही धागा उलझाना उनकी विशेषता थी। अब दो गाने बैक टू बैक आएंगे, बल्कि गानों के अंश बैक टू बैक आएंगे, आपको इनकी फिल्मों के नाम बताना है।
1: मेरी

भाई, बैक टू बैक दो गाने हमने आपको सुनाए और सभी श्रोताओं ने अपने इन बातों के जवाब दिए। चलती का नाम गाड़ी और पड़ोसन फिल्म के ये गाने। और चलती का नाम गाड़ी के गाने के बारे में एक श्रोता लिखती हैं कि क्या तो एक्सप्रेशन है, मधुबाला के लिए गा रहे हैं पर लगा ऐसा जैसे उनके लिए उन्हें इससे कोई मतलब ही नहीं है। क्या तो शानदार फिल्म है चलती का नाम गाड़ी। कितने बार आपने देखी है ज़रा बताइएगा तो हम ये अंदाज़ा लगा पाएं कि चलती का नाम गाड़ी हमारे आज सुन रहे श्रोताओं में सबसे ज़्यादा कि बार किसने देखी है। एक तो ये बात हो गई और दूसरी बात ये है कि आज जो मैंने इबारत लिखी थी किशोर कुमार के हुड़दंगे गानों के बारे में, क्या कोई गिनकर बता सकता है कि उस पूरी इबारत में कुल कितने गाने समाए हुए हैं? और अब किशोर कुमार का ये बेतहाशा हुड़दंगा गाना, फिल्म का नाम आपको है बताना।

0: अरे भाई अरे भाई
1: अरे भाई निकल के आघर से आघर से, दुनिया की रौनक देख फिर से, देख ले फिर से, अरे भाई।

चल रहा होगा, आगे की सोच क्या होगा। अरे कल जो था

0: क्या तो शानदार गाना है, नई दिल्ली फिल्म का ये गाना। भाई आज की इबारत पढ़िए और जल्दी से हिसाब लगाकर बताइए कि आज की इबारत में मैंने जो शब्द लिखे हैं, गानों को जोड़कर जो इबारत बनाई है, उसमें गानों की कुल संख्या कितनी है, जरा हम देखें तो कि आप लोग सही सही अंदाजा लगा पाते हैं या नहीं, क्योंकि शब्द शब्द पर गाने समाये हुए हैं। तो कुछ श्रोताओं के जवाब आए हैं, कुल 13 गीत हैं जो कि गलत जवाब है, एक और हैं जिन्होंने 14 गीत लिखा है वो भी गलत जवाब है। तो जरा ध्यान से पढ़िए और आज का ये कार्यक्रम, एक कार्यक्रम का एक बड़ा हिस्सा तो खत्म हो चुका है। तो एक और श्रोता है जिन्हें 16 गाने इस गाने की इबारत से मिले हैं, तो बहुत करीब पहुंच चुकी हैं वो। इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि भाई घर से बाहर तो आज नहीं निकल सकते क्योंकि आज हम सुरीला सफर सुन रहे हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये कहते हैं कि हम तो अभी घर पर ही हैं, निकलेंगे तो रौनक देख लेंगे, घनश्याम भाई का नाम भी है इस गाने में। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि न्यू दिल्ली फिल्म का ये गाना शंकर जयकिशन का संगीत है। एक और श्रोता है जो देर से जुड़े हैं लेकिन इस कार्यक्रम में उनको बिल्कुल मज़ा ही आ गया है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि बारिश भी ऐसा ही कह रही है कि भाई अरे भाई निकल के आ घर से, दुनिया की रौनक देख फिर से। तो ये किशोर कुमार का जादू है। और अब जो गाना आ रहा है वो किचन में खाना पकाते हुए फिल्माया गया गाना है, और आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि किचन में खाना पकाते हुए सबसे बड़ा ब्लंडर आपने जो किया था वो क्या था और कब किया था, क्या पका रहे थे आप?
1: फूंक फूंक कर चूल्हा

बोल मेरे दुखिया मन कब तक, ये चूल्हा ये चौका ये झाड़ू ये बर्तन ये आटा बटाटा ये गड़बड़ गुलाटा और ये और वो और घर तेरी की, पर सब दिन हो तन एक समान पंछी काहे होत उदास। एक

मार। दिन होंगे गरीबी के जिस दिन खलास, गरम गरम गरम गरम कचौरी पूरी खूब तलेगी, गरम गरम कचौरी पूरी खूब तलेगी। बड़ी दुनिया जो देखेगी खूब जलेगी, बड़ी दुनिया जो देखेगी है, है। है बड़ी दुनिया जो देखेगी खूब जलेगी, एक रोज हमारी भी दाल गलेगी, एक रोज हमारी भी दाल गलेगी।

इंग्लिश बोलूं रे होटल खोलूं रे किट पिट बोलूं रे होटल खोलूं रे निकले मेरा जुलूस बैंड बाजे के साथ रोज मेरी सलामी को

भाई बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आए हैं और इस तेजी के साथ स्क्रीन स्क्रॉल कर रही है कि समझ नहीं आ रहा किसने क्या लिखा है। एक श्रोता है जो ये कहते हैं क्यों ना रोटियों का हम पेड़ लगा लें, आम तोड़ें, रोटी तोड़ें, रोटी आम खा लें। वाह भाई वाह वाह वाह वाह। यहाँ मुझे लगता है कि ये सवाल ज़रूर पूछना चाहिए कि ये जो शैलेंद्र के बोल कोट किए हैं इन्होंने, क्यों ना रोटियों का पेड़ हम लगा लें, आम तोड़ें, रोटी आम खा लें, ये किशोर कुमार का गाया हुआ एक गाना है। क्या आप में से कोई बता सकता है कि ये कौन सा गाना है? जिन्होंने पोस्ट किया वो प्लीज़ मत बताइएगा। एक और श्रोताएं जो कहती हैं कि 19 गाने हैं आज की इस इबारत में, एक श्रोताएं जो कहती हैं कि आज की इबारत में 20 गाने हैं, एक श्रोता नाराज हैं कि सुरीला सफ़र की पोस्ट आते ही अपने विचार व्यक्त करता हूं, पर आपको अपने सवालों में ही दिलचस्पी रहती है, शायद इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करके हमने गलती कर दी है। भाई आपका कमेंट दिखा नहीं, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा श्रोताओं के कमेंट्स शामिल करने की कोशिश करते हैं और देखिए कि लगातार कमेंट्स पढ़ रहे हैं गानों के बीच में। ये कमेंट दिखा और फौरन पढ़ा। एक श्रोता है जिन्होंने गाजर का हलवा बनाया और दूध की बजाय चावल पता नहीं क्या उन्होंने जोड़ दिया और हलवे की बैंड बज गई। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रही हैं कि उन्होंने चाय में नमक डाल दी थी और मेहमानों को परोस भी दी थी। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि कुछ कुकर में खिचड़ी बन रही थी, गैस चूल्हे पर रखकर भूल गया, उसका ढक्कन उड़ा, खिचड़ी जाकर दीवारों और छत पर लग गई, हे भगवान। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि पहली बार जब आटा गूंधा तो ढेर सारा पानी डाल दिया था और एक ही बार में वो गीला हो गया था। एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि इस गाने के साथ मेरा भी एक किस्सा है। वैसे तो कभी कभी पापा छुट्टी के दिन खाना बना देते थे और उस दिन यही गाना गाते थे, एक रोज़ हमारी भी दाल गलेगी। एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि हमारी दाल तो गल गई है और अब हम रोटी पका रहे हैं, वही वाह। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने कहा है कि भाई 18 गाने आज के इस कार्यक्रम में, आज की इस इबारत में हैं और ये जो किचन के

ब्लंडर्स हैं, ये पढ़कर बड़ा ही मज़ा आ गया। बल्कि एक और मज़ेदार किस्सा ये हुआ है कि के मुंगो छो घनश्याम जी, इस तरह की जो पंक्ति है अरे भाई निकल के आ घर से वाले गाने में, तो बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जिनका नाम घनश्याम है, उनको बड़ा मज़ा आ गया आज के कार्यक्रम में इस गाने की इस लाइन को सुनकर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और किशोर का एक और हुड़दंगा गाना सुनते हैं। फिल्म का नाम आप बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि आज इतने सारे हुड़दंगे गाने जो हमने बजाए उसमें से आपका पसंदीदा कौन सा गाना था, और अगर कोई भयंकर हुड़दंगा गाना हमने मिस कर दिया तो वो भी बता दीजिए।

0: ओ मोहे, ओ मोहे, पत, पत, नी, नी, पत्नी,
1: पत्नी मिलन की आस

बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए। एक श्रोता लिखती हैं कि भाई जरूरत है एक श्रीमती की, ये गाना नहीं बजाया गया। एक और श्रोताएं जो लिखती हैं, प्रिय प्राणेश्वरी को मिस कर रही हूं, इसके अलावा झुमरू गाना नहीं बजाया गया। और इसके अलावा बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी बात कही है, पर एक श्रोता है जिन्होंने कहा कि क्यों ना रोटियों का पेड़ हम लगा लें, आम तोड़े रोटी तोड़े रोटी आम खा लें, ये गाना मुसाफिर फिल्म के गाने की पंक्तियां हैं। मुन्ना बड़ा प्यारा ये गाना है जिसमें इतनी सुंदर पंक्तियां आती हैं। शैलेंद्र लिखते हैं कि एक दिन वो माँ से बोला, क्यों फूकती है चूल्हा, क्यों ना रोटियों का पेड़ हम लगा लें, आम तोड़े रोटी आम खा लें, काहे कले लोज लोज तू ये झमेला, अम्मी को आई हंसी, हंस के वो कहने लगी, लाल मेहनत के बिना रोटी किसके घर पर पकी। ये है जादू गीतकारी का, ये है जादू शैलेंद्र का। किशोर कुमार का एक बहुत ही प्यारा गाना और उसकी बहुत प्यारी पंक्ति, शुक्रिया जिस भी किसी श्रोता ने इसका जिक्र किया है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने कहा है कि भाई चलते चलते ये ज़रूर बता दीजिएगा कि कुल कितने गानों से आपने इबारत सजाई थी। बहुत सारे श्रोता अलग अलग आंकड़े लिख रहे हैं, तो मैं कहूँगा तकरीबन 18 गाने तो मुझे ही नज़र आए थे, और आप लोग ढूंढ लीजिएगा क्योंकि अलग अलग शब्दों से भी गाने सज जाते हैं। तो बहुत सारे श्रोताओं को आनंद आ रहा है, और खाना पकाते हुए दाल गलेगी जैसे गाने सुनते हुए किसी के दाल चावल बन गए, किसी की रोटी और किसी की हैदराबादी बिरयानी।

और कार्यक्रम का आखिरी गाना। फिल्म का नाम बताइएगा और साथ में देखिए संगीतकार भी यहां बदल जाते हैं, और ये भी कि इस गाने के जरिए दुनिया को देखने की नई नजर आपको मिलेगी।

दुश्मन जिसे सताए जिसको लगा के जाए जाके नजर मिलाए धोखा कभी न खाए बूढ़ा हो या हो बच्चा।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित अन्य मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाते हुए गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग करने लगे। अध्यक्ष के बार बार अनुरोध के बावजूद हंगामा शांत नहीं हुआ, जिसके बाद सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इधर राज्यसभा में भी इसी मुद्दे को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। जदयू अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार ने आज नई दिल्ली में संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा और मंत्री राजीव रंजन सिंह भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना स्थित नासरीगंज घाट से पानापुर घाट तक स्टीमर सेवा का उद्घाटन किया। इस सेवा के शुरू होने से दियारा इलाके के लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव समेत कई गणमान्य लोग मौजूद।

0: बिहार के पूर्व राज्यपाल और शिक्षाविद डीवाई पाटिल का आज उनके पैतृक आवास महाराष्ट्र के कोल्हापुर में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। डीवाई पाटिल 22 मार्च 2013 से 26 नवंबर 2014 के बीच बिहार के राज्यपाल रहे थे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने डीवाई पाटिल के निधन पर गहरा शोक जताया है। श्री चौधरी ने कहा कि एक दूरदर्शी शिक्षाविद और समाज सेवी के रूप में उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। आकाशवाणी पटना से प्रसारित होने वाले भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण समय में परिवर्तन किया गया है। 7 अगस्त से यह समाचार बुलेटिन संध्या 6:05 की जगह संध्या 5:30 से सुना जा सकता है। भोजपुरी समाचार बुलेटिन का प्रसारण आकाशवाणी पटना के साथ ही 101.6 MHz पर FM रेनबो चैनल पर भी सुना जा सकेगा। प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान अररिया में सबसे अधिक 160 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं किशनगंज के चरघरिया में 124.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि आज अररिया, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, मधेपुरा, खगड़िया, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और शिवहर जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। राज्य के अन्य जिलों में भी बारिश की संभावना है। प्रदेश के विभिन्न भागों में आज चेहल्लुम पूरी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। इमाम हुसैन की शहादत की याद में यह दिन मनाया जाता है। इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर ताजिया, सिपर, अलम और मातमी जुलूस निकाले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हजरत इमाम हुसैन और करबला के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी कुर्बानी अमर है और यह समाज को हर दौर में रास्ता दिखाती है। मधुबनी जिले के जयनगर थाना क्षेत्र के खैरामठ के पास एसएसबी और एसटीएफ की टीम ने 3 तस्करों को 200 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1,59,000 नेपाली रुपए भी बरामद किए गए। अररिया जिले के अलौली थाना क्षेत्र से पुलिस ने मादक पदार्थ स्मैक और कारतूस के साथ 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। भागलपुर बाईपास थाना अध्यक्ष चनवीर यादव को ट्रकों से अवैध वसूली करने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
1: ये आकाशवाणी पटना है। अब आप शर्फुल हुदा से इलाकाई खबरें सुनिए। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई नीट मामले पर तलबा के एहतजाजी मजाहरे के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई समेत दीगर मामलों पर अपोजिशन की हंगामा आरई के सबब दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। लोकसभा में कार्रवाई शुरू होते ही स्पीकर ओम बिरला ने वक्फे सवालात शुरू करने की कोशिश की, लेकिन अपोजिशन अराकीन ने तलबा के एहतजाजी मुजाहरे के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई का मौजू उठाते हुए वजीर दाखिला अमित शाह का बयान करने लगे। स्पीकर की बार बार अपील के बावजूद शोर गुल खत्म नहीं हुआ, जिसके बाद ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इधर राज्यसभा में भी इसी मामले पर ओपोजिशन के अरकान के बीच कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी रखनी पड़ी। जदयू के सदर और राज्यसभा के रुकने नीतीश कुमार ने आज नई दिल्ली में संसद भवन में वजीर

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान पार्टी के कारगुजार सदर संजय झा और वजीर राजीव रंजन भी मौजूद थे। वजीर आला सम्राट चौधरी ने आज पटना वाके नासरीगंज घाट से पानापुर घाट तक स्टीमर खिदमत का आगाज किया। इस सर्विस के शुरू होने से दियारा इलाका के लोगों को आमद और रफ्त में सहूलत होगी। इस मौके पर नायब वजीर आला विजय कुमार चौधरी और कोऑपरेटिव के वजीर राम कृपाल यादव समेत कई मोअज्जज लोग मौजूद थे। बिहार के साबिक गवर्नर और माहिर तालीम डी वाई पाटिल का आज उनकी आबाई रिहायशगाह महाराष्ट्र के कोल्हापुर में इंतकाल हो गया। वो 91 साल के थे। डी वाई पाटिल 22 मार्च 2013 से 26 नवंबर 2014 के दरमियान बिहार के गवर्नर थे। वजीर आला सम्राट चौधरी ने डी वाई पाटिल के इंतकाल पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है। जनाब चौधरी ने कहा कि एक दूरअंदेश माहिर तालीम और सामाजिक कारकुन की हैसियत से इनको हमेशा याद किया जाएगा। आकाशवाणी पटना से नशर होने वाली भोजपुरी बुलेटिन के वक्त में तब्दीली की गई है। 7 अगस्त से ये समाचार बुलेटिन शाम 6:05 की जगह शाम 5:30 से सुना जा सकता है। भोजपुरी समाचार बुलेटिन का नशरिया आकाशवाणी पटना के साथ ही 101.6 MHz पर FM रेनबो चैनल पर भी सुना जा सकेगा। रियासत में मानसून की सरगर्मी से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात से मौसूला इत्तला के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान अररिया में सबसे ज़्यादा 160 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं किशनगंज के चरघरिया में 124.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने अपने पेशगोई में कहा है कि आज अररिया, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, मधेपुरा, खगड़िया, सीतामढ़ी, मशरकी चंपारण और शिवहर ज़िलों में कुछ मकामात पर काफ़ी बारिश हो सकती है। रियासत के दीगर अज़ला में भी बारिश का इम्कान है। रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में आज चहलुम पूरी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। हज़रत इमाम हुसैन की शहादत की याद में ये दिन मनाया जाता है। इस मौके पर मुख्तलिफ मकामात पर ताज़िया, सिपर, अलम और मातमी जुलूस निकाले जा रहे हैं। वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने हज़रत इमाम हुसैन और शहीदाने करबला को अकीदत नज़र किए हैं। अपने पैगाम में वज़ीर आला ने कहा है कि उनकी कुर्बानी लाफानी है और ये समाज को हर अहद में राह दिखाती है। मधुबनी ज़िले के जयनगर थाना हलका के खैरा मठ के पास SSB और STF की टीम ने 3 स्मगलरों को 200 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1,59,000 नेपाली रुपये भी बरामद किए गए। अररिया ज़िला के अलौली थाना हलका से पुलिस ने नशा आवर अशिया स्मैक और कारतूस के साथ 4 मुलजमीन को गिरफ्तार किया है। भागलपुर बाईपास थाना इंचार्ज चनवीर यादव को ट्रकों से नाजायज़ वसूली करने के इल्ज़ाम में फौरी असर से मुअत्तल कर दिया गया है। और इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए रोजगार सूचना। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NICL असिस्टेंट के कुल 500 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी।

रेलवे भर्ती बोर्ड, आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 अगस्त 2026 है। आवेदन से संबंधित

से जानकारी www.nationalinsurancenic.co.in से प्राप्त किया जा सकता है। रेलवे भर्ती बोर्ड RRV सेक्शन कंट्रोलर के कुल 119 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें।

उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें।

उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 33 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 अगस्त 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.indianrailways.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग पुलिस अवर निरीक्षक सामान्य बंद संवर्ग के कुल 150 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 अगस्त 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.bpssc.bihar.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार अंक।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर, विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित, ओडिशा की प्रमुख नदियों का जलस्तर घटने से बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार, तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन की विवादास्पद टिप्पणी को लेकर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बाग जिले में निहत्थे नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी के बाद अशांति बढ़ी, होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाज पर हाल के हमलों के कारण संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीका और ईरान की प्रस्तावित शांति वार्ता पर अनिश्चितता और बढ़ी, और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों के अभियान की शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर, विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित की गई। पहले सदन के बाद राज्यसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने हंगामे के बीच प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच शून्यकाल शुरू किया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
1: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार

0: लोकसभा में भी हंगामे की स्थिति देखने को मिली। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रश्नकाल के दौरान व्यवधान उचित नहीं है।
1: लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच होने के कारण हम सब की जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सदन में चर्चा करें, संवाद करें, अपनी सहमति असहमति व्यक्त करें, लेकिन सदन चर्चाओं के लिए ही चर्चा संवाद से हम देश की जनता का कल्याण कर पाएंगे। मैं सबको पर्याप्त अवसर दूंगा।
0: दोनों सदनों की कार्यवाही इस समय जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर संसद के मॉनसून सत्र को बाधित करने का आरोप लगाया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज सुबह नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस और उसके गठबंधन दल ने प्रश्नकाल तथा शून्यकाल के दौरान हंगामा किया।
2: करोड़ों रुपए खर्च होते हैं एक सेशन के ऊपर। सभी सांसद अपने क्षेत्रों से प्रश्न लेकर आते हैं, वो चाहते हैं कि प्रश्न पूछा जाए, मंत्रालय जवाब दे, मगर जब से सदन आरंभ हुआ है क्वेश्चन आवर पार्लियामेंट में हो नहीं रहा। जीरो आवर के लिए पार्लियामेंट में बाधाएं उत्पन्न की जा रही, लगभग किसी बिल पे चर्चा नहीं हो रही।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में और संशोधन करेगा। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 आज राज्यसभा में विचार और पारित करने के लिए पेश किया गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक पेश करते हुए बताया कि इसका उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को अधिक कठोर बनाने तथा जन्म और मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में स्थायित्व लाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वे आज राज्यसभा में पूरक प्रश्नों के उत्तर दे रही थी। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत गन्ना, अनाज, दलहन, तिलहन और अन्य कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन योजना PLI एक बड़ी सफलता के रूप में उभरी है, जिससे न केवल प्रमुख क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ावा मिला है बल्कि दीर्घकालिक आर्थिक विकास को सहायता देने वाले एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में भी सहायता मिली है।
3: सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों MSME को कई तरह से लाभ मिला है। सबसे पहले MSME की परिभाषा का दायरा बढ़ाया गया है। उन्हें मिलने वाली सभी सुविधाएं पहले की तरह जारी हैं। समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कानून में संशोधन किए गए हैं, जिससे 90 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान संभव हो रहा है। साथ ही उद्यम पोर्टल पर MSME के पंजीकरण होने से उनके लंबित भुगतान का निपटारा भी और अधिक प्रभावी ढंग से किया जा रहा है।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन को विवादास्पद बयान के संबंध में पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में लिया गया। कावेरी जल विवाद को लेकर कल DMK के किसान विरोध प्रदर्शन में श्री उदयनिधि के विवादास्पद भाषण के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया है। तंजावुर की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप है कि उनके भाषण में महिलाओं के खिलाफ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। आगे की कार्रवाई के लिए उदयनिधि को तंजावुर ले जाया गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज संसद भवन में आयोजित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अन्य नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। भाजपा के राज्यसभा सांसद शिवेश कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की मंगल मिलन बैठक में वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य पर चर्चा हुई।

0: संदेश बिल्कुल साफ था, जो हमारे जो 12 साल के काम हुए हैं और पीछे के जो काम हुए उसकी तुलना में देश जो है विकास किया है, और जो लक्ष्य है माननीय प्रधानमंत्री जी का आने वाले समय में 2047 का, उस लक्ष्य को लेकर हम चल रहे हैं। मनसुख भाई जी ने एक एक विषय पर विस्तार से बताने का काम किया, स्पोर्ट्स के बारे में, GDP ग्रोथ के बारे में।
1: भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुघ ने कहा है कि E20 ईंधन नीति के विरोध में अरविंद केजरीवाल का प्रस्तावित मार्च भारतीय किसानों के हितों के खिलाफ है, जिन्हें इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम से लाभ मिल रहा है।
2: उनका ये विरोध भारत के किसानों के आमदन का विरोध है। जो किसान मक्का पैदा कर रहा है, जो किसान गन्ना पैदा कर रहा है, उसके पास करोड़ों अरबों रुपए जा रहे हैं, आप उसका विरोध कर रहे हैं। और ये जो भी मिलाया गया है, जितना भी मिलाया गया है, वो साइंटिफिक तरीके से मिलाया गया है और प्रमाणिक तरीके से हुआ है। इसका किसी भी वाहन पर कोई असर नहीं हो रहा है।
1: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा संशोधन विधेयक 2026 के अंतर्गत किसी भी राज्य और लाभार्थी को मिलने वाले अनाज में कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए ये जानकारी दी। श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है।
3: सभी हितधारकों ने अपने सुझाव दिए हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सार्वभौमिक कवरेज के संदर्भ में देश के 75% परिवारों में 4 से कम लाभार्थी हैं। इन सभी परिवारों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जा रहा है। वहीं लगभग 14% परिवार ऐसे हैं जिनमें केवल एक सदस्य है, ऐसे परिवारों को भी 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जा रहा है।
1: स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थ नियंत्रण के क्षेत्र में 27 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों और 19 देशों के साथ समझौता ज्ञापनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत किया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। वर्ष 2021 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस भारत लाया गया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने वर्ष 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। गृह मंत्री अमित शाह ने भगोड़ों के खिलाफ 3 सूत्री रणनीति पर बल दिया, जिसमें वैश्विक संपर्क, मजबूत समन्वय और कुशल कूटनीति शामिल हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर रांची में छात्रों का विरोध प्रदर्शन आज 11वें दिन भी जारी है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने इस मामले की CBI जांच की मांग करते हुए भर्ती आयोगों में भ्रष्टाचार और परिवारवाद के आरोप लगाए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदीव कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है। ये समिति छात्रों से बातचीत करेगी और 1 से 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वीडियो का खंडन किया है, जिसमें प्रधानमंत्री को पुराने सिक्कों की प्रदर्शनी में भागीदारी के लिए सरकार अधिकृत खरीदार का समर्थन करते हुए दिखाया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि वीडियो फर्जी है और इसे डिजिटल रूप से छेड़छाड़ करके बनाया गया है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। महानदी सहित प्रमुख नदियों का जलस्तर घट रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: ओडिशा में बाढ़ के बाद हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं। सोमवार रात से महानदी में बाढ़ का पानी कम होने लगा है। हालांकि कई परिवार अभी भी बेघर है, क्योंकि निचले इलाकों से पानी पूरी तरह नहीं निकला है। इस बीच हीराकुद बांध प्रशासन पानी का बहाव कम होने के बाद 13 स्लुइस गेटों से नियंत्रित तरीके से बाढ़ का पानी छोड़ रहा है, जिससे जलाशय पर दबाव कम करने में मदद मिल रही है। IMD ने अगले 2 दिनों में राज्य के कई हिस्सों में आंधी तूफान और बिजली गिरने का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: केरलम के 8 जिलों में आज मूसलाधार वर्षा की आशंका को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एक रिपोर्ट।
5: केरलम के 14 जिलों में से 8 जिलों में रेड अलर्ट और 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश और बाढ़ के कारण 13,000 से अधिक लोग अब भी राहत शिविरों में रह रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। आज मुख्यमंत्री VD सतीशन ने पथनमथिट्टा जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। राज्य सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और भूस्खलन की आशंका वाले इलाकों से सुरक्षित

0: स्थानों पर चले जाएं। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पुलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरल, माहे और दक्षिण आंध्रिक कर्नाटक में तेज वर्षा का अनुमान है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ती जा रही है। संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने बाग जिले में निहत्थे नागरिकों पर गोलीबारी की और आंसू गैस के गोले दागे। समिति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर घटनास्थल का फुटेज साझा करते हुए ये जानकारी दी। ये घटनाएं पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी सेना की बढ़ती क्रूरता के बीच हुई है। यहां पिछले कुछ दिनों में कथित तौर पर 50 से अधिक लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाज पर हाल के हमलों के कारण संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान की प्रस्तावित शांतिवार्ता पर अनिश्चितता और बढ़ गई है। एक मालवाहक पोत पर आज होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरते समय मिसाइल से हमला होने की खबर है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के अनुसार ये घटना रणनीतिक जलमार्ग के दक्षिणी किनारे पर ओमान के अल खसाब से लगभग 20 समुद्री मील उत्तर पूर्व में हुई। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो गया है। कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय की जोड़ी ने पुरुष डबल्स का पहला मैच जीत लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित। लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। ओडिशा की प्रमुख नदियों का जलस्तर घटने के बाद बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन की विवादास्पद टिप्पणी को लेकर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बाग जिले में निहत्थे नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी के बाद अशांति बढ़ी और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों के अभियान की शुरुआत। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में सबसे पहले फरेब फिल्म का गाना मजरू सुल्तानपुरी के बोल अनिल बिस्वास की तर्ज है।

विविध भारती से आप सुन रही हैं सदाबहार नगमे। अगला गाना फिल्म जालसाज से है। मजरू सुल्तानपुरी के बोल एन दत्ता की तर्ज, किशोर कुमार के साथ आशा।

0: तब इस बात को दर्शाने के लिए इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है, एक से
1: जी
0: इक्कीस होना। और वहीं हमारे श्रोता जिन्होंने अभी हमारा पिछला सेगमेंट था ना हल्की फुल्की बातें में बचपन की यादगार जो शरारत,
1: जी
0: उसमें भी हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी शरारतें अभी तक हमें लिख भेज रहे हैं। वो लिखते हैं, पढ़ दो तुम कहो तो,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: वो लिखते हैं कि हमारी बेटी का भी यही हाल था, एक दिन हमने बहुत कुछ बनाया, ननंद आने वाली थी और सबको समझा दिया कि ये सब एकदम सर्व करेंगे तभी पता चलेगा, पर बेटी कहाँ मानने वाली थी, आते ही बता दिया। और एक बार हम दूध रखकर भूल गए और बर्तन भी थोड़ा जल गया, तो हमने बच्चों से कहा कि पापा को आते ही ऐसी बात नहीं बताएंगे, पर क्या उसने आते ही बताया, पापा ऐसा हो गया। और तो और मम्मी को भी ये बताने के लिए उन्होंने मन बना लिया। तो इस तरह की शरारतें हम बचपन में,
1: ये अक्सर ऐसा होता है जब हम बच्चों को कोई बात मना करते हैं ना कि ये बात आपको नहीं कहनी है, तब तो वो जरूर उस बात को कहते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारी शैतानियां तो बहुत है, लेकिन बात है गर्मी की छुट्टियों की, जब हमारे घर के बड़े आराम किया करते थे और हम सब दोस्त पास के एक झरने में नहाने भाग जाते थे, और वहां नहाने के लिए सब अपने कपड़े उतारते, पानी में कूदते, तभी मैं और मेरा दोस्त उनके कपड़े उठा के भाग जाते थे और आधा किलोमीटर उनको दौड़ा दौड़ा के ही कपड़े दिया करते थे।
1: एक छोटा सा एक हमें संदेश भेजा तो वो भी हम पढ़ देते हैं। एक हमारे साथी जो कहते हैं कि जब मैं छोटा सा था, 6-7 साल का रहा होगा, तो उस समय मैं स्कूल बंक करके, स्कूल को अपने पीरियड छोड़ करके मैं अपने नेबर के हाउस में, अपने पड़ोसी के घर में जाकर छुप जाता था, वहां पे मतलब बैठा रहता था, वहां नहीं जाता था, स्कूल नहीं जाता था। तो इस तरीके की शरारतें भी हैं।
0: वाकई बहुत आज मन खुश,
1: और आज वो एंजॉय कर रहे हैं अपना रिटायरमेंट, सोचिए।
0: अच्छा, आज वो अपना मतलब उनका रिटायरमेंट हो गया है और वो बचपन की यादों को भी ताजा कर रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: बहुत खूब। तो चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है आरती, सुन लेते हैं गीत।
1: हाँ,

0: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
1: ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
1: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: वो है कार्यक्रम त्रिवेणी।
1: तुम आ गए हो, नूर आ गया।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आरती, अभी देखिए हमारे एक श्रोता लिखती हैं, हमारी सखी, कि आज विषयों पर बढ़िया जानकारियां मधुर गीतों के साथ बढ़िया प्रस्तुति के साथ सखी सहेली कार्यक्रम आपने पेश किया, इसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद देती हैं।
3: बिल्कुल, और एक हम अपने साथी का छोटा सा भर देते हैं, उन्होंने अपनी शरारत जो लिखी है, लिखती है कि बचपन की शरारती कितनी मासूम होती है। इसका सबसे प्यारा किस्सा हमारी बेटी का है। जब वो स्कूल जाती थी तो कई बार बस वाले भैया से कह देती, हमारी छोटी बहन आज स्कूल नहीं जा रही है, आप चलिए। असल में स्कूल बस हमारे घर से थोड़ी दूर एक मोड़ पर आती, हमारी बड़ी बेटी पहले ही वहां पहुंच जाती और हम छोटी बेटी को पीछे पीछे लेकर आते। उसकी ये छोटी सी शरारत हमें बार बार हंसा देती थी और आज भी जब वो याद आती है तो चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है।
2: बिल्कुल सही कहा आरती, बचपन की जो बातें हैं वो कभी भी हमें हंसा देती हैं और गुदगुदा देती हैं। लेकिन अब वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा कि हम और हंसें और गुदगुदाएं। तो सखी सहेली कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी
3: और आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: सेल्यूलाइट के सितारे इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं जानी मानी अभिनेत्री और निर्देशिका तनिष्ठा चटर्जी से यूनुस खान की बातचीत। आइए सुनते हैं इस बातचीत की पहली कड़ी।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमारे साथ तनिष्ठा चटर्जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका।
2: जी थैंक यू।
1: तनिष्ठा, कैसा लग रहा है विविध भारती में आके, और ऑल इंडिया रेडियो से आपका किस तरह का कनेक्शन है यादों का, ये भी बताइए सबसे पहले तो।
2: अभी तो मैं फिलहाल जो रीसेंट कनेक्शन मेरा बना कुछ घंटों पहले या कुछ एक्चुअली मिनट्स पहले

0: जी
1: उसके बारे में बात करना चाहूंगी कि यूनुस जी, आपने जो यहाँ के लाइब्रेरी का टूर दिया, जहाँ जो एलपीज और सीडीज जो आप स्टोर करते हैं, मतलब वो देख के तो मैं हैरान हो गई हूँ और बहुत प्लेजेंटली सरप्राइज्ड हूँ कि इस खूबसूरत ढंग से इनको आर्काइवल जो चीज़ें हैं आप स्टोर करके रखते हैं। मुझे अगर पहले पता होता तो मेरी एक बेटी है जो 10 साल की है, उसने ज़िंदगी में कभी ये सब चीज़ें देखी नहीं है, तो मैं लेकर आती और मैं दोबारा यहाँ आऊँगी उसको लेकर।
0: कितनी मजेदार बात है कि जब आप देख रही थीं तो बड़ी पुरानी पुरानी फिल्में नजर आईं, जैसे कि आपने चोरी चोरी का रिकॉर्ड देखा
1: हाँ
0: है
1: जी,
0: ना,
1: हाँ
0: फिर
1: जी,
0: 78 RPM का एक रिकॉर्ड देखा, फिल्म थी यास्मीन
1: वाह, यस,
0: 1955।
1: मुझे पता भी नहीं है, वो तो मैंने ब्लाइंड निकाल दिया। और आप मतलब आप एनसाइक्लोपीडिया है, इसलिए आपने मुझे समझाया कि ये यास्मीन है, तो इसका जो ये गाना है हम सुन सकते हैं।
0: बिल्कुल, आज के इस प्रोग्राम में वो गाना भी हम जरूर बजाएंगे, लेकिन
1: बिल्कुल,
0: पहले अभी जरा यादों की तरफ चलते हैं। आप कहाँ पैदा हुई थी और बचपन कहाँ बीता आपका?
1: मैं एक्चुअली पुणे में पैदा हुई थी
0: जी
1: और मैंने कुछ साल पहले एक मराठी फिल्म की, डॉक्टर रखमाबाई, जो इंडिया की फर्स्ट प्रैक्टिसिंग लेडी डॉक्टर हैं,
0: जी
1: उनकी जीवन पर, और मैंने डॉक्टर रखमाबाई का किरदार निभाया। तो लोगों को ऐसा लगा कि मैं शायद, मतलब है मेरा नाम चैटर्जी लेकिन मैं महाराष्ट्रियन ही हूँ,
0: वाह वाह
1: क्योंकि
0: वाह।
1: वो मराठी में फिल्म थी और पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मुझे बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी मिला। लेकिन मेरी पैदाइश पुणे की हुई, उसके बाद हम लोग बाहर चले गए। जब मैं 6-7 महीने की थी,
0: जी जी
1: हम लोग, मेरे पिताजी जो हैं उनको सोनी इलेक्ट्रॉनिक्स में काम मिला, तो हम जापान में थे, कीनिया में थे, इंग्लैंड में थे, ऑस्ट्रेलिया में थे, अलग अलग
0: वाह वाह
1: बाहर
0: वाह,
1: देशों में। उसके बाद हम दिल्ली आए, और तो मैं अपने आप को दिल्ली वाली मानती हूँ, क्योंकि जो मेजर मेरा जो चंक है ना, जो आपका एजुकेशन है, टीनेज ईयर्स है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ये
0: वाह
1: सब
0: वाह,
1: जो है मैंने दिल्ली में किया।
0: तो दिल्ली जो है वहां दिल बसता है आपका। एक मजेदार बात यह है कि ये जो हमारे बनने के दिन होते हैं, जब टीनेज के बाद इंटरेस्ट शुरू होते हैं और जिंदगी की एक थोड़ी सी राह कहीं दिखती है या ख्वाब बनने शुरू होते हैं, जाहिर है आप दिल्ली में थी और ये बहुत मजेदार जमाना था 80s 90s का। मैं जानना चाहता हूं उन सुहाने दिनों की यादें आपसे।
1: तो ऑब्वियसली दिल्ली मेरे लिए बहुत ही मेमोरेबल है, क्योंकि वहाँ से मुझे हर चीज़, जो शिक्षा है वो सिर्फ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नहीं, उससे पहले मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में मैंने हाफिज़ अहमद खान साहब से, शांति हिरानंद जी से तालीम ली। उससे पहले बचपन से मम्मी ने मुझे गंधर्व महाविद्यालय मुझे भेजते थे, हिंदुस्तानी क्लासिकल का जो बेस है वो सीखने के लिए। और म्यूज़िक से जो है इंडियन कल्चर का एक जो वास्ट मतलब समुंदर है, वो जो पोएट्री है उसका पूरा इंट्रोडक्शन मेरे लिए म्यूज़िक के साथ शुरू हुआ। और जब मैं कॉलेज में थी, स्कूल में थी, तो उस समय क्या होता था, स्पिक मके करके एक प्रोग्राम होती थी, जहाँ बड़े बड़े आर्टिस्ट, मतलब
0: बिल्कुल
1: चाहे वो आप अली अकबर खान साहब को ले लीजिए, अमजद अली खान साहब, जाकिर हुसैन, सब आते थे और फ्री
0: बिल्कुल
1: फ्री में वो स्टूडेंट्स को मतलब परफॉर्म करते थे और सिखाते भी थे।
0: वो तो मकसद ही है सोसाइटी ऑफ इंडियन
1: बिल्कुल,
0: क्लासिक
1: कि
0: म्यूजिक, वो युवाओं के
1: एजुकेशन,
0: बीच।
1: हाँ
0: हाँ
1: एजुकेशन जो है, आप उनको कॉनोसियर्स बनाएं, हर कोई जो है वो, ऐसा नहीं है कि वो म्यूजिशियन ही बन जाए,
0: जी
1: लेकिन श्रोता हो और हमारे कल्चर को वो आगे बढ़ाए। तो उसमें मतलब फैंटास्टिक, केलुचरण महापात्रा से लेकर यामिनी कृष्णामूर्ति, डांस भी जो है सोनल मानसिंह, सबको मैंने लाइव परफॉर्मेंसेस भर भर के देखा है।
0: क्या बात
1: वो
0: है,
1: एजुकेशन जो है मैं अपनी बेटी को इस ढंग से नहीं दे पाती हूँ यहाँ पे, और मैं वो बहुत मिस करती हूँ। दिल्ली में उस माहौल में मैं पली बड़ी, जहाँ मंडी हाउस और जो
0: कल्चरल
1: विंटर्स,
0: हब।
1: बिल्कुल विंटर्स में, और बाद में वो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, इंडिया हैबिटेट सेंटर, ये सब,
0: त्रिवेणी
1: त्रिवेणी कला संगम, सब जगह जो है कुछ ना कुछ होल विंटर चलता रहता था। और हमारे बीच में मतलब मम्मी को कभी कभी ये होता था कि, क्योंकि विंटर्स में क्या होता है, मार्च में जाके आपके एग्जाम्स होते थे, हम लोग सब सीबीएसई के पढ़े हैं, और ये नवंबर दिसंबर जैन, लेकिन हमको ये सब कुछ देखना ही है और पढ़ाई की भी तैयारी करनी है, ये
0: बिल्कुल
1: कॉन्फ्लिक्ट चलता था हमेशा।

0: लेकिन हमने अपने आप को कल्चरली जो है, क्योंकि दिल्ली में एम्बसीज भी सारे हैं, तो फिल्मों के रेट्रोस्पेक्टिव्स जब कॉलेज में मैं गई तो वो सब भी शुरू हो गया कि वहाँ आप जितना फ्रेंच न्यू वेव है, इटालियन सिनेमा है, जितना डे सिका से लेकर ब्रेसों, सब एलन दलों की फिल्में, सब मैंने इस रिपोर्ट या फ्रेंच एम्बसी या इटालियन एम्बसी में रेट्रोस्पेक्टिव हो रहा है, रशियन सिनेमा का रेट्रोस्पेक्टिव हो रहा है, पोलिश सिनेमा मतलब आंद्रे वायदा, किशलोवस्की, सब कुछ, मतलब कॉलेज तक ना सब देख लिया मैंने. मैं बम्बई जब आई मुझे ऐसा लगा कि अब आगे मैं क्या
1: क्या बात
0: करूं.
1: है, बिल्कुल सही है। मैं समझ सकता हूँ कि ये जब एक बहुत ही कल्चरल माहौल आपने देखा है,
0: हाँ
1: तो एक दूसरे शहर में जाने का बहुत फर्क पड़ता है। आपने बताया कि बचपन से आपको क्लासिकल म्यूजिक की तरफ जोड़ दिया गया, तो क्या घर पर उस तरह का माहौल था? घर में भी कोई गाता था?
0: नहीं, एक्चुअली मेरे मम्मी और पापा दोनों ही, उन्होंने वेस्ट बंगाल 70s में अलग अलग, मतलब वो मिले थे दिल्ली में, बट इन द 70s वो मूव आउट कर चुके थे वेस्ट बंगाल से. तो मम्मी पढ़ने के लिए गई थी पॉलिटिकल साइंस, वो पढ़ने के लिए दिल्ली गई, और पापा इंजीनियरिंग के बाद नौकरी के लिए चले गए वहाँ. तो मेरे पिताजी वेरी अनलाइक मोस्ट अदर बंगालीज, वो बिल्कुल हार्डकोर कॉरपोरेट गए थे. और इंजीनियर और कॉरपोरेट बस. और क्योंकि मम्मी का डिस्प्लेस्ड था, तो वो इवन दो शी लव्ड कल्चर एंड म्यूजिक एंड आर्ट और ये सब, लेकिन वो खुद कभी ज्यादा कर नहीं पाई थी, तो इसलिए उन्होंने हमको एक्सपोजर दिया. और गाने का ये था कि मैं जब 4-5 साल की थी, तब हम लोग नैरोबी में रहते थे, और किसी के घर, मतलब जहाँ कोई गा रही थी उनके घर पे, वो गाना सुन के मैं गुनगुना रही थी. और उन्होंने मेरी मम्मी को कहा कि रे इसमें तो बहुत धुन है, इसको सिखाओ. तो तब से मम्मी ने सोचा कि चलो इसको गाना सिखाते हैं.
1: क्या बात है, क्या बात है। देखिए, आपको म्यूजिक की तरफ मोड़ दिया गया, ये बहुत ही अच्छी बात है। और अब इस प्रोग्राम को म्यूजिक की तरफ मोड़ा जाए, तो मुझे लगता है कि आज पहला गाना जो है वो कौन सा सुनाएंगी आप, ये गा के ही बताएं।
0: मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता
1: आहा,
0: चला गया. सुनते हैं.
1: क्या बात है। ये हम दोनों फिल्म का गाना, और साहिर लुधियानवी ने इस गाने को लिखा था, और
0: लिखा
1: जयदेव की तर्ज थी। सुनते
0: जी
1: हैं ये
0: जी
1: गाना।

0: बहुत ही मजेदार बातें चल रही हैं। आपने बताया कि पहले तो आपको जो बुनियादी शास्त्रीय संगीत है वो सिखाने के लिए गंधर्व भेजा गया, और उसके बाद आपने अपने गुरु के साथ तालीम ली। वो कैसे दिन थे और कितनी दिलचस्पी बढ़ रही थी म्यूजिक में आपकी?
1: हाँ, म्यूजिक में तो बढ़ ही रही थी। इसके साथ साथ मेरे मतलब हफीज अहमद खान साहब, उन्होंने हिस्ट्री में एमए किया हुआ था, तो वो हमेशा बहुत सारे किस्से भी सुनाते थे।
0: हिस्ट्री में एमए क्लासिकल म्यूजिक सिखाने वाले, वाह
1: या तो वो मतलब क्लासिकल म्यूजिक की हिस्ट्री, इंस्ट्रूमेंट्स की हिस्ट्री, लैंग्वेज का जो कंट्रीब्यूशन है, फिर जो हमारे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में जो मिश्रण होता है लैंग्वेजेस का, कि ब्रज में शुरू होके उर्दू के कपलेट्स थाई में जाती है, ये सब जो चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को लेकर जो चर्चा बातें होती थी, तो बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस था। फिर मैं शांति हिरानंद जी के पास सीखने गई ठुमरी दादरा में स्पेशलाइज करने के लिए, और शांति जी बेगम अख्तर की शागिर्द।

0: लैंग्वेजेस का, कि ब्रज में शुरू होके उर्दू के कपलेट्स थाई में
1: बिल्कुल
0: जाती है, ये सब जो चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को लेकर जो चर्चा बातें होती थी, तो बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस था। फिर मैं शांति हिरानंद जी के पास सीखने गई ठुमरी दादरा में स्पेशलाइज करने के लिए, और शांति जी बेगम अख्तर की शागिर्द रह चुकी
1: बिल्कुल
0: थी। और शांति जी ने एक बार मुझे बहुत कमाल की चीज़ कही, उस समय मैं मतलब स्कूल और कॉलेज में ही थी, तो गाना मैं बहुत अच्छे से गाती थी और वो मुझे समझाने की कोशिश करते थे कि भाव क्या है, और वो उस समय नहीं समझ में आता था
1: मजेदार
0: इतना
1: है ये
0: हाँ बहुत साल बाद मुझे एक बात उनकी समझ में आई कि उन्होंने ये कहा कि क्योंकि तब उनकी उम्र हो चुकी थी, जब गाती थी मैं तो तब पिया नहीं था, क्योंकि ठुमरी दादरा में हर मतलब बंदिश में यही बात होती है कि द एकिंग पेन ऑफ सेपरेशन, कि पिया जो है वो छोड़ के चला गया। तो वो कहते थे कि जब पिया था तो गाना मतलब सीख रहे थे, और अब गाना आता है तो पिया के बारे में मतलब कि उम्र हो चुकी है, तो अब वो पेन रहा नहीं है, तो दोनों साथ में हुआ नहीं कभी। शी यूज टू यू नो से दैट, और
1: ये
0: उस
1: डीप
0: समय
1: बात है बिल्कुल
0: या वी आई नेवर अंडरस्टूड दैट, मच लेटर आई अंडरस्टूड कि भाव जो है वो मतलब कहाँ से आती है, कि आप जिंदगी में कुछ चीजें सहन करते हो, दर्द आता है, तभी आप कुछ क्रिएट कर पाते हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो स्टोरी टेलिंग हो, चाहे वो फिल्म हो, आप का क्रिएशन जो है। कल एक्चुअली मैं कैफी आजमी साहब के एक इवेंट पे गई थी जहाँ उनके सेंटेनरी पे पोस्टल स्टैम्प रिलीज हुआ, और जावेद साहब यही कह रहे थे कि हम ट्रेजिडीज के बारे में बात कर रहे थे, और मैंने कहा सैराट इतनी बड़ी ट्रेजिडी फिल्म है लेकिन फिर भी हिट हुई है, एंड ही सेड कि नहीं, ट्रेजिडीज हमेशा होती है हिट, क्योंकि पेन से लोग रिलेट करते हैं ना, एंड वही चीज़ हम बात करते हैं, जब तक आपको जिंदगी में पेन नहीं मिलेगा आप क्रिएट नहीं कर पाओगे, ये क्रिएशन की ट्रेजेडी है।
1: क्या बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही है। मैं वापस दिल्ली वाले दिनों की तरफ जा रहा हूँ। शांति हीरानंद से जब आप सीख रही थीं तो वो तो हिंदुस्तानी बंदिशें सीख रही होंगी, तो कोई बंदिश याद है?
0: बिल्कुल तो मुझे जैसे मांड सिखाती थी, तो
1: वाह
0: मुझे
1: वाह वाह
0: तो मैं एक सावन की ही कोशिश में
1: जरूर
0: हाँ

0: क्या बात है, मैं तो यही कहूंगा कि सचमुच सावन की बदरिया घिर घिर आए और खूब घिर घिर आए।
1: बिल्कुल, ये हमारी ख्वाहिश है।
0: बिल्कुल, यहां एक गाने की जगह बनाई जाए,
1: हाँ
0: सुनते हैं।

0: संगीत चल रहा था तो अभिनय की तरफ रुझान कैसे हुआ था?
1: एक्चुअली संगीत के वजह से हुआ,
0: जी
1: क्योंकि स्कूल में फिर कॉलेज में जहाँ भी हम लोगों के म्यूजिकल प्लेज होते थे वो मुझे इसलिए कास्ट कर लिया जाता था कि मैं गा सकती हूँ।
0: वाह, और अलग से गाने की परफॉर्मेंसेस नहीं करती थी?
1: नहीं, वो तो कॉलेज में एक्चुअली मैं गाना ही मतलब रॉन्डेवू, IIT के जो फेस्टिवल्स थे, फिर बिट्स पिलानी में, सब में मैं मतलब कॉलेज को रिप्रेजेंट करती थी गाने में। और स्कूल में जब थी तो मैं वेस्टर्न म्यूजिक भी बहुत गाती थी, विटनी ह्यूस्टन। मुझे
0: वाह
1: कहा, मेरे इतने छोटे छोटे ऐसे कर्ली ऐसे बाल थे और सब मुझे कहते थे कि यू नो इंडियन विटनी ह्यूस्टन।
0: क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। तो वेस्टर्न से भी कनेक्शन रहा? और
1: मराया कैरी, विटनी ह्यूस्टन, ये सब गाती थी मैं।
0: वाह वाह वाह। पहली बार अभिनय कब किया था?
1: स्कूल में। स्कूल के जो हाउस कंपटीशन के प्लेज नहीं होते थे, और दुर्गा पूजा
0: ये तो बहुत महत्व।
1: बंगाली जो क्या होता है कि मतलब वो पूरा महीना जो हम लोग रिहर्सल करके फिर दुर्गा पूजा में परफॉर्मेंस, तो मेरा एक्चुअली पहला नाटक जिसमें मैंने मेन रोल मतलब सोलो रोल किया फुल प्ले में, वो दुर्गा पूजा का एक नाटक था, वो बंगाली में था।
0: अरे वाह वाह, तब क्या उम्र रही होगी आपकी?
1: 10 साल।
0: क्या बात है,
1: हाँ।
0: इतना सारा
1: म्यूजिक
0: याद करना।
1: उससे पहले से चल रहा था जिंदगी में, बट दैट वॉज द फर्स्ट टाइम आई मतलब हाँ एक्टिंग का इंट्रोडक्शन हुआ।
0: और कब ये लगा कि इसे करियर चॉइस के रूप में रखा जा सकता है?
1: ये बाय एक्सीडेंट हुआ ऑनेस्टली, क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी।
0: और आप तो केमिस्ट्री पढ़ रही थी?
1: जी। तो ऐसा कभी नहीं सोचा था कि परफॉर्मिंग आर्ट्स को प्रोफेशन बनाऊंगी, क्योंकि क्या होता है इंडियन मिडिल क्लास होम्स में कि आप ये सब हॉबीज रखो, लेकिन प्रोफेशन, क्योंकि मेरे फादर भी इंजीनियर और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थे और माय मदर यूज्ड टू टीच, तो वो उनका यही था कि हाँ मतलब आप कल्चरली एक वेल राउंडेड एजुकेशन आपका होना चाहिए और ये हॉबीज हो सकती है, लेकिन प्रोफेशन तो आपकी साइंस या इंजीनियरिंग यही कुछ होगा। तो ये ना बाय एक्सीडेंट, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं म्यूजिक को या एक्टिंग को प्रोफेशनली करूँ कुछ। लेकिन जब मैं कॉलेज में थी तो एक बहुत बड़ा जर्मन प्रोडक्शन यहाँ पे मतलब आया था इंडिया में, और उन लोगों ने कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जो उनके प्रोडक्शन का पार्ट, और मैं सिलेक्ट हुई थी। और उस समय मतलब बहुत नामी नामी एक्टर्स जो NSD के ग्रेजुएट्स हैं एंड ऑल, वो पार्ट थे उस प्रोडक्शन का।
0: वाह,
1: तो दैट एक्चुअली चेंज्ड माय मतलब दिमाग खराब हो गया।
0: अच्छी खासी लड़की जो एकेडमिक्स में जा रही थी,
1: मतलब साइंस की जो है बैंड बज गई।
0: क्योंकि आप तो केमिस्ट्री पढ़ रही थी।
1: बिल्कुल। और वो उस वर्कशॉप के बाद फिर मैंने बैरी जॉन के साथ और एक वर्कशॉप करा, और कांड हो गया, मतलब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में समर वेकेशंस में और एक वर्कशॉप किया, और उसमें और इतना ज्यादा मजा आया, मतलब ठंड, एक तो मुझे ठंड बिल्कुल पसंद नहीं है।
0: अच्छा।
1: ठंड में किसी कोल्ड यूनिवर्सिटी में US में जाके मैं लैब में बैठ के रिसर्च करूंगी, और ये देखो मतलब स्टेज पे हम गाना गा रहे हैं और एक्टिंग, क्या मजा है।
0: वाह वाह। जब ये बात घर वालों को पता चली तो क्या रिएक्शन थे? टीचर मम्मी जी और कॉर्पोरेट पापा,
1: उनको मतलब हार्ट अटैक आया। और उसका पूरा, लेकिन मैं बिगड़ चुकी थी तब तक।
0: तब तक तो काम पूरा।
1: और द थिंग वाज कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है वो 100% स्कॉलरशिप, तो इसीलिए मेरे पिताजी और मम्मी ये नहीं कह सकते थे कि तुम्हारे एजुकेशन के लिए हम तुमको पैसे नहीं देंगे।
0: पैसे तो वहाँ ऑलरेडी आ रहे थे।
1: तो वो फुल स्कॉलरशिप मुझे मिल रहा है, लेकिन मेरी बहन की जिंदगी बंद हो गई। कहती एक बिगड़ गई है, दूसरे को नहीं बिगड़ने देंगे।
0: तो वो सीधी राह पे चली गई।
1: अरे वो अभी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: वो मतलब

0: शी इज एक्सट्रीमली ब्राइट एंड वो कमाल की है, बट वो भरतनाट्यम सीख रही थी, उसने अरंगेट्रम किया, लीला सैमसन जो बहुत ही नामी और
1: गुरु है।
0: कलाक्षेत्र के हेड भी रह चुके हैं, उस समय वो दिल्ली में थे और उनसे सीख रही थी और बहुत सीरियसली डांसर बनना चाहती थी और लेकिन वो अभी भी कहती है कि अरे तुमने
1: तुम्हारी
0: दीदी
1: वजह से
0: दीदी को करने दिया लेकिन मुझे नहीं।
1: क्या बात है, क्या कितनी सुनहरी यादें हैं लेकिन इन तमाम चीजों की, कि आप जिंदगी में पढ़ते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं और फिर होता कुछ और है।
0: और फिर एनएसडी के बाद मेरे पिताजी हर 2 साल में ये कहते थे कि अच्छा चलो ये हो गया, अभी तुम एमबीए कर लो, ये बहुत इंटरेस्टिंग मिक्सचर है कि केमिस्ट्री के बाद तुमने यू नो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और इन सब में तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। और मैं एक्चुअली जीमैट के लिए पढ़ती भी थी,
1: अच्छा,
0: जैसे मैं सीरियसली कोई एग्जाम देने बैठूंगी ऐसा लगता था कि अभी बैठ जाऊं, एक बहुत अच्छी फिल्म मिल जाती थी। फिर पापा को मैं कहती थी अरे मॉम पापा अभी देखो ये मिल गया है अब ये करते हैं।
1: हाँ,
0: फिर मैं लंदन शिफ्ट हो गई थी बीच में 5 साल के लिए, ब्रिक लेन करके एक फिल्म की मैंने और उसमें मुझे ब्रिटिश इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन मिला, जूडी डेंच एन हाथवे इन सब के साथ मेरा भी सेम प्लेटफॉर्म में नॉमिनेशन था। तो उस समय मैं इंग्लैंड शिफ्ट हो गई कुछ सालों के लिए, वहाँ वेस्ट एंड में एक म्यूजिकल प्ले भी किया था इंग्लैंड करके। तो उस समय मैं गई थी लंदन बिजनेस स्कूल में ये पता करने के लिए कि चलिए अभी एमबीए किया जाए,
1: मजा आ रहा है
0: क्योंकि
1: मुझे
0: पापा,
1: सुन के।
0: हाँ पापा ने ऐसा।
1: हाँ
0: तो मैं वहां जब गई और उनके
1: हाँ
0: काउंसलर से मिली तो मेरा करियर ग्राफ और ये सब देख के और मुझसे बात करने के बाद उन्होंने कहा कि आप मेरे स्टूडेंट्स को आकर एक इंस्पिरेशनल टॉक दे दो। तो मैंने कहा हाँ, मतलब मैं तो यहाँ पढ़ने के लिए। कहते नहीं, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है।
1: आप यहाँ पढ़ो मत।
0: तो मैं लंदन में वेरियस बिजनेस स्कूल्स में इंस्पिरेशनल टॉक दे के अपने पॉकेट मनी कमा रही थी।
1: वाह वाह वाह, वहां भी पढ़ने वाला मामला तो बना ही नहीं।
0: नहीं, और मेरे पास एक वर्क परमिट था, सो आई वाज लाइक मैंने पापा को कहा कि पापा मुझे एमबीए करने की जरूरत नहीं है, वो 20 स्कूल्स तो मुझे बुला रहे कि आप यहाँ आके इंस्पिरेशनल टॉक्स दो।
1: फिर मामला टल गया।
0: फिर हाँ परमानेंटली मामला टल गया।
1: मतलब ये है कि ये माना जा सकता है कि डेस्टिनी आपको दूसरी तरफ खींच रही थी।
0: हाँ ऐसा, दैट इज द थिंग दैट वो आई रियली बिलीव दैट लाइफ इज व्हाट हैपेंस टू यू व्हाइल यू कीप मेकिंग प्लान्स। तो मैंने कोई प्लान नहीं बनाई, अभी तो मैंने एक फिल्म भी बनाई है जो इस वक्त हम लोग फेस्टिवल्स वगैरह में टूर कर रहे हैं, बट
1: उस फिल्म का
0: अगेन
1: नाम है फुल प्लेट।
0: फुल प्लेट। अब उसको लेकर भी मैंने कोई प्लान नहीं बनाई थी, वो भी अचानक ही बन गई। इनफैक्ट जो फिल्म मैं 3 साल से लिख के बैठी हुई हूँ जिसको मुझे बनाना है वो अब तक मुझे उसका फंडिंग नहीं मिला है। और
1: लेकिन ये
0: ये
1: बन गई।
0: मतलब ये अचानक से किसी ने मुझे कहा कि हमारे पास इतने पैसे हैं बना दो, और मैंने कुछ लिखा भी नहीं था उस समय।
1: ओहो, वाह
0: हाँ
1: वाह।
0: तो तब मैंने लिखना शुरू किया और विद इन अ पीरियड ऑफ 3.5 मंथ्स हम लोग फ्लोर पे थे।
1: क्या बात है। तो ये होता है फ्लो ऑफ एनर्जी, कैसे क्या काम
0: हाँ
1: करता है।
0: एक चीज है कि ये शायद मुझे ट्रेनिंग ऑफ एक्टिंग ने दी है, नसीर सर के क्लासेस जो है, नसीरुद्दीन शाह जिनको मैं बहुत बहुत अपना गुरु मानती हूँ एक्टिंग में, मतलब मेरे बहुत गुरुज हैं जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, रॉबिंदा है, बज्जू भाई है, अनामिका अक्सर है, अनुराधा कपूर है। और 3rd ईयर में जाके एक जो कल्मिनेशन होता है ना उसमें टुवर्ड्स दी एंड नसीर सर आए और उन्होंने उन सब चीज़ों को एक बहुत साइंटिफिक वे से स्टूडेंट्स को समझाने की। और एक्टर ना बहुत अच्छे हैं हमारे देश में, लेकिन टीचर जो इतने कमाल के एक्टर हैं और इतने कमाल के टीचर है वो सिर्फ नसीरुद्दीन शाह है।
1: वाह, क्या प्यारी बात
0: तो
1: कही है।
0: मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। और एक वो चीज़ जो कहते हैं ना कि हियर एंड नाउ और डोंट थिंक, जस्ट रिस्पॉन्ड टू द मोमेंट एंड लिसन टू योर को एक्टर एंड रिस्पॉन्ड। उसके प्रैक्टिस करते करते करते करते जिंदगी में भी ये हो जाता है कि आप कुछ भी आगे का प्लान मत करो, जो हो रहा है उसी के फ्लो में आप करते रहो क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते। मैं पंडित रविशंकर से एक बार मिली थी क्योंकि अनुष्का मेरी दोस्त भी है, उनकी एक्स हस्बैंड है जो राइट, उनके साथ मैंने एक फिल्म किया था एना कारेनिना, उसमें अनुष्का ने एक गाना कंपोज किया था जो मैंने गाया था। उसी दौरान मैं पंडित जी से एक बार मिली थी तो उन्होंने कहा था कि जा हो

0: और ताहबे,
1: वाह,
0: ये उन्होंने टैटू में लिख दिया था।
1: क्या बात है, क्या बात है। और वो तो कितनी मीठी बांग्ला बोलता है।
0: जाहवर ताहबे।
1: वाह, कितना सुंदर ये वाक्य है। यहां एक गाने की जगह बनाई जाए। अब जब पंडित रविशंकर का जिक्र है
0: हाँ जी,
1: तो एक सजेशन करता
0: आप
1: हूं।
0: हाँ बिल्कुल वही सजेशन जो आप मुझसे कह रहे थे,
1: हाँ,
0: अलाउद्दीन
1: कि
0: खान साहब का,
1: वो बजा सकते हैं माता
0: या
1: सरस्वती शारदा, जिसका
0: बिल्कुल
1: कनेक्शन उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब से
0: सब,
1: है, और वहां से वो रचना उनके शिष्यों से होते हुए जयदेव जी के पास जाती है
0: बिल्कुल
1: और फिर वो फिल्म आलाप में आती है।
0: बिल्कुल
1: ये सुनते हैं, ये
0: हाँ
1: समर्पित है उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब
0: सब,
1: को, मैहर घराने के संस्थापक,
0: या
1: और पंडित रविशंकर जी
0: शंकर
1: को।
0: जी को। हाँ
1: सुनते हैं माता सरस्वती शारदा।

0: एक बार फिर वापस एनएसडी की तरफ चलते हैं। आपका एनएसडी में एडमिशन हो गया है और आप अपने ड्रीम को परस्यू करने निकली हैं। पीछे की तरफ केमिस्ट्री है।
1: हाँ, तब तक भी ड्रीम नहीं, मतलब तब तक मैंने फिर भी तो, मतलब जब एनएसडी में भी मैं गई तब भी मुझे ये पता नहीं था कि मुझे एक्टिंग करनी है या डिजाइनिंग करनी है या
0: डायरेक्शन करना है।
1: हाँ, डिजाइन और डायरेक्शन। और एक्चुअली फर्स्ट ईयर के बाद मैंने सोचा था मैं डिजाइन और डायरेक्शन ही करूंगी, क्योंकि आई वॉज सो इंस्पायर्ड बाई द सिनेमा दैट आई वॉज वॉचिंग। और मतलब चाहे वो इंडियन सिनेमा हो कि संत तुकाराम हो या राजा हरिश्चंद्र, जो हमारे पुराने जैसे इंडिया में सिनेमा की जो बिगिनिंग थी, या फिर वो फ्रेंच न्यू वेव हो, पोलिश सिनेमा हो, ये सब देख के दिमाग एकदम
0: हिल गया।
1: हाँ, सत्यजीत रे और मृणाल सेन और मतलब और इंडियन कमर्शियल फिल्म्स भी। और हमारी जो टीचर हुआ करती थी, जो फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स करवा रही थी हमें, गायत्री चैटर्जी, वो FTII में भी

0: आती थी, वो इतने अच्छे से मतलब समझाती थी और एनालिसिस मतलब करती थी. सो आई वॉज सो मच इन लव विथ. और हमको इंटरनेशनल प्रोडक्शंस देखने को मिलते थे थिएटर में. फिलिप जॉते, मतलब उनका प्रोडक्शन देख के मेरा दिमाग हिल गया था.
1: बिल्कुल.
0: पीना बाउश, ये सब जो थिएटर प्रोडक्शंस हैं. और हमारे एनएसडी में एक रशियन डायरेक्टर आए थे, एक पोलिश डायरेक्टर आए थे हमारे साथ काम करने के लिए. तो जो इंट्रोडक्शन हमें वर्ल्ड थिएटर से भी मिला और इंडियन क्लासिकल फॉर्म से, डांसेस से, कथकली, ये सब देखने के बाद मुझे लगा कि यार डिज़ाइन डायरेक्शन में बहुत इंस्पायर हो गई थी. लेकिन फर्स्ट ईयर के बाद जब हमें चूज़ करना होता है तो हमें बच्चू भाई और सब मेरे जो जितने टीचर्स थे उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, तुम एक्टिंग करो.
1: क्या बात
0: डिज़ाइन
1: है.
0: डायरेक्शन कभी भी कर सकते हो बाद में, अगर तुम्हें मन किया तो कर लोगे, पर अभी एक्टिंग लो. तो मैंने अपने गुरु जो है सब उनकी बात मानी
1: और
0: और
1: एक्टिंग की तरफ आगे
0: एक्टिंग
1: बढ़ती
0: के
1: गई.
0: लिए.
1: एनएसडी के आपके बैच में कौन कौन लोग थे, आपके बैचमेट्स?
0: बहुत लोग थे और वो लोग सब मतलब थिएटर कर रहे हैं अपने रीजन्स में. अभी मैं फुल प्लेट लेकर केरला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गई थी
1: जी.
0: और वहाँ बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स था. और मेरे दो बैचमेट्स जो थे उन्होंने मुझे बताया नहीं, और वो ऑडियंस में बैठे हुए थे.
1: वाह वाह.
0: और बहुत साल बाद उनसे मुलाकात हुई और स्क्रीनिंग के बाद वो आए और मैंने कहा ओ माय गॉड, एंड दे फेल्ट सो गुड कि मैंने एक फिल्म बना दी.
1: बिल्कुल.
0: और एक्चुअली ये फिल्म बनाना बहुत मुश्किल भी रहा है फॉर एवरी विच वे, क्योंकि जब मैं इनिशियली मतलब इंडिपेंडेंट फिल्म बनाना तो हमेशा ही मुश्किल होता है. शूटिंग के दौरान भी दिक्कतें आईं, फाइनेंशियल दिक्कतें आईं. जब बड़े मुश्किल से हम लोगों ने फाइनली फिनिशिंग फंड्स लेकर, एक और को प्रोड्यूसर लेकर हम फिनिश करने वाले थे, एडिट ख़त्म हुआ, देन आई गॉट डायग्नोस्ड ऑफ अ टर्मिनल इलनेस. और उसके दौरान मैंने पिक्चर ख़त्म की, पोस्ट प्रोडक्शन किया उसका. सो इट वॉज़ अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, बट देन लाइक आई सेड कि आई थिंक नो पेन नो गेन.
1: और इन तमाम मुश्किलों को, उतार चढ़ावों को सहत कर और उनसे पार होते हुए ये फिल्म पूरी हुई. क्या ये आपका पहला डायरेक्शन था?
0: नहीं, मैंने रोम रोम में करके एक फिल्म बनाई थी
1: इससे पहले बना चुकी
0: इससे
1: थी
0: पहले.
1: आप? जी.
0: हाँ, और
1: नवाज थे उसमें?
0: नवाज नवाज था उसमें, और नवाज और मैं एक फिल्म शूट कर रहे थे लायन करके, एक बहुत अच्छे ऑस्ट्रेलियन डायरेक्टर हैं गार्थ डेविस, एंड लायन ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म है. तो हम दोनों कलकत्ते में साथ में शूट कर रहे थे एज को एक्टर्स. तो फ्री टाइम पे बात हो रही थी, मैंने कहानी ऐसे उसको सुनाई कि यार ऐसा कुछ हुआ था मेरे साथ वेनिस में. उसको बहुत इंट्रीगिंग लगी, उसने कहा यार तनिष्ठा ये इसको लिखो यार, बहुत कमाल की कहानी है. तो मैंने लिखना शुरू किया और फिर हम लोग मिलते रहे. नवाज और मैंने एज को एक्टर्स पहले भी काम किया है और वो मेरे सीनियर भी हैं नेशनल स्कूल ऑफ
1: एनएसडी में.
0: ड्रामा से. हाँ, तो हम मिलते रहे और मैं लिखती गई और फिर उसको मतलब ही रियली लाइक्ड इट.
1: क्या हुआ था आपके साथ
0: फिर
1: रोम में?
0: मतलब
1: वेनिस
0: सुपरनैचुरल
1: में
0: स्टोरी थी.
1: सुपरनैचुरल.
0: हाँ, मतलब वो एक्सपीरियंस. खैर, देन मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि उसको मैं बनाऊंगी.
1: राइट.
0: मैंने सोचा था हम लिखते हैं, हम दोनों एक्टिंग करेंगे और किसी को देते हैं मतलब. बट ये नवाज ने मुझे कहा कि यार तूने जैसे लिखा है ना, ये तेरे दिमाग से आया है, ये कोई नहीं और नहीं बना सकता. मैंने कहा बट मैंने कभी फिल्म बनाई नहीं है. सो उसी ने मुझ में ये कीड़ा
1: डाल दिया.
0: इंसर्ट किया.
1: पहले एक्टिंग का कीड़ा ऑलरेडी था, उसके बाद ये एक और आ गया.
0: फिर बनाई ये पिक्चर हम लोगों ने.
1: शुरुआती दिक्कतें क्या थीं?
0: कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि इरोस तब बहुत बड़ा स्टूडियो था, वो ऑन बोर्ड आ गया था. दिक्कत बाद में हुई क्योंकि उसके बाद जब हमने फिल्म बना ली, फिल्म बनाने के बाद अगेन बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उसका वर्ल्ड प्रीमियर हुआ. लेकिन उसके बाद इरोस वेंट थ्रू वेरी डिफिकल्ट टाइम्स. तो उनका दे हैड अ लॉट ऑफ फेथ इन द फिल्म, बट दे वर मतलब सबसे बड़ा स्टूडियो आप सोचो, फिर दे वेंट थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट टाइम. उसके बाद पैंडेमिक आ गई तो सब कुछ बंद हो गया. सो लोगों की वो स्ट्रगल होती है कि फिल्म बनाने में, ये बनने में इतनी मुश्किल नहीं हुई, बट आई कुडन्ट डू एनी थिंग विद द फिल्म लेटर. मतलब दो तीन फेस्टिवल्स में गई, उसके बाद रिलीज नहीं कर पाए हम,
1: अभी
0: पता नहीं. उसके बाद मैंने एक

0: शॉर्ट फिल्म जो है एक एंथोलॉजी सीरीज अमेजोन के लिए है, अनपॉज्ड करके उसका एक सेगमेंट रैट अटैट वो डायरेक्ट किया मैंने, और फुल प्लेट मेरी सेकंड फीचर फिल्म है जिसको हमने बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अगेन वर्ल्ड प्रीमियर किया, वहाँ मुझे विजनरी डायरेक्टर अवार्ड मिला,
1: वाह
0: फिर
1: वाह,
0: फ्रांस में वसूल में हमें पीपल्स चॉइस अवार्ड और क्रिटिक्स स्पेशल मेंशन मिला, केरला मैंने बताया केरला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल धर्मशाला इसमें हमने स्क्रीनिंग की, अभी शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जा रही है, और सेंट जॉन्स मिनियापोलिस में हमने यूएस प्रीमियर की उस फिल्म की।
1: इतना सारा नाम आपकी फिल्म कमा रही है, कैसा लगता है?
0: बहुत ही बढ़िया, क्योंकि बहुत ही मुश्किल थी ये फिल्म बनाना।
1: इसका आइडिया कहाँ से आया था? वो तो एक वेनिस की सुपरनैचुरल कहानी है, आपने बताया,
0: हाँ
1: बस इतना ही एक क्लू छोड़ा आपने। इसका मामला क्या था?
0: ये एक लूजली एक रियल पर्सन पे ही है, जो मतलब मैं क्लियरली उतना नहीं बता पाऊंगी क्योंकि उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम हो जाएगी पर मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया इनको, और लेकिन मैंने कुछ लिखा नहीं था, मेरे दिमाग में था कि यार ये बहुत कमाल है और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें इस कहानी में, पर जब मुझे मेरे जो फर्स्ट प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के, उन्होंने मुझे ये ऑफ़र दिया अचानक कि छोटी बजट की कुछ भी किसी को भी लेना है ले लो, जो भी बनाना है बना लो, तब मैंने लिखना शुरू किया। मुझे लगा कि यार ये तो कभी हो नहीं सकता आज के तारीख में, क्योंकि आज आप किसी भी स्टूडियो के पास जाओगे तो उनके मैंडेट्स हैं कि वो किस तरह की फिल्में देखना चाहते हैं, आपको वो लिखना पड़ता है।
1: यहां तो पूरी आजादी है।
0: और कल हम लोग एक्चुअली इस इवेंट में भी यही बातें कर रहे थे कि पहले ना कमर्शियल सिनेमा भी जब बनती थी वो उस समय सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स है या सोसाइटी जिस चीज़ों से गुजर रही है, राइटर्स उनका रिफ्लेक्शन ऑडियंस तक लेकर आते थे, मार्केट प्रेशर की मार्केट ये चाह रही है इसलिए हम ये लिख रहे हैं, ये नहीं होता था। पर अब वो नहीं है क्योंकि स्टूडियो सिस्टम जो अमेरिका में बहुत सालों से है वो यहाँ फुल्ली आ गया है।
1: और कुछ अलग ही रूप में आया है।
0: हाँ वो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, तो वो एल्गोरिथम से हमें बताया जाता है कि यार जो है ना मतलब लोग ये चाह रहे हैं तो ये लिखो ये बनाओ, आजकल हम ये चाह रहे हैं, आजकल थ्रिलर्स चल रहा है, आजकल रोम कॉम्स चल रहे हैं, आजकल यू नो यूथ पे ऐसे फिल्में चल रही है, आज ये सोशल ड्रामा नहीं चलेगा या म्यूजिकल्स नहीं वर्कआउट हो रहा है, ये सब एल्गोरिथम्स बता रही हैं आपको, और उस हिसाब से आप तो जो फ्रीडम होती है आर्टिस्ट के एक्सप्रेशन की, वो कहीं पे यही बात हो रही थी, हम अपने आर्टिस्टिक इंटीग्रिटी कैसे इसमें बरकरार रखें, क्योंकि अगर हम आर्टिस्टिक इंटीग्रिटी बरकरार रखना चाहते हैं तो हमें एक पैसा भी नहीं मिलेगा
1: बिल्कुल,
0: बिकॉज इट इज सो डिफिकल्ट। और मुझे लगता है कि इन फिल्मों के लिए ऑडियंस है, बहुत है, क्योंकि हमारे देश के जो डाइवर्सिटी है उसमें इन फिल्मों के लिए बहुत बड़ा ऑडियंस है, लेकिन जो गेट कीपर्स हैं जो हमें मदद करते हैं उन तक पहुंचने में, वो पहुंचने नहीं देते हैं।
1: बिल्कुल सही है। यहां एक गाना सुनते हैं।
0: बिल्कुल।
1: गाना कौन सा होगा?
0: बिछड़े अभी तो हम बस कल परसों, जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों।

0: को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। यह राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 19 लाख से अधिक परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है। उन्होंने कहा कि ये योजना लोगों को सशक्त बना रही है। ये योजना भारत के स्वच्छ और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर करने में गति प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि 25,000 से अधिक केंद्रीय सरकारी भवन और 81,000 से अधिक राज्य सरकारी भवन छत पर लगे सौर पैनल से संचालित हो रहे हैं। सरकार परीक्षण अवसंरचना को बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का उपयोग शुरू करेगी। उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव निधि खरे ने नई दिल्ली में कहा कि ऐसी अवसंरचना से नमूनों के परीक्षण की लागत कम होगी, इससे सटीकता और पता लगाने की क्षमता में वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्व राज्यपाल डीवाई पाटिल के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री पाटिल समाज सेवा में विशेष रूप से परोपकार और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहे। श्री मोदी ने कहा कि पूर्व राज्यपाल ने हमेशा दूसरों विशेषकर गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम किया है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 210 अंक कम होकर 78,429 पर बंद हुआ। निफ्टी 159 अंक गिरकर 24,615 दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कई हिस्सों में आज हल्की वर्षा हो रही है। ओडिशा ने अगले दो दिन के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने थाईलैंड के वोर्रापोल थोंगसानगा और चालोएम्पोन चारोएन कीर्तामोर्न को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। शाम के 5:05 हो रहे हैं। कार्यक्रम विवरण में लीजिए सुनिए आज हमारे केंद्र से प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

आपसे थोड़ी देर बाद यानी शाम 5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। शाम 5:30 युवा साथी कार्यक्रम सुनेंगे युवाणी, और इस कार्यक्रम में हमारे युवा साथी आज सुनेंगे हमारी बात के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रवाद के अग्रदूत फिरोज शाह मेहता के बारे में, क्योंकि आज उनका बर्थ एनिवर्सरी है। और बात होगी डिजिटल युग में युवाओं की जिम्मेदारियां विषय पर। फिल्मी गाने भी सुनवाए जाएंगे। संध्या 6:00 हम आपको सुनवाएंगे एक भोजपुरी लोकगीत, और 6:05 पर पटना केंद्र से हम रिले करेंगे भोजपुरी समाचार बुलेटिन।

संध्या 6:10 पर प्रायोजित कार्यक्रम होगा किसान वाणी। संध्या 6:40 से आप सुनेंगे भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांझ गीत, और शाम 7:15 पर हमारा सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम होगा गुड इवनिंग रोहतास।

शाम 7:30 बजे प्रादेशिक समाचार और उसके बाद जिले के हलचल हम रिले करेंगे अपने आकाशवाणी के पटना केंद्र से। ईमेल आधारित हमारा फरमाइशी कार्यक्रम होगा ई मन पसंद शाम 7:50 से। रात्रि 8 बजे से आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से रिले संसद समीक्षा और 8:15 से आप पुनः सुनेंगे हमारा ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मन पसंद।

रात्रि पर 9 बजे समाचार संध्या हम रिले करेंगे दिल्ली केंद्र से। रात्रि 9 बजे से आप सुनेंगे हमारे केंद्र से लोकधारा कार्यक्रम में भोजपुरी लोकगीत। रात्रि 9:15 पर गजलों का हमारा कार्यक्रम होगा महफिल।

आज के फनकार विविध भारती का ये कार्यक्रम हम रिले करेंगे अपने केंद्र से रात्रि 9:30 पर। रात्रि 10 से आप सुनेंगे रसरंग कार्यक्रम में हिंदी एल्बम सॉन्ग्स और रात्रि 10:30 कार्यक्रम होगा चित्रपट तराने। रात्रि 10:05 पर 55 पर हम आपको जानकारी देंगे कल के कार्यक्रमों के बारे में। रात्रि 11 हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार हम रिले करेंगे दिल्ली केंद्र से। और रात्रि 11:10 पर हमारी आज की सभा समाप्त होगी। तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण, यह आकाशवाणी से आसाराम है। शाम के 5:10 हो रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन।

भरत कुमार के स्वर में आप सुन रहे थे यह हनुमान भजन। आकाशवाणी सासाराम से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। अब लीजिए सुनिए सुमंगल अरोड़ा के स्वर में ये शिव भजन।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

मोहन शर्मा के स्वर में आप सुन रहे थे ये राम भजन, और इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:30 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युवा वाणी।

योगवाणी कार्यक्रम में हम अपने सभी युवा साथियों का स्वागत करते हैं। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त लाल बहादुर। नमस्ते दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रवाद के अग्रदूत फिरोज शाह मेहता का। आज उनका बर्थ एनिवर्सरी हम मना रहे हैं और डिजिटल युग में युवाओं की जिम्मेदारियां, इस विषय पर भी हम बात करेंगे, फिल्मी गाने भी सुनवाएंगे। चलिए दोस्तों, कार्यक्रम शुरू करते हैं और बात करते हैं भारतीय राष्ट्रवाद के अग्रदूत फिरोज शाह मेहता। दोस्तों, फिरोज शाह मेहता आधुनिक भारत के निर्माताओं और प्रारंभिक राष्ट्रवादी आंदोलनों के सबसे प्रमुख स्तंभों में से एक थे। उन्हें बंबई का शेर, लाइन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है। उन्होंने 19वीं सदी के उत्तरार्ध और 20वीं सदी की शुरुआत में भारत के राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक सुधारों में युगांतरकारी योगदान दिया। एक प्रखर वकील, कुशल राजनीतिज्ञ और दूरदर्शी शिक्षाविद के रूप में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लेकर देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने तक हर क्षेत्र में अपनी अमिट छाप छोड़ी। दोस्तों, फिरोज शाह मेहता का जन्म 4 अगस्त 1845 को बंबई, जो कि अब मुंबई है, के एक प्रसिद्ध पारसी परिवार में हुआ था। उन्होंने बंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की और फिर कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए। 1868 में वे बैरिस्टर बनकर भारत लौटे। इंग्लैंड में प्रवास के दौरान वे दादा भाई नेहरूजी के संपर्क में आए, जिससे उनके भीतर राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई। भारत लौटकर अपनी कानूनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। वे केवल एक वकील नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपने कानूनी ज्ञान का उपयोग हमेशा औपनिवेशिक सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ और आम जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए किया। दोस्तों, बंबई के स्थानीय स्वशासन को आकार देने में मेहता का योगदान अतुलनीय है। उन्होंने 1872 में बंबई नगर निगम अधिनियम को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे बंबई के स्थानीय स्वशासन का चार्टर माना जाता है। वे स्वयं 4 बार बंबई नगर निगम के अध्यक्ष

महापौर चुने गए। उन्होंने शहर के प्रशासनिक तंत्र को नौकरशाही के नियंत्रण से मुक्त कराकर उसमें जनता की भागीदारी सुनिश्चित की। उनकी इस दूरदर्शिता के कारण उन्हें आधुनिक बंबई नगर निगम का जनक भी कहा जाता है। दोस्तों, फिरोज शाह मेहता 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने वाले प्रमुख नेताओं में से एक थे। वे कांग्रेस के उदारवादी नरमदल धड़े के मजबूत नेता थे, जो संवैधानिक साधनों, याचिकाओं और संवाद के माध्यम से प्रशासनिक सुधारों में विश्वास रखते थे। 1890 में उन्हें कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस के छठे अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया। अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने दृढ़ता से कहा था कि भले ही कांग्रेस का गठन कुछ पढ़े लिखे लोगों ने किया है, लेकिन यह पूरे देश की आवाज का प्रतिनिधित्व करती है। वे मानते थे कि भारत के विकास के लिए पश्चिमी शिक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों को अपनाना आवश्यक है। मेहता बंबई विधान परिषद और बाद में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य रहे। परिषद में उन्होंने अपनी वाक्पटुता और तार्किक दृष्टिकोण से ब्रिटिश सरकार के जनविरोधी कानूनों, विशेष रूप से किसानों पर भारी कर लगाने और प्रेस की स्वतंत्रता को दबाने वाले प्रस्तावों का कड़ा विरोध किया। राष्ट्रीय विचारों को जनता तक पहुंचाने और ब्रिटिश नीतियों की निष्पक्ष आलोचना के लिए उन्हें 1913 में द बॉम्बे क्रॉनिकल नामक अंग्रेजी समाचार पत्र की शुरुआत की, जो राष्ट्रीय आंदोलन का एक प्रमुख पत्र बना। तो दोस्तों, इस तरह सर फिरोज शाह मेहता का संपूर्ण जीवन देश सेवा और लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण के लिए समर्पित था। 5 नवंबर 1915 को उनका निधन हो गया। वे एक ऐसे राष्ट्रभक्त थे जिन्होंने भारत में संसदीय लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों की नींव को मजबूत किया। उनकी निडरता, प्रशासनिक सूझबूझ और देश प्रेम के कारण उनका नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में हमेशा सुनहरे अक्षरों में अंकित रहेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी बात भारतीय राष्ट्रवाद के अग्रदूत फिरोज शाह मेहता के बारे में। कार्यक्रम में अब हम सुनवा रहे हैं एक देशभक्ति गीत, और उसके बाद हम बात करेंगे डिजिटल युग में युवाओं की जिम्मेदारियां विषय पर। तो आइए सुनते हैं पहले ये खूबसूरत देशभक्ति गीत।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे जावेद अख्तर का लिखा ये खूबसूरत देशभक्ति गीत, और इसे गाया था उदित नारायण, लता मंगेशकर और साथियों ने। फिल्म थी वीर जारा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे डिजिटल युग में युवाओं की जिम्मेदारियां विषय पर, लेकिन पहले कार्यक्रम में एक छोटा सा अंतराल। बने रहिएगा हमारे साथ।
1: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली
2: सुपर फास्ट एक्सप्रेस के मोबाइल चार्ज करना,
3: दिमाग चार्ज कर अपना।
4: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
3: देखा
2: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
4: अब क्या करोगे?
2: फ्री वाईफाई है ना।
3: बुद्धू सुधर जा।
4: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
4: RBI कहता है
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: दोस्तों, इस अंतराल के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है और आज इस कार्यक्रम के साथ आपके साथ मैं हूं, आपका रेडियो दोस्त लाल बहादुर। चलिए बात करते हैं डिजिटल युग में युवाओं की जिम्मेदारियां विषय पर। दोस्तों, आज का युग डिजिटल युग है, जहां तकनीक और इंटरनेट हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने दुनिया को एक वैश्विक गांव में बदल दिया है। इस डिजिटल क्रांति का सबसे बड़ा प्रभाव हमारे देश में युवाओं पर पड़ा है। युवा किसी भी राष्ट्र के रीढ़ होते हैं और डिजिटल दुनिया की इस असीमित शक्ति के साथ उनकी जिम्मेदारियां भी पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। डिजिटल युग में युवाओं की सबसे पहली महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सकारात्मक नागरिकता का प्रदर्शन करना है। सोशल मीडिया के इस दौर में सूचनाएं बहुत तेजी से फैलती है, जिनमें से कई भ्रामक या झूठी होती है। युवाओं का यह कर्तव्य है कि वे बिना जांच परख के किसी भी खबर, वीडियो या संदेश को साझा न करें। उन्हें समाज में नफरत या अफवाह फैलाने वाले तत्वों से दूर रहना चाहिए और डिजिटल मंचों का उपयोग ज्ञान, भाईचारे और सकारात्मक विचारों को बढ़ावा देने के लिए करना चाहिए। दूसरी बड़ी जिम्मेदारी साइबर सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता से जुड़ी है। इंटरनेट पर साइबर अपराध, डेटा चोरी और ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। युवाओं को न केवल खुद को इन खतरों से सुरक्षित रखना है, बल्कि अपने परिवार और समाज के कम तकनीकी साक्षर लोगों जैसे बुजुर्गों और बच्चों को भी जागरूक करना है। उन्हें मजबूत पासवर्ड रखने, वित्तीय जानकारी सुरक्षित रखने और किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करने जैसे बुनियादी सावधानियों के प्रति लोगों को सचेत करना चाहिए। इसके अतिरिक्त युवाओं को अपने मानसिक और शारीरिक

के स्वास्थ्य के प्रति भी जिम्मेदार होना पड़ेगा। स्क्रीन टाइम का अत्यधिक बढ़ना, सोशल मीडिया की लत और रील शॉर्ट्स की आभासी दुनिया में खोए रहना युवाओं के विकास में बाधक बन रहा है। युवाओं को डिजिटल तकनीक का उपयोग एक गुलाम की तरह नहीं बल्कि एक मालिक की तरह करना चाहिए। उन्हें आभासी दुनिया और वास्तविक दुनिया के बीच संतुलन बनाना सीखना होगा। डिजिटल युग युवाओं को कौशल विकास और करियर के अभूतपूर्व अवसर देता है। आज कोडिंग, डेटा एनालिसिस, डिजिटल मार्केटिंग और कंटेंट क्रिएशन जैसे क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। युवाओं की यह जिम्मेदारी है कि वे इंटरनेट का उपयोग केवल मनोरंजन के लिए न करें, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने और देश के आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए करें। वे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए सामाजिक बुराइयों जैसे पर्यावरण प्रदूषण, शिक्षा का अभाव और गरीबी के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं और रचनात्मक बदलाव ला सकते हैं। इस तरह डिजिटल युग एक दोधारी तलवार की तरह है। यदि इसका सही उपयोग किया जाए तो यह प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है और यदि दुरुपयोग हो तो यह विनाश की ओर ले जाता है। आज के युवाओं को इस तकनीक का विवेकपूर्ण, नैतिक और रचनात्मक उपयोग करना होगा। जब युवा अपनी इन जिम्मेदारियों को समझेंगे और निभाएंगे तभी हमारा देश डिजिटल रूप से सशक्त और सुरक्षित बनेगा। तो श्रोताओं, ये थी हमारी बात डिजिटल युग में युवाओं की जिम्मेदारियां विषय पर। अब हम आपको सुना रहे हैं एक और गाना।

कमाल खान और यूलिया वंतूर की आवाज़ों में आप सुन रहे थे राधे फिल्म का ये गीत। दोस्तों, कर्क में अब हम सुन रहे हैं एक एल्बम सॉन्ग्स। एल्बम का नाम है जी लेने दे और आवाज़ है अतीफ असलम की।

दोस्तों, इसके साथ ही आज का युवाणी कार्यक्रम अब समाप्त होता है। दीजिए अपने रेडियो दोस्त लाल बहादुर को नमस्कार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार।

युवा साथी अभी अपना कार्यक्रम सुन रहे थे युववाणी। हम आकाशवाणी सासाराम से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजे हैं। लीजिए सुनिए भोजपुरी लोकगीत। इसके अंतर्गत हम सुनवा रहे हैं रीना सिन्हा के स्वर में ये कजरी।

रीना सिन्हा के स्वर में आप सुन रहे थे ये कजरी, ये आकाशवाणी सासाराम है। अब हम थोड़ी देर में पटना केंद्र से रिले करेंगे भोजपुरी समाचार बुलेटिन, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

प्रणाम। ई आकाशवाणी पटना। अब रहुआ सूर्य प्रकाश उपाध्याय ले भोजपुरी में समाचार सुनी। संसद के दोनों सदन के कार्यवाही विपक्ष के हंगामा के चलते आज भी बाधित रहल। लोकसभा में विपक्षी सदस्य लैकन के विरोध प्रदर्शन के दौरान भइल कथित पुलिस कार्रवाई के मुद्दा उठावत गृह मंत्री अमित शाह के बयान के मांग करत रहलन। लोकसभा अध्यक्ष विपक्षी सदस्यन से सदन चले देवे के विनती कैले, लेकिन विपक्षी सदस्य लगातार हंगामा करत रहलन। यही हंगामा के बीच कई गो विधायक काम निपटावल गई। एकरा बाद अध्यक्ष सदन की कार्यवाही काल तक खातिर स्थगित कर दिहलन। राज्यसभा में भी यही मुद्दा पर विपक्षी सदस्यों के हंगामा के बीच कार्यवाही काल तक खातिर स्थगित करे के पड़ल। जदयू अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार आज नई दिल्ली में संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कैलन। इस दौरान पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा और मंत्री राजीव रंजन सिंह भी मौजूद रहलन। आकाशवाणी पटना से प्रसारित होखे वाला भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण समय में बदलाव कल गई बा। 7 अगस्त से इस समाचार बुलेटिन सांझ के 6:05 के जगह सांझ के 5:30 से सुनल जा सकी। भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण आकाशवाणी पटना के साथ ही 101.6 MHz पर FM रेनबो चैनल पर भी सुनल जा सकी। रेलवे भर्ती बोर्ड के लेवल 1 भर्ती परीक्षा 3 से 6 अगस्त तक अलग अलग चरणन में आयोजित कल जा रहा बा। परीक्षार्थी लोगन के आसानी खातिर पूर्व मध्य रेल 2 जोड़ी परीक्षा स्पेशल ट्रेनन के परिचालन शुरू कर दिहले बा। इन्हन में 1 जोड़ी स्पेशल ट्रेन जयनगर और लखनऊ के बीच, जबकि दूसर का जोड़ी ट्रेन राजगीर और वाराणसी के बीच चलावल जा रहा बा। विशेष ट्रेन सब परीक्षा के अवधि के दौरान मुख्य स्टेशन पर ठहराव के साथ चली। रेलवे परीक्षार्थी लोगन से नहन परीक्षा स्पेशल ट्रेनन के ढेर से ढेर फायदा उठावे के अपील कैले बा। देश के प्राचीनतम शक्तिपीठ में शामिल कैमूर जिला के ऐतिहासिक और प्राचीन मां मुंडेश्वरी मंदिर के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल कैल गई। राज्य सरकार के गठित उच्च स्तरीय समिति के टीम मंगर के मां मुंडेश्वरी धाम में पहुंच के मंदिर के वैज्ञानिक जीर्णोद्धार और आसपास के क्षेत्र में इको टूरिज्म के समग्र विकास खातिर मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में निरीक्षण कैलस। ये निरीक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के दिशा निर्देशन और वैज्ञानिक मानकन के अनुसार मंदिर के संरक्षण और समग्र विकास के दिशा में एगो महत्वपूर्ण पहल बा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पटना के नासरीगंज घाट के पानापुर घाट तक स्टीमर सेवा के उद्घाटन कैलन। इस सेवा शुरू होकला से दियारा इलाका के लोगन की आय जाय में आसानी हुई। इस मौका पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव समेत कई गो गणमान्य लोग भी मौजूद रहलन। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बाकीपुर उपचुनाव के परिणाम के चौंकावे वाला बतौले बाड़न। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत कहलन कि यह परिणाम के समीक्षा करे की जरूरत बा। राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव कहले बाड़न कि बाकीपुर विधानसभा उपचुनाव में पार्टी के मिलल हार के समीक्षा कैल जाय। आज पटना में पत्रकारों से बातचीत में श्री यादव कहलन कि वहां के जनादेश के स्वीकार करत बाड़न। प्रदेश के अलग अलग भागन में आज चेहलुम पूरा अकीकत के साथ मनावल जा रहा बा। इमाम हुसैन के शहादत के याद में ये दिन मनावल जाला। ये मौका पर कई एक जगहन पर ताजिया सी पर अलम आ मातमी जुलूस निकालल जा रहा बा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हजरत इमाम हुसैन आ करबला के शहीदन के श्रद्धांजलि दिलन। अपन संदेश में मुख्यमंत्री कहलन कि उनकर कुर्बानी अमर बा आ इस समाज के हर दौर में रास्ता दिखावला। प्रदेश में मानसून की सक्रियता से लगातार बारिश हो रहा बा। मौसम विभाग से मिलल जानकारी के मुताबिक पिछला 24 घंटा के दौरान अररिया में सबसे ज्यादा 160

0: मिलीमीटर बारिश भेल। वहीं किशनगंज के चरघरिया में 124.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज कर गेल। मौसम विभाग अपन पूर्वानुमान में कहले बा कि आज अररिया, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, मधेपुरा, खगड़िया, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण आ शिवहर जिला में कुछ एक जगहन पर भारी बारिश हो सकत बा। राज्य के दोसर जिलन में भी बारिश के संभावना बा। बिहार के पूर्व राज्यपाल और शिक्षाविद डीवाई पाटिल के आज उनकर पैतृक आवास महाराष्ट्र के कोल्हापुर में निधन हो गए। वहां के 91 बरिस के रहनी डीवाई पाटिल 22 मार्च 2013 से 26 नवंबर 2014 के बीच बिहार के राज्यपाल रहनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार डीवाई पाटिल के निधन पर गहरा शोक जतौलन। एक शांति आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक यही जे समाप्त भेल।
1: एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:10 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि सहकारिता किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
2: मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: कार्यक्रम किसान वाणी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं संजय किशोर
4: और मैं सोमा चक्रवर्ती।
3: तो आइए एक नजर डालते हैं आज के इस अंक में प्रसारित होने वाले प्रमुख विषयों पर।
4: सबसे पहले सामयिक कृषि चर्चा हम करेंगे। धान की पछात खेती बेहतर उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे
3: और विशेष बातचीत हम करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर, जिसके तहत प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा और किसानों के हित से जुड़ी आवश्यक बातें होंगी।
4: आज की संक में एक विशेष वार्ता हम आपको सुनवाएंगे। विषय होगा कद्दू के रोग एवं रोकथाम। हमारे विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर चंद्रशेखर प्रभाकर।
3: कार्यक्रम के बीच में लोकगीत की प्रस्तुति होगी जो हमारी लोक संस्कृति की सुगंध से आपको सराबोर कर देगी
4: और खेती किसानी से जुड़े उपयोगी सुझाव और नसीहत भी हम आपको देंगे।
3: मौसम का ताजा पूर्वानुमान आपको हम देंगे ताकि कृषि गतिविधियों की बेहतर योजना आप बना सकें।
4: संजय जी, ये तो कार्यक्रम संबंधी जानकारी हमने अपने किसान भाइयों को दी, तो चलिए हम लोग कुछ बातचीत कर ली। विषय है धान की पछात खेती और हम सभी जानते हैं संजय जी कि धान भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है और समय पर रोपाई और उचित प्रबंधन से इसकी अच्छी उपज प्राप्त होती है।
3: बहुत सही कहा सोमा जी, पर कई बार ऐसा होता है कि वर्षा में विलंब होने, बाढ़ आने, जल भराव होने और अन्य कई कारणों से धान की रोपाई समय पर

0: नहीं हो पाती। तो ऐसी स्थिति में की जाने वाली खेती को धान की पछात खेती हम कहते हैं।
1: और पछात खेती में किसानों को कम अवधि में पकने वाली जो धान की किस्में हैं उसका चयन करना चाहिए ताकि जो फसल है समय पर तैयार हो सके।
0: बहुत सही कहा आपने। और इसके लिए जरूरी है कि खेत की अच्छी तैयारी करें, संतुलित उर्वरक प्रबंधन और जल निकासी की उचित व्यवस्था हो।
1: साथ ही धान की पछात खेती के लिए 100 से 120 दिनों में तैयार होने वाली उन्नत किस्मों का चयन करना लाभदायक होता है। रोपाई के समय स्वस्थ एवं 20 से 25 दिन की पौध का प्रयोग करें। पौधों की उचित दूरी बनाए रखें ताकि उन्हें पर्याप्त धूप और पोषक तत्व मिल सकें।
0: सही कहा आपने। और इसी के साथ खेत में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का संतुलित उपयोग करना चाहिए। साथ ही खेत में खरपतवार नियंत्रण, समय समय पर सिंचाई और कीट एवं रोगों की नियमित निगरानी भी आवश्यक है।
1: साथ ही तना छेदक, पत्ती लपेटक तथा झुलसा रोग जैसे रोगों एवं

0: की उचित व्यवस्था हो।
1: साथ ही धान की पछात खेती के लिए 100 से 120 दिनों में तैयार होने वाली उन्नत किस्मों का चयन करना लाभदायक होता है। रोपाई के समय स्वस्थ एवं 20 से 25 दिन की पौध का प्रयोग करें। पौधों की उचित दूरी बनाए रखें ताकि उन्हें पर्याप्त धूप और पोषक तत्व मिल सकें।
0: सही कहा आपने। और इसी के साथ खेत में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का संतुलित उपयोग करना चाहिए। साथ ही खेत में खरपतवार नियंत्रण, समय समय पर सिंचाई और कीट एवं रोगों की नियमित निगरानी भी आवश्यक है।
1: साथ ही तना छेदक, पत्ती लपेटक तथा झुलसा रोग जैसे रोगों एवं कीटों से बचाव के लिए कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार समेकित कीट प्रबंधन भी करना चाहिए।
0: धान की पछात खेती परिस्थितियों के अनुसार अपनाई जाने वाली एक प्रभावी कृषि तकनीक है, जो किसानों को फसल उत्पादन बनाए रखने और आर्थिक नुकसान से बचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
1: बिल्कुल सही संजय जी, ये तो चर्चा हो गई कि किस तरह से धान की हम पछात खेती कर सकते हैं, लेकिन आज एक और महत्वपूर्ण विषय पर हम बातचीत करेंगे।
0: जी बताइए।
1: जो हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही उपयोगी है और वो है फसल बीमा योजना।
0: जी सोमा जी, ये तो बहुत महत्वपूर्ण योजना है।
1: हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के जो किसान हैं, दिन रात अथक परिश्रम करके खेतों में हमारे लिए अन्न उगाते हैं, लेकिन खेती पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर है। कभी बाढ़, कभी सूखा, कभी ओलावृष्टि, तो कभी तेज आंधी या कीट एवं रोग जैसे ऐसी अनेक प्राकृतिक आपदाएं हैं जो किसानों की मेहनत पर पानी फेर देती है।
0: बहुत सही कहा सोमा जी आपने। ऐसे कठिन समय में किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की है। ये योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, प्रतिकूल मौसम, कीट और रोगों से होने वाले नुकसानों के विरुद्ध बीमा सुरक्षा प्रदान करती है।
1: जी हाँ, और इसका उद्देश्य केवल नुकसान भरपाई करना ही नहीं, बल्कि किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और खेती के प्रति उनका जो विश्वास है उसे बनाए रखना भी है।
0: इस योजना के अंतर्गत खरीफ, रबी तथा अनेक वाणिज्यिक और बागवानी फसलें शामिल की जाती हैं। किसानों को बहुत कम प्रीमियम देना पड़ता है, जबकि शेष राशि का वहन केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर करती हैं। यदि फसल को किसी प्रकार से नुकसान होता है तो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बीमा दावा स्वीकृत होने पर किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
1: तो किसान भाइयों और बहनों, ये आवश्यक है कि आप समय पर अपनी फसल का बीमा कराएं और आवेदन करते समय सभी आवश्यक दस्तावेज सही ढंग से जमा करें और किसी भी प्रकार की फसल क्षति होने पर निर्धारित समय सीमा के भीतर इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों या बीमा कंपनी को अवश्य दे। जो किसान भविष्य की सुरक्षा अपनाए, वही हर मुश्किल में मुस्कुराए।
0: मेहनत की हर बूंद का मिले सम्मान, किसान का सुरक्षित रहे हर अरमान।
1: संजय जी।
0: जी सोमा जी,
1: बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें, जानकारी हम लोगों ने अपने किसान भाई बहनों को तो दे दी, लेकिन उन्हें इंतजार होगा कि कुछ गीत संगीत से उनका मनोरंजन भी हो।
0: जी बहुत सही कहा, क्या सुनवा रही हैं?
1: देखिए, अभी सावन का महीना है और ये जो सावन का महीना होता है शिवमय होता है। जिस तरफ देखिए लोग शिव की भक्ति में लीन रहते हैं।
0: हाँ जी, ये तो अभी सड़कों पर देखने को मिल ही रहा है, शिवालयों में भी मिल रहा है और कई जगहों पर देखने को मिल रहा है।
1: और हर जगह बोल बम का नारा भी है, तो क्यों ना हम लोग इस कार्यक्रम में एक खूबसूरत शिव भजन अपने किसान भाई बहनों को सुना दें।
0: बिल्कुल।

0: क्या बात है संजय जी, बहुत झूम रहे थे और आप तो एकदम शिवमय हो गए थे, क्या बात।
1: जी, शिव भजन था ही ऐसा,
0: हाँ
1: और हमारे साथ साथ किसान भाई भी झूम रहे होंगे। तो ये बहुत ही सुंदर शिव भजन हमने किसानों को सुनवाया, और अब किसानों के लिए आगे क्या है?
0: देखिए संजय जी, बरसात का जो मौसम होता है ना, उसमें मन करता है जब बारिश हो तो घर में गर्मा गर्म चाय हो, पकौड़ी हो, प्याज के, कद्दू
1: तो खाने
0: के,
1: का मन बढ़ रहा है।
0: बढ़ रहा है ना। लेकिन अगर आपको खाना है तो स्वस्थ सब्जियां ही खानी चाहिए। हाँ, और
1: बिल्कुल
0: ऐसे में जरूरी होता है कि जो भी सब्जी है उसमें कीड़े या कोई रोग ना लगे, तो इसके लिए जरूरी है कि ध्यान दे। आज हम लोग हमारे विशेषज्ञ से जानेंगे कि कद्दू के क्या क्या रोग होते हैं और इनका रोकथाम कैसे किया जाए। और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर चंद्रशेखर प्रभाकर।
2: नमस्कार किसान भाइयों, आज हम कद्दू के रोग एवं रोकथाम विषय पर चर्चा करेंगे। कद्दू बिहार की एक लोकप्रिय सब्जी फसल है, जिसकी खेती वर्ष में 3 बार की जाती है, जैसे जायद, खरीफ एवं रबी सीजन में इसकी फसल ली जा सकती है। जायद सीजन में इसकी बुआई मध्य जनवरी, खरीफ सीजन में इसकी बुआई मध्य जून से 1 जुलाई तक, और रबी सीजन में इसकी बुआई

सितंबर अंत से अक्टूबर के पहले सप्ताह तक की जाती है। कद्दू भारतीय स्वादिष्ट व्यंजनों में अधिकतर उपयोग की जाने वाली विटामिन्स फाइबर से भरपूर कुकुरबिटेसी परिवार की सब्जी है। बेल के रूप में बढ़ने वाले कद्दू का पौधा गर्म तापमान में उगता है। हालांकि यह पौधा कम देखभाल के कारण आसानी से घरों में उगाया जाता है, लेकिन कुछ विपरीत परिस्थितियों में कद्दू के पौधे में रोग व बीमारी लग जाती है, जिसके कारण वह ठीक तरह से वृद्धि नहीं कर पाता और फल भी नहीं लग पाते हैं। यदि किसान भाई कद्दू के पौधे को स्वस्थ व रोग मुक्त रखना चाहते हैं एवं अच्छा उत्पादन एवं उत्पादकता प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसमें लगने वाली बीमारियों एवं रोकथाम की जानकारी होना अति आवश्यक है। सर्वप्रथम इसमें बीमारी के रूप में आता है मृदुरोमिल आसिता, जो एक फफूंद जनित रोग है जो कि सूडोपेरेनोस्पोरा नामक फफूंद से फैलता है। रोग के लक्षण सर्वप्रथम पत्तियों की ऊपरी सतह पर हल्के पीले रंग के कोनीय धब्बे के रूप में दिखाई पड़ते हैं। धब्बे के ठीक नीचे पत्ती की निचली सतह पर कवक की बढ़वार रुई के समान बैंगनी रंग का दिखाई पड़ता है। रुई की रोग की तीव्रता में पत्तियां पीली पड़कर सूखने लगती है, कभी कभी पूरा पौधा ही सूख जाता है। रोगी पौधे बौने रह जाते हैं। रोगी पौधे में फल अक्सर कच्चे रह जाते हैं और यदि किसी प्रकार पक भी गए तो उनका स्वाद खराब हो जाता है। रोग प्रबंधन हेतु हमें फसल चक्र अपनाना चाहिए, जिसमें कद्दू कुल की सब्जियों को हर साल एक ही खेत में नहीं लगाना चाहिए। फसल समाप्त हो जाने के बाद फसल के अवशेषों को जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। रोगी बेलों को काट देना चाहिए तथा खड़ी फसल पर मैनकोजेब अथवा रेडोमिल MZ 72.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। पहला छिड़काव रोग के लक्षण दिखाई पड़ते ही शुरू कर देना चाहिए, अथवा अगर रोग अति उग्र हो तो 10 से 15 दिन के अंतराल पर हमें 3 छिड़काव करना लाभप्रद होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बीमारी है फल विगलन, जो कि पीथियम एपिडर्मिटम नामक फफूंद से फैलता है। इस रोग के लक्षण फलों पर पनीले गहरे रंग के धब्बे के रूप में उत्पन्न होते हैं। पहले फल छूने पर काफ़ी मुलायम पड़ते हैं, रोग फल सड़ने लगते हैं। नम मौसम में रोगी स्थानों पर रुई जैसे सफ़ेद कवक की बढ़वार दिखाई पड़ती है। फल विगलन के कारण फलों में से एक प्रकार की दुर्गंध आती है। भूमि सतह के संपर्क में रहने वाले फलों में रोग लगने की संभावना अधिक होती है। भंडारण के समय यदि कोई रोगग्रस्त फल भूल से भंडार में पहुंच जाए तो अन्य स्वस्थ पौधों में भी यह रोग पनपने लगता है। रोग प्रबंधन हेतु रोगी पौधों के अवशेषों को जलाकर या दूर मिट्टी में दबाकर नष्ट कर देना चाहिए। जल निकास या समुचित रखरखाव रखना चाहिए। बेलों को चढ़ाने के लिए सहारा देने के लिए ताकि फल जमीन पर न छुए। इसके अलावा भूमि पर बेलों एवं फलों के नीचे पुआल, सरकंडे या ऐसी ही अन्य चीज़ें बिछाना लाभप्रद होता है। फलों को तोड़ते समय या खेत से बाजार ले जाते समय ध्यान रखना चाहिए कि फलों पर घाव या खरोच ना आने पाए। खड़ी फसल पर हम मैनकोजेब या रेडोमिल MZ 72.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव कर सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बीमारी आती है चूर्णी लासिता, जो कि एरिसाइफी चिकोरिसियरम नामक फफूंद से फैलता है। रोग के लक्षण सर्वप्रथम सामान्यतः पत्ती की ऊपरी सतह एवं नए तनों पर सफ़ेद चूर्ण लिए धब्बों के रूप में उत्पन्न होते हैं। धब्बों पर उपस्थित चूर्ण बिल्कुल टेलकम पाउडर से मिलता जुलता है। रोगी पौधों पर ऊपरी भाग पीला पड़कर सूखने लगता है तथा चूर्णी धब्बों का रंग भूरा हो जाता है। पुराने धब्बों के बीचों बीच में छोटे छोटे काले बिंदु के आकार के कवक की संरचना दिखाई पड़ती है। साथ ही साथ पौधों की वृद्धि रुक जाती है और फल को अधिक पकने में टाइम लगता है। रोग प्रबंधन हेतु खेतों में या उसके समीप उपस्थित जंगली पौधे को उखाड़कर हमें नष्ट कर देना चाहिए। रोगी पौधे के अवशेषों को इकट्ठा करके नष्ट कर देना चाहिए। जैसे ही रोग के लक्षण दिखाई पड़े सल्फेक्स 2 ग्राम या कैलेक्सिन या कैराथेन 0.6 मिलीलीटर पानी में घोल बनाकर हमें खड़ी फसलों पर चुनाव करना चाहिए। एक अन्य महत्वपूर्ण बीमारी आती है कोनीय पर्णचित्ती, जो सूडोमोनास सिरिंजी से फैलता है। इस रोग के लक्षण पत्ती, तने, फूलों एवं फलों पर

प्रकट होते हैं। पत्तियों पर अनियमित या कोनीय आकार के जलीय दाग बनते हैं। नम मौसम में धब्बों के ऊपर एक लसा पदार्थ निकलता है जो बाद में सूखकर सफ़ेद पपड़ी के रूप में दिखाई पड़ता है। धब्बे बीज का उत्पक सूखकर गिरने लगता है, अनियमित आकार के छिद्र बन जाते हैं। फलों पर दाग छोटे और गोलाकार के बनते हैं। रोगी स्थान फट जाता है और फल झड़ने लग। रोग प्रबंधन हेतु हमें स्वस्थ तथा रोग रहित पौधों से प्राप्त बीज का प्रयोग करना चाहिए। बीज का उत्पादन सूखे क्षेत्रों में करना चाहिए जहाँ पर रोग मुक्त बहुत ही कम लगता हो। 2 या 3 वर्षों के फसल चक्र में इस वर्ग की फसलों को नहीं लगाना चाहिए। जल निकास का उचित प्रबंधन हमें रखना चाहिए। यदि खड़ी फसल में बीमारी आती है तो उसमें हम गंधक का चूर्ण 200 मेस 2.5 से 3 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से हमें भुरकाव करना चाहिए। एक अन्य बीमारी जिसे श्याम वर्म कहते हैं, जो कोलेटोट्राइकम लेजिनियरम से फैलता है। इस रोग के लक्षण पत्तियों पर पीले गोल या कोनीय दाग बनते हैं। ये दाग बाद में बढ़कर बड़े आकार के लगभग 10 मिलीमीटर व्यास के हो जाते हैं। बाद में दाग का रंग भूरा हो जाता है। रोगी पत्तियाँ विकृत हो जाती हैं तथा कई धब्बों के आपस में मिलने से सूख जाती हैं। पत्तियों के डंठलों तथा तनों पर बने धब्बे छिछले एवं लंबे होते हैं। फलों पर धब्बे गोलाकार, पनीले और दबे हुए होते हैं। नम मौसम में रोग तेजी से फैलता है। अनुकूल वातावरण मिलने पर दागों का रंग कवक की वृद्धि के कारण गुलाबी दिखाई पड़ता है। रोग प्रबंधन हेतु हमें बोने के लिए बीज स्वस्थ पौधों से ही प्राप्त करना चाहिए। फसल चक्र अपनाना चाहिए। जल का निकास उत्तम होना चाहिए। कद्दू कुल के जंगली पौधों को नष्ट कर देना चाहिए। साथ ही साथ बीज को बोते समय हमें थिरम या कार्बेंडाजिम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से मिलाकर हमें बीज उपचार कर लेना चाहिए। यदि खड़ी फसल पर श्याम वर्ण बीमारी का लक्षण मिलता है तो हमें कवकनाशी जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके हमें छिड़काव करना चाहिए। एक अन्य बीमारी आती है जैसे सर्कोस्पोरा पर्णचित्ती रोग, जो कि एक फफूंद जनित रोग है। इस रोग के कारण प्रारंभ में पत्तियों पर छोटे छोटे गोलाकार या अनियमित आकार के जलीय दाग दिखाई पड़ते हैं। यह धब्बे बाद में बढ़कर बड़े आकार के लगभग कुछ मिलीमीटर से लेकर 1 सेंटीमीटर व्यास के हो सकते हैं। धब्बे के बीच का भाग भूरा, सफ़ेद या धूसर रंग का और किनारे गहरे या काले रंग के हो जाते हैं। रोगी पत्तियाँ मुरझा जाती हैं और झुलसी सी मालूम पड़ती है। कभी कभी पूरा पौधा सूख जाता है। तनों एवं पत्तियों के डंठलों पर भी समान रूप से धब्बे दिखाई पड़ते हैं। बीज को बोते समय हमें मर्क्यूरी क्लोराइड 1:1000 के घोल में 5 से 10 मिनट तक डुबो कर उपचारित कर लेना चाहिए। खड़ी फसल में हमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आधारित कवकनाशी जैसे ब्लाइटॉक्स या फाइटोलान या ब्लू कॉपर 50 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर हमें छिड़काव करना लाभप्रद होता है। पहला छिड़काव रोग के लक्षण दिखाई पड़ते ही शुरू कर देना चाहिए। यदि रोग अति उग्र हो तो 3 छिड़काव हमें 10 से 15 दिन के अंतराल पर करना चाहिए। बीमारी और है जिसे मोजैक भी कहते हैं, जो कुकुम्बर मोजैक वायरस से बहुत तेजी से फैलता है। ये एक तरह का विषाणु रोग है। रोग के लक्षण फसल की किस्म, पौधे की अवस्था तथा विषाणु के विभेद पर भी काफ़ी निर्भर करती है। प्रारंभिक अवस्था में रोग के प्रकोप होने पर पौधे पीले पड़ जाते हैं, पौधों की बढ़वार रुक जाती है तथा बाद में वे मर जाते हैं। बड़े पौधों में सबसे पहले ऊपरी नई पत्तियों के हरे व पीले रंग की छींट के रूप में मोजैक रोग के लक्षण प्रकट होते हैं। धब्बे फैलकर पूरी पत्ती पर हरे व पीले रंग की चितकबरा बना देता है। रोग की तीव्र में पत्तियां कुरूप, झुर्रीदार एवं छोटी तथा कभी कभी नीचे की ओर मुड़ी जाती हैं। पत्तियों की सिराओं और सिरिकाओं का हरा या पीला पड़ना भी रोग के सामान्य लक्षण है। बेल की पोरियाँ घट जाती हैं जिसे पौधे बोने लगते हैं। फल विकृत, खुरदरे, छोटे व चितकबरे दिखाई पड़ते हैं। इस रोग हेतु किसान भाइयों, जैसे ही रोग के लक्षण दिखाई दें रोगी पौधों को उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए। बीज का चुनाव स्वस्थ व रोग रहित पौधों से ही करना चाहिए। रोगी पौधों को छूने के बाद हाथ को साबुन या अन्य किसी रोगाणुनाशी से भली भांति धोने के बाद ही स्वस्थ पौधे को छूना चाहिए। खेत के आसपास पाए जाने वाले खरपतवारों को भी हमें नष्ट कर देना चाहिए। फसल की प्रारंभिक अवस्था में ही कीटनाशी रसायन जैसे मेटासिस्टॉक या रोगर 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बना करके

0: हमें छिड़काव करना चाहिए, और 15 दिन के अंतराल पर अगर बीमारी उग्र हो तो दोबारा भी स्प्रे कर देना सहायक होता है। ध्यान रहे कि फल तोड़ने से 20 दिन पूर्व छिड़काव हमें बंद कर देना चाहिए। ये सब रोग नियंत्रण करके किसान भाई अच्छा उत्पादन एवं उत्पादकता प्राप्त कर सकते हैं।
1: अभी बारिश का मौसम है
0: जी
1: और ऐसे में जो हमारे किसान भाई और बहन हैं उनके लिए खेती तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है बरसात के समय, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण होता है कि अपने स्वास्थ्य के प्रति वो सावधानी बरते,
2: बिल्कुल
1: और स्वास्थ्य की दृष्टि से सावधानी बरतने का भी ये समय है। और इस मौसम में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया तथा पानी से फैलने वाली कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए जरूरी है कि अपने घर और आसपास कहीं भी पानी जमा ना होने दें।
2: हाँ, और इस जमाव से मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है, तो मच्छरों से बचाव के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें, पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनें और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें।
1: और एक जरूरी बात कि पीने के लिए हमेशा स्वच्छ एवं उबला हुआ या शुद्ध पानी का ही उपयोग करें।
2: बहुत जरूरी बात है ये। और खेतों में जब काम कर रहे हैं तो जल जमाव वाले स्थानों पर विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।
1: और साथ ही साथ इस जल जमाव में कीड़े मकौड़े, सांप या बिच्छू भी हो जाते हैं, तो किसी भी व्यक्ति को अगर सांप या बिच्छू काट ले तो झाड़ फूंक के भरोसे में बिल्कुल ना रहे।
2: भाई ये तो बहुत ही जरूरी बात है किसी भी व्यक्ति के लिए।
1: हाँ,
2: सांप बिच्छू या किसी प्रकार का जहरीला कीड़ा अगर काट ले तो आप सबसे पहले नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाएं या तो फिर उसे सीधे अस्पताल ले जाएं।
1: हाँ बिल्कुल। और ये याद रखे आप भी और हमारे किसान भाई बहन भी कि सावधानी ही
2: सुरक्षा
1: है।
2: है। और अब कुछ जानकारी हम मौसम की दे देते हैं अपने किसान भाइयों को। दिन भर रुक रुक कर बारिश या बौछारें पड़ने की संभावनाएं हैं अभी।
1: और अधिकतम तापमान लगभग 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान भी है।
2: तो किसान खेतों में जल निकासी की व्यवस्था रखें और बिजली चमकने के दौरान खुले खेतों में काम करने से बचें। बिहार में कई स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी भी जारी कर दी गई है, तो इसका बहुत ही सावधानी से ख्याल रखें। और श्रोता, कि आपके सुझाव और अनुभव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे।
1: बिल्कुल।
2: तो अपनी प्रतिक्रियाएं और अनुभव या कोई और बात हमसे अगर साझा करेंगे तो उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार होंगे। तो आपके फीडबैक के लिए हमारा ईमेल आईडी है airpatna@gmail.com।
3: खेतों की आवाज, देश की पहचान। नमस्कार।
4: कहो गिरधारी भाई, गए थे मक्का बेचने, हाई का ले आई इतनी बोरियों में?
5: खाद है सरजू भाई, यूरिया, डीएपी, पोटास, यही सब। हर बार खेत में खाद बढ़ा कर डालो और उपज जस का तस। घाटे का सौदा है खेती।
4: बिल्कुल गलत। अपने खेत को बंजर मत होने दो। मेरी मानो, मिट्टी की जांच करवा कर उसका हेल्थ कार्ड बनवा लो।
5: लेकिन उससे क्या फायदा होगा?
4: अरे भाई, तुम्हारे खेत की मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी अथवा अधिकता है इसकी जानकारी मिल जाएगी और उसी के अनुसार निर्धारित मात्रा में तुम्हें खाद उर्वरकों की जरूरत होगी। पैसे भी बचेंगे और मिट्टी की सेहत भी बरकरार रहेगी।
5: लेकिन इसमें बड़ी झमेला है।
4: अरे नहीं, बिल्कुल आसान है। अपने प्रखंड कार्यालय या कृषि सलाहकार अथवा जिला मिट्टी जांच प्रयोगशाला से संपर्क करो, बस।
5: किसान भाइयों, अपने खेत की मिट्टी की जांच अवश्य कराएं।
4: सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाएं। कृषि लागत में कमी लाकर मिट्टी सुरक्षित रखते हुए लाभ का दायरा बढ़ाएं।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत।

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। संध्या के 6:40 हो रहे हैं। प्रस्तुत है भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांझ गीत।

कविता कृष्णमूर्ति, सुनील छैला बिहारी और साथियों की आवाज़ों में आप सुन रहे थे सैया हमार फिल्म का ये गीत। गीत को अभिनय बिहारी ने लिखा था और संगीत से संवारा था ताबुन और सुजीत कुमार ने। आकाशवाणी सासाराम से आप सुन रहे हैं भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांझ गीत। भाई होखे त ऐसन कार्यक्रम का अगला गीत हम सुनवा रहे हैं इस फिल्म से। आवाजें हैं उदित नारायण और कल्पना की। इस गीत को भी लिखा है विनय बिहारी ने और संगीत दिया है राजेश गुप्ता ने।

0: सुन, सोचतानी कि काहे न आपन बिजनेस बढ़ाई।
1: त रोकले के बा?
0: रोकले त कोई नहीं खे, बाकी समझ में नहीं खे आवत कि कैसे मदद मांगी।
1: हमरा से?
0: तोहरा से? त बतावो।
1: आकाशवाणी बा न, हम सुनले बानी कि आकाशवाणी के नेटवर्क देश भर में फैलल बा।
0: तो ओकरा से हमरा के का फायदा बा?
1: फायदा बा, जौना शहर में चाही विज्ञापन के माध्यम से ओही जगह पहुंच जाई।
0: त इहो बता द कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे होई?
1: बहुत आसान बा, हम बतावत बानी। नंबर लिखी 8700001424।

0: दो।
1: ओ 8700014242।
0: हाँ
1: तो बहिने फोन लगावत बानी 8700014242 पर।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

इस समय अपनी टीम के आकाशवाणी सासाराम और सुन रहे हैं भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांझ गीत। आवत हो ये सामरिया। अब हम सुनवा रहे हैं इस फिल्म का एक गीत सुरेश वाडेकर और नीलिमा निलय की आवाजों में। भाई जी भोजपुरिया ने गीत को लिखा है और संगीत दिया है दिलीप दत्ता ने।

आवत हुई है सांवरिया। अभी आप सुन रहे थे सुरेश वाडेकर और नीलिमा नीले की आवाजों में ये गीत। सांझ गीत कार्यक्रम में अब हम सुन रहे हैं दारोगा बाबू आई लव फिल्म का एक गीत उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाजों में। गीत को लिखा है विनय बिहारी ने और संगीत दिया है लाल सिन्हा ने।

उदित नारायण की आवाज में आप सुन रहे थे भोजपुरिया लाठी फिल्म से ये गीत। और अब कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए आशा भोसले की आवाज में धरती मैया फिल्म का ये गीत। लक्ष्मण शाहबादी ने गीत को लिखा है और चित्रगुप्त ने इसे संगीत दिया है।

आशा भोसले के गए धरती मैया फिल्म के इस गीत के साथ ही भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांझ गीत अब समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड के 103.4 MHz पर। शाम के 7:15 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है हमारा सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास।

हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:15 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है हमारा सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास।

गुड इवनिंग रोहतास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। श्रोताइए, हम आपको बता दें स्थानीय कुछ गतिविधियों के बारे में। आज दिनांक 4 अगस्त 2026 को समाहरणालय रोहतास स्थित DRDA सभागार में जिला पदाधिकारी श्री दीपक कुमार मिश्रा एवं पुलिस अधीक्षक श्री रोशन कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में चेहल्लुम पर्व 2026 को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में शांति समिति के सदस्यों तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में चेहल्लुम पर्व के दौरान विधि व्यवस्था, सुरक्षा, साफ सफाई, संवेदनशील स्थलों पर विशेष निगरानी तथा प्रशासनिक तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी ने नगर निगम सासाराम को शहर में स्वच्छता, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में CCTV कैमरों एवं ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। जिला पदाधिकारी ने कहा कि सभी चेहल्लुम जुलूस निर्धारित समय एवं पूर्व निर्धारित मार्ग से ही निकाले जाएंगे। बिना सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सभी आवश्यक तैयारियां समय रहते पूरी करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि सासाराम शहर में चेहल्लुम जुलूस के दिन जुलूस के लिए दिन में 11 बजे से 2 बजे तक तथा रात्रि में 9 बजे से 1 बजे तक समय निर्धारित किया गया है। अधिकारियों ने जानकारी दी कि सभी चिन्हित एवं संवेदनशील स्थलों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल एवं दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। चेहल्लुम पर्व के दौरान किसी भी प्रकार की सूचना अथवा सहायता के लिए समाहरणालय में जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। आमजन नियंत्रण कक्ष के दूरभाष संख्या 06184226072 एवं 06184226093 पर संपर्क कर सकते हैं। बैठक में शांति समिति के सदस्यों एवं जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।

तथा स्थानीय आवश्यकताओं का विस्तृत अवलोकन किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं अभियंताओं से सड़क निर्माण के विभिन्न तकनीकी पहलुओं की जानकारी प्राप्त करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला पदाधिकारी ने सड़क निर्माण विभाग के अधिकारियों एवं अभियंताओं को इस परियोजना का विस्तृत प्रकलन जल्द तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण के बाद घनकी जामुन चौक से बुढ़न नहर तक चौक तक आवागमन अधिक सुगम एवं सुरक्षित होगा। विशेषकर मानसून के दौरान यह सड़क बेहतर संपर्क मार्ग के रूप में कार्य करेगी। इससे स्थानीय ग्रामीणों के साथ साथ पर्यटकों को भी काफ़ी सुविधा मिलेगी। यह सड़क रोहतास जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंच को और अधिक आसान बनाएगी। सड़क बनने के बाद लोग शहर के बाहर बाहर शेरगढ़ किला, दुर्गावती डैम सहित आसपास के प्राकृतिक एवं ऐतिहासिक स्थलों तक सहजता से पहुंच सकेंगे। तो श्रोताओं, ये थी कुछ स्थानीय गतिविधियां। अब हम सुन रहे हैं एक गाना।

आज दिनांक 4 अगस्त 2026 को जिला पदाधिकारी रोहतास श्री दीपक कुमार मिश्रा द्वारा घन की जामुन चौक से फोर लेन के अंदर से होते हुए बुढ़न नहर चौक तक सड़क निर्माण को लेकर स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी भूअर्जन पदाधिकारी जिला योजना पदाधिकारी सड़क निर्माण विभाग के अभियंता सहित सभी संबंधित विभागों के अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। निरीक्षण के क्रम में जिला पदाधिकारी ने सड़क मार्ग की भौगोलिक स्थिति, संभावित रूट निर्माण की व्यवहारिकता

0: किशोर कुमार की आवाज़ में आप सुन रहे थे अंदाज फिल्म का ये गीत। हसरत जयपुरी के बोल थे और शंकर जय किशन का संगीत। और श्रोताओं, इसी के साथ आज का गुड इवनिंग रोहतास कार्यक्रम अब समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी देर में अगला कार्यक्रम हमारे पटना केंद्र से रिले होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल

0: जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के सभी पेंशन धारियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। अपनी पेंशन बिना रुकावट के पाने हेतु यथाशीघ्र जीवन प्रमाणीकरण अवश्य कराएं। पंचायत या प्रखंड स्तर पर या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर आधार कार्ड या बैंक खाता संख्या या लाभार्थी संख्या लेकर जाएं एवं निःशुल्क जीवन प्रमाणीकरण कराकर प्रमाण पत्र प्राप्त करें। अतिवृद्ध एवं दिव्यांग पेंशन धारियों का बायोमेट्रिक के माध्यम से जीवन प्रमाणीकरण नहीं होने पर भौतिक सत्यापन की व्यवस्था की गई है। ध्यान दें, जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराने पर आपकी पेंशन बाधित हो सकती है। अपने पेंशन को निरंतर जारी रखने के लिए आज ही जीवन प्रमाणीकरण कराएं।
3: अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800-345-6262 पर संपर्क करें। समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
5: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण आज भी बाधित रही। जदयू अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बिहार के विकास से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा। बांकीपुर चुनाव परिणाम के बाद राजद में असंतोष उभरा। पार्टी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा, संगठन की कमजोरी के कारण मिली पराजय। और मौसम विभाग ने अररिया, मधेपुरा, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और शिवहर समेत 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी बाधित रही। लोकसभा में कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाते हुए गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग शुरू कर दी। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्षी सदस्यों से सदन चलने देने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्य हंगामा करते रहे। इसके बाद सदन की कार्यवाही भोजनावकाश तक के लिए स्थगित कर दी गई। भोजनावकाश के बाद भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच सदन ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 पारित किया। इसके बाद सभाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी। इधर राज्यसभा में भी इसी मुद्दे को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच शून्यकाल शुरू किया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
1: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन करके जो जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एनओसी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: जदयू अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार ने आज नई दिल्ली में संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह भी मौजूद रहे। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह एक औपचारिक मुलाकात थी। इस दौरान बिहार के विकास से जुड़े मुद्दों पर मुख्य रूप से चर्चा हुई।
2: अनौपचारिक थी, कोई औपचारिक मुलाकात नहीं थी, वो कटसी कॉल थी और कटसी कॉल के लिए गए। बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार जी सदैव चिंतित रहते हैं और प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा कि हम सबको मिलके बिहार के विकास को और आगे बढ़ाना है और बिहार को विकसित बिहार बनाना है।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना स्थित नासरीगंज घाट से पानापुर घाट तक स्टीमर सेवा का उद्घाटन किया। इस सेवा के शुरू होने से त्यारा इलाके के लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में सहकारिता मंत्री ने कहा कि स्टीमर सेवा से पटना के साथ साथ सारण जिले के 7 पंचायतों को लाभ होगा। उन्होंने बताया कि स्टीमर सेवा निःशुल्क है। राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में पार्टी को मिली हार की समीक्षा की जाएगी। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि वे जनादेश को स्वीकार करते हैं।
3: देखिए, जनादेश का जो भी मैंडेट जो है उसको हम लोग जो है स्वीकार करते हैं, लेकिन ये जनता का आक्रोश बीजेपी के सरकार पर था, मुख्यमंत्री पर था और उनके गलत नीतियों पर, और काम कुछ नहीं किया, अपने काम से वो पीछे हटे हैं, इसलिए जनता ने भाजपा के लोगों को सजा।
0: इधर बांकीपुर चुनाव परिणाम के बाद राजद में असंतोष के स्वर उभर कर सामने आए हैं। पार्टी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि यह हार संगठन की कमजोरी के कारण हुई है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव के आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे पार्टी को नुकसान हो रहा है।

0: हमारी हार हुई है संगठन की कमजोरी की वजह से भी, और भरोसा जिन लोगों पर पार्टी करती है उनका कोई वजूद समाज में नहीं है, वैसे लोग पर भरोसा करती है। कई ऐसे चेहरे हैं जब हमारे नेता के आजू बाजू बैठते हैं तो लोग कमेंट करता है और असंसदीय शब्दों का प्रयोग करता है, वैसे लोगों को गाड़ी से निकाल देना चाहिए, गाड़ी पर नहीं बैठाना चाहिए और आजू बाजू भी नहीं बैठाना चाहिए, जिससे पार्टी को काफी हानि हो रही है।
1: भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि इससे किसी भी राजनीतिक दल को खुश होने की जरूरत नहीं है।
2: परिणाम है उसको हम स्वीकारते हैं, लेकिन इससे किसी को बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। 2009 में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में 17 सीटों पर हम बाई इलेक्शन लड़े थे, 12 सीट हार गए थे, और 2010 में 89% स्ट्राइक रेट से बिहार जीता था, इसलिए बहुत लोग खुश न हो।
1: राष्ट्रीय लोक मोर्चा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने उपचुनाव के परिणाम को चौंकाने वाला बताया। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस परिणाम की समीक्षा की जरूरत है।
3: थोड़ा अचंभित करने वाला परिणाम है, हार जीत तो डेमोक्रेसी में कोई बड़ी चीज नहीं है, कभी हार कभी जीत होती है। वहां की जनता का जो निर्णय हुआ हम सब लोगों के सर आंखों पर है, लेकिन समीक्षा की जरूरत है कि आखिर क्यों ऐसी स्थिति हुई।
1: प्रदेश के नगर निकायों में सफाई कर्मियों और चालकों की हड़ताल के कारण साफ सफाई व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित है। 6 दिनों से चल रही हड़ताल के चलते जगह जगह कूड़े कचरे का अंबार दिखने लगा है। बारिश के मौसम में गली मोहल्लों में कचरे का अंबार लगने से संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। इस बीच स्थानीय प्रशासन की ओर से साफ सफाई की वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। इधर बेतिया से हमारे संवाददाता आशीष कुमार ने बताया कि ताली कर्मियों ने स्थानीय विधायक और पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के आवास का घेराव किया। रेणु देवी ने विभागीय मंत्री से बात की और कहा कि कर्मचारियों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन मिला है।
4: देश हमारे बिहार भर में जितना भी एजुकेशन हो रहा है, 3 सूत्री मांग के लिए अभी हमने अपने माननीय नगर विकास मंत्री जी से बात की हूँ और जहाँ तक है कि बात बनेगी, और मैंने एक सुझाव रखा है कि कम से कम 4th ग्रेड के कर्मचारी को जनरल इंश्योरेंस से भी जोड़ा जाए।
1: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
5: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। आकाशवाणी पटना से प्रसारित होने वाले भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण समय में परिवर्तन किया गया है। 7 अगस्त से यह समाचार बुलेटिन संध्या 6:05 की जगह संध्या 5:30 से सुना जा सकता है। भोजपुरी समाचार बुलेटिन का प्रसारण आकाशवाणी पटना के साथ ही 101.6 MHz पर FM रेनबो चैनल पर भी सुना जा सकेगा। कटिहार की स्टार्टअप उद्यमी मीसा सिंह को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति सचिवालय से उन्हें आमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ है। मछलियों को अधिक समय तक सुरक्षित रखने और उन्हें दूर दराज के बाजारों तक बेहतर ढंग से पहुंचाने की तकनीक विकसित करने के लिए उन्हें यह सम्मान दिया जा रहा है। मीसा सिंह ने इसे अपने लिए गौरव का क्षण बताया।
1: मुझे ये ऑनरेबल प्रेसिडेंट मैम के यहाँ से ये इन्विटेशन आया है जो कि मेरे स्टार्टअप के लिए है, जो कि हम कोल्ड चेन में अपना काम कर रहे हैं, उसी के सम्मान में हमें ये इन्विटेशन मिला है और मैं इसके लिए बहुत बहुत बहुत खुश हूँ और बहुत ही ज्यादा मेरे लिए खुशी का पल है और मैं इस खुशी को बयां नहीं कर सकती।

0: पेपर लीक भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता और शिक्षा व्यवस्था में सुधार समेत कई मांगों के समर्थन में एनएसयूआई समेत विभिन्न छात्र संगठनों ने आज पटना में प्रदर्शन किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रदर्शनकारियों का जत्था जेपी गोलम्बर से मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए निकला था। इस दौरान इनकम टैक्स गोलम्बर पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और आगे बढ़ने लगे। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इस दौरान पुलिस ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ और कई छात्रों को हिरासत में ले लिया। प्रदर्शन में शामिल छात्रों ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है उनकी लड़ाई जारी रहेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से राहुल कुमार।
0: रेलवे भर्ती बोर्ड की लेवल 1 भर्ती परीक्षा 3 से 6 अगस्त तक विभिन्न चरणों में आयोजित की जा रही है। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पूर्व मध्य रेल ने 2 जोड़ी परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू किया है। इसमें एक जोड़ी स्पेशल ट्रेन जयनगर और लखनऊ के बीच जबकि दूसरी जोड़ी ट्रेन राजगीर और वाराणसी के बीच चलाई जा रही है। बिहार के पूर्व राज्यपाल और शिक्षाविद डीवाई पाटिल का आज उनके पैतृक आवास महाराष्ट्र के कोल्हापुर में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। डीवाई पाटिल 22 मार्च 2013 से 26 नवंबर 2014 के बीच बिहार के राज्यपाल रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने डीवाई पाटिल के निधन पर गहरा शोक जताया है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने भी डीवाई पाटिल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान अररिया में सबसे अधिक 160 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों में अररिया, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, मधेपुरा, खगड़िया, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और शिवहर जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। अन्य जिलों में भी बारिश की संभावना है।
2: 24 घंटों के दौरान राज्य के पूर्वी भाग के अनेक स्थानों जबकि शेष भागों के कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है तथा 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश भागों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के अररिया, पूर्वी चंपारण, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया, शिवहर एवं सीतामढ़ी जिलों में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: प्रदेश के विभिन्न भागों में आज चेहल्लुम पूरी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। इमाम हुसैन की शहादत की याद में यह दिन मनाया जाता है। इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर ताजिया, सिपर, अलम और मातमी जुलूस निकाले जा रहे हैं। बेगूसराय जिला मुख्यालय के कचहरी रोड में आधार सेवा केंद्र की शुरुआत हुई है। इस केंद्र पर लोग नया आधार कार्ड बनवाने के साथ साथ बायोमेट्रिक सुधार और नाम पता तथा मोबाइल नंबर भी अपडेट करा सकते हैं। सुपौल जिला मुख्यालय स्थित डिग्री कॉलेज चौक पर कोसी पुनर्वासित परिवारों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण आज भी बाधित रही। जदयू अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बिहार के विकास से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा। बांकीपुर चुनाव परिणाम के बाद राजद में असंतोष उभरा। पार्टी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा संगठन की कमजोरी के कारण मिली पराजय। और मौसम विभाग ने अररिया, मधेपुरा, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और शिवहर समेत 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब प्रस्तुत है शेखपुरा जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता निरंजन कुमार।
1: सावन माह के आगे

0: सावन के साथ ही शेखपुरा जिला का वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया है। सावन के पहले सोमवारी के दिन जिले के प्रमुख मंदिरों और शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। गरिंडा स्थित प्रसिद्ध बाबा कामेश्वरनाथ मंदिर तथा बरबीघा प्रखंड के ऐतिहासिक पंचवदन स्थान में भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालु कतारबद्ध दिखे। श्रद्धालुओं ने गंगा जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और अन्य पूजन सामग्री अर्पित कर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की तथा परिवार की सुख समृद्धि और मंगल कामना की। इस वर्ष बरबीघा प्रखंड के पंचवदन स्थान पर पहली बार राजकीय श्रावणी मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं में उत्साह देखा जा रहा है। जिले में सामान्य से कम वर्षा होने के कारण खरीफ खेती पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। कृषि विभाग ने इस वर्ष जिले में 28,000 हेक्टेयर क्षेत्र में धान की रोपाई का लक्ष्य निर्धारित किया है, लेकिन खेतों में पर्याप्त पानी नहीं रहने के कारण अब तक निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले केवल 43% क्षेत्र में ही धान की रोपाई हो सकी है। जून और जुलाई दोनों महीनों में अपेक्षित बारिश नहीं होने से किसानों को धान की रोपाई में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कुछ किसानों को डीजल पंप के सहारे सिंचाई कर अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा है, जिससे खेती की लागत भी बढ़ रही है। शेखपुरा जिले ने 31 जुलाई को अपना 32वां स्थापना दिवस उत्साह और उल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर जिले भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्य समारोह का आयोजन समाहरणालय परिसर में किया गया, जहां जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और आम लोगों ने भाग लिया। गौरतलब है कि शेखपुरा जिला वर्ष 1994 में मुंगेर जिले से अलग होकर स्वतंत्र जिला के रूप में अस्तित्व में आया था। स्थापना दिवस के मौके पर जिले में विकास उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। समारोह में जिलाधिकारी शेखर आनंद, SP हिमांशु सहित जिले के कई वरीय अधिकारियों और कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान जिले के गौरवशाली इतिहास और विकास यात्रा को भी याद किया गया। अधिकारियों ने कहा कि शेखपुरा लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और प्रशासन की ओर से आम लोगों तक बेहतर सुविधाएं पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
1: 32 वर्ष पहले 31 जुलाई 1994 को विकास की नई संभावनाओं और जन आकांक्षाओं को साकार करने के उद्देश्य से ही शेखपुरा को एक स्वतंत्र जिला का स्वरूप मिला था। आज हमारा जिला शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, कृषि, ग्रामीण विकास, सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ आधारभूत संरचना के क्षेत्र में लगातार नई ऊंचाइयों को हम लोग प्राप्त कर रहे हैं।
0: इधर स्थापना दिवस समारोह के बाद अब जिला प्रशासन आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों में जुट गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री के हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए भी प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जिले में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत और बेहतर बनाने के लिए लगातार कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। जिले के सभी प्रखंडों में एक एक आदर्श विद्यालय की स्थापना की गई है। इन विद्यालयों में आधुनिक शैक्षणिक संसाधनों और बेहतर शिक्षण व्यवस्था के माध्यम से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जा रहा है। वहीं अरियरी, चेवाड़ा, शेखोपुर सराय और घाट कुसुम्भा में डिग्री कॉलेजों में पढ़ाई शुरू हो चुकी है। इससे स्थानीय छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा मिल रही है। इसके अलावा जिले में 2 केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना की प्रक्रिया भी तेजी से आगे बढ़ रही है। नए शैक्षणिक सत्र में इन विद्यालयों में नामांकन की भी प्रक्रिया जारी है। साथ ही जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 अगस्त कर दी गई है। इससे उन विद्यार्थियों को भी आवेदन करने का अवसर मिला है जो किसी कारणवश निर्धारित समय सीमा के अंदर आवेदन नहीं कर पाए थे। जिला स्वास्थ्य विभाग ने जिले को TB मुक्त बनाने के अभियान में तेजी लाई है। विभिन्न विभागों के सहयोग से अब तक लगभग 1,25,000 लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है और करीब 500 TB मरीजों को पोषण आहार किट उपलब्ध कराई गई है। जिले में सामाजिक सौहार्द बढ़ाने की दिशा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने 5 गांवों को मुकदमा मुक्त गांव बनाने की पहल शुरू की है। सदर प्रखंड शेखपुरा और अरेरी प्रखंड के 5 गांवों में सामुदायिक मध्यस्थों का चयन किया गया है। यदि 1 वर्ष तक इन गांवों में कोई मामला थाना या न्यायालय नहीं पहुँचता है तो उन्हें मुकदमा मुक्त गाँव घोषित कर सम्मानित किया जाएगा। शेखपुरा जिला अधिवक्ता संघ का द्विवार्षिक चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गया। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद अधिवक्ता चंद्रमौली यादव को संघ का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया, जबकि विनोद कुमार सिंह ने महासचिव पद पर जीत दर्ज की।
2: अभी आप सुन रहे थे शेखपुरा जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता निरंजन कुमार।

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। प्रस्तुत है ईमेल आधारित हमारा फरमाइशी कार्यक्रम ई मन पसंद। कार्यक्रम में अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। कार्यक्रम को लेकर आज हाजिर है आपका रेडियो दोस्त लाल बहादुर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज किशोर दा का जन्म दिवस है और इनका जन्म हुआ था 4 अगस्त 1929 ईस्वी को। वे एक अच्छे गायक के अलावा अच्छे अभिनेता भी थे। हिंदी सिनेमा के लिए उन्होंने बंगाली, हिंदी, मराठी, असमी, गुजराती, कन्नड़, भोजपुरी, मलयालम, उड़िया और उर्दू सहित कई भारतीय भाषाओं में गाया था। और बता दें कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के लिए 8 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। उस श्रेणी में सबसे ज़्यादा फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड भी बनाया। तो चलिए हम किशोर दा को विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। और हमारे आज के प्रोग्राम के लिए हमारे ज़्यादातर श्रोताओं ने किशोर कुमार के गाए गीत की ही फरमाइश की है। तो चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम। और कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा रहे हैं ब्लैकमेल फिल्म से, किशोर कुमार की आवाज़ में। आनंद बख्शी की रचना है और कल्याण जी आनंद जी का संगीत। और इसे पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया। नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा और पूनम कुमारी शर्मा। कलर बिहार से हमारे श्रोता हैं मोहम्मद आसिफ खान और निकहत परवीन। और ये हमारे श्रोता हैं दतरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती देवी, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। तो लीजिए आप सब सुनिए ब्लैकमेल फिल्म का ये गीत।

0: श्रोताओं की श्रोता, भले ही आज इस दुनिया में न हो, लेकिन वे हमारे दिल के पास सदा रहेंगे। श्रोताओं, आप आकाशवाणी सासाराम से सुन रहे हैं ई मनपसंद कार्यक्रम, और इसका शेष भाग अब हम आपके लिए लेकर हाजिर होंगे अब से 15 मिनट बाद, यानी 8:15 से। इस समय रात्रि के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में दिल्ली से हम रिले करेंगे संसद समीक्षा।
1: योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, अब तक 3,300 से अधिक निक्षय मित्र टीबी मरीजों के सहयोग के लिए सक्रिय रूप से जुड़ चुके हैं। दिल्ली मेरठ मार्ग पर नमो भारत ट्रेन में 3 अगस्त को एक ही दिन में 15 लाख से अधिक यात्रियों ने सफर किया। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली पर।
1: राज्यसभा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज राम मंदिर चढ़ावा

चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण बैठक बार बार बाधित हुई। हंगामे के बीच जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण से जुड़े एक महत्वपूर्ण विधेयक को संक्षिप्त चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। उच्च सदन की सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए नकदी और कीमती सामान की चोरी का मुद्दा उठाया, जिसका सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जोरदार विरोध किया और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से अपनी बात रखने के लिए कहा। खड़गे ने राम मंदिर के निर्माण और प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा गठित ट्रस्ट के कुछ सदस्यों पर चढ़ावे की कथित चोरी का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि प्रवर्तन निदेशालय, ईडी, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियां श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों पर लगे आरोपों की जाँच क्यों नहीं कर रही हैं। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभापति की अनुमति से बोलते हुए कहा कि विपक्ष जिन मुद्दों को बार बार उठाने की कोशिश कर रहा है उसे सदन में उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने हमेशा भगवान राम का अपमान किया और राम मंदिर निर्माण का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अब ये दल चंदा चोरी के मुद्दे पर नाटक कर रहे हैं। इस बीच द्रविड़ मुनेत्र कषगम के सदस्य तिरुचि शिवा ने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन को हिरासत में ले जाने का मुद्दा उठाने का प्रयास किया, लेकिन सभापति ने इसकी अनुमति नहीं दी। हंगामे के बीच शून्यकाल में दो सदस्यों ने लोक महत्व के मुद्दे उठाए। भाजपा की सीमा द्विवेदी ने देश में परिवहन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए परिवहन आयोग के गठन की मांग की। उन्होंने कहा कि परिवहन व्यवस्था को अधिक प्रभावी, सुरक्षित और आधुनिक बनाने के लिए एक समर्पित आयोग का गठन समय की आवश्यकता है। भाजपा की ही गीता उर्फ चंद्रप्रभा ने उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में कौशल विकास केंद्र खोलने की मांग करते हुए कहा कि जिले में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं तथा शिक्षा, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि औरैया में बड़ी संख्या में युवा तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक हैं। इस बीच सदन में हंगामा जारी रहने के कारण सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे बैठक फिर शुरू होने पर सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी था। हंगामे के बीच ही सभापति राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू कराया। कुछ सदस्यों ने पूरक प्रश्न भी पूछे और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने उनके जवाब भी दिए। प्रश्नकाल के दौरान लगातार नारेबाजी और शोर शराबे के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश की अनुमति से गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया, किंतु सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा और नारेबाजी जारी रही। हंगामे के बीच विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा में भाजपा की दर्शना सिंह, विश्वजीत सिन्हा, साधना सिंह, तृणमूल की ममता ठाकुर, द्रमुक के तिरुचि शिवा, बीजू जनता दल के संतृप्त मिश्रा, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के मेदा रघुनाथ रेड्डी, अन्ना द्रमुक के एम थंबीदुरई, एम धनपाल, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू, माकपा के वी शिवदासान, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो और शिवसेना की ज्योति नागनाथ वाघमारे ने हिस्सा लिया। चर्चा में अधिकतर सदस्यों ने माना कि देश में जन्म और मृत्यु पंजीकरण नागरिकों का एक महत्वपूर्ण दायित्व है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों पर जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संबंधी कानून को ठीक से लागू नहीं कर देश और लोकतंत्र के साथ धोखा करने का आरोप लगाया तथा दावा किया कि वर्तमान सरकार इन दोनों के सार्वभौमिक पंजीकरण के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि विलंब से जन्म और मृत्यु पंजीकरण कराने से होने वाले दुरुपयोग को रोकने के लिए इसमें कई प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियां चाहती हैं कि जिन बच्चों का जन्म किसी अन्य देश में हुआ है ऐसे बच्चों का भी जन्म भारत में दिखाया जाए और इसके लिए कानून की खामियों का फायदा उठाया जाता है। उन्होंने आगाह किया कि अब ऐसा नहीं हो पाएगा। मंत्री ने स्पष्ट किया कि इसमें किसी भी सही व्यक्ति के लिए कोई रोक नहीं है तथा इस प्रक्रिया का डिजिटलीकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि देश में 3.5 लाख से अधिक पंजीकरण केंद्र हैं। उन्होंने सदन को सूचित किया कि देश में जन्म पंजीकरण स्तर 2014 में 86.6% था, जो

2024 में बढ़कर 99.8% हो गया है। उन्होंने कहा कि मृत्यु के मामले में यह आंकड़ा क्रमशः 72.5% था, जो बढ़कर 99.4% हो गया है। राय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों ने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के माध्यम से देश और लोकतंत्र के साथ धोखा किया था। मंत्री ने कहा कि सरकार जन्म और मृत्यु के सार्वभौमिक लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि जन्म या मृत्यु होने के 2 वर्ष के बाद यदि सूचना दी जाती है तो ऐसे मामलों में केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही रजिस्ट्रार पंजीकरण करेंगे। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में जन्म और मृत्यु के 2 वर्ष के भीतर सूचना देने वाले मामलों में जो पुराने प्रावधान लागू हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उन्होंने 2 साल से अधिक की अवधि वाले मामलों के लिए प्रावधानों में बदलाव करने का कारण स्पष्ट करते हुए कहा कि देश चाहता है कि भारत माता की गोद में पैदा होने वाली हर संतान का रजिस्ट्रेशन हो, ये मोदी सरकार का संकल्प है। साथ ही जिसकी मृत्यु हो जाती है और वो भूत बनकर तुष्टीकरण करने वाली पार्टियों का मतदाता बना रहता है, ऐसे भूतों से देश छुटकारा चाह रहा है। राय ने कहा कि इसलिए समय से मृत्यु का पंजीकरण भी अत्यंत आवश्यक है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 को संशोधित कर विलंब से होने वाले पंजीकरण के प्रावधानों को कड़ा बनाना है। उच्च सदन में ये विधेयक पारित होने के बाद विपक्षी सदस्यों का हंगामा और नारेबाजी जारी रही। हंगामा थमते न देख उपसभापति हरिवंश ने बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवारुल हक। लोकसभा ने आज विनियोग संख्यांक 3 विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। हालांकि विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण विधेयक पर चर्चा नहीं हो सकी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने शोर शराबे के बीच ही सदन में कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 भी पेश किया। अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों पर कई विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण आज भी लोकसभा में गतिरोध बरकरार रहा। सदन की कार्रवाई एक बार के स्थगन के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के हंगामे के कारण पिछले कई दिनों की तरह आज भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके। सदन की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने पर जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा तो विपक्षी के सदस्य हंगामा करने लगे। वे अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे थे और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। बिरला ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि मैं आप सभी को बोलने का अवसर दूंगा, लेकिन प्रश्नकाल में केवल प्रश्न उत्तर होते हैं और सभी से अनुरोध है कि कार्यवाही चलाने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि मैंने कल भी कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सभी दलों से ये अनुरोध किया था। संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है और चर्चा एवं संवाद के लिए है। ये नारेबाजी करने और तख्तियां लेकर आने का मंच नहीं है। शोर शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने सदन की बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद बैठक 2 बजे शुरू हुई तो पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने आवश्यक कागजात सदन के पटल पर रखवाए। इस दौरान विपक्षी सदस्य पहले की तरह ही शोर शराबा कर रहे थे। सैकिया ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीट पर जाकर बैठने का आग्रह करते हुए कहा कि ये महत्वपूर्ण विधेयक है और सभी को इसमें सहयोग करना चाहिए। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विनियोग संख्यांक 3 विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। विपक्ष के हंगामे के बीच सदन ने इस विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विपक्ष के जिन सदस्यों ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को पेश किए जाने के विरोध में बोलने के लिए नोटिस दिया था, उन्होंने आसन द्वारा नाम पुकारे जाने के बावजूद ऐसा नहीं किया। इस विधेयक का उद्देश्य संदाय एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करते हुए उन्हें सरल, स्पष्ट और अधिक प्रभावी बनाना है। ये मुख्य रूप से कर प्रशासन को सुव्यवस्थित करने तथा आयकर कानूनों में आवश्यक बदलाव करने के लिए लाया गया है। आयकर अधिनियम 2025 तथा आयकर अधिनियम 1961 में कई तकनीकी और प्रक्रियात्मक संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।
इसके तहत कर निर्धारण, अपील, दंड और अभियोजन से संबंधित प्रावधानों को अधिक स्पष्ट और

0: सरल बनाया गया है। कुछ मामलों में दंड की राशि बढ़ाने तथा कुछ मामलों में कर की दरों का युक्तिकरण करने का प्रस्ताव है। स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए कुछ परिस्थितियों में दंड एवं अभियोजन से राहत का दायरा बढ़ाया गया है। लोकसभा में प्रश्नकाल भले ही नहीं चल सका, लेकिन सरकार ने कई लिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने वर्ष 2024 से अब तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े मामलों में 254 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने जानकारी दी कि इन लोगों के कब्जे से 40 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं। मंत्री के अनुसार 103 विदेशी नागरिक अनिवार्य किराएदार सत्यापन के बिना किराए के मकानों में रह रहे थे। इस मामले में 63 मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। एक अन्य लिखित उत्तर में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का उल्लेख करते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एनक्रिप्टेड संचार एप्लीकेशन तथा डार्कनेट के माध्यम से संचालित मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क की पहचान कर उन्हें ध्वस्त करने के लिए खुफिया जानकारी आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित रणनीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि डार्कनेट आधारित मादक पदार्थ तस्करी तथा क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से होने वाले लेन देन की जांच के लिए साइबर विशेषज्ञों को नियुक्त किया गया है। मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल संबंधी विजन डॉक्यूमेंट के अंतर्गत सभी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स में समर्पित डार्कनेट और क्रिप्टो करेंसी सेल स्थापित करने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित विश्लेषण, उन्नत तकनीकों तथा विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से साइबर सक्षम संगठित मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क को समाप्त करने की परिकल्पना की गई है। राय ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि देशभर में इस वर्ष 1 मार्च से अब तक लू के कारण 20 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 4,853 मामले दर्ज किए गए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में लू से सबसे अधिक मौतें हुई हैं, जबकि तेलंगाना में सबसे अधिक मामले सामने आए। राय ने बताया कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर गृह मंत्रालय ने 2026-31 अवधि के लिए राज्य आपदा मोचन कोष SDRF तथा राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष NDRF के संचालन संबंधी दिशा निर्देशों के अंतर्गत लू और आकाशीय बिजली को अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि अब SDRF और NDRF के माध्यम से राहत सहायता प्रदान करने के लिए एक स्पष्ट नीतिगत ढांचा लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही लू से बचाव और उसके प्रभाव को कम करने से संबंधित परियोजनाओं को भी आपदा न्यूनीकरण निधियों के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए पात्र बनाया गया है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में हालिया गिरावट का मुख्य कारण भारत द्वारा विदेशों में बढ़ते निवेश तथा विदेशी निवेशकों द्वारा निवेश की वृद्धि है। उनके अनुसार शुद्ध FDI वर्ष 2024-25 में घटकर 1 अरब अमेरिकी डॉलर रह गया, जबकि ये 2023-24 में 10.2 अरब डॉलर तथा 2022-23 में 28 अरब डॉलर था। जितिन प्रसाद ने कहा कि शुद्ध FDI प्रवाह में हालिया रुझान भारत द्वारा विदेशों में बढ़ते निवेश तथा विदेशी निवेश की बढ़ती वापसी से जुड़ा हुआ है। जितिन प्रसाद ने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में बताया कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों SEZ से देश का निर्यात 2025-26 में 11.8% बढ़कर 16,36,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। उन्होंने कहा कि SEZ की क्षमता का बेहतर उपयोग करने, निवेश आकर्षित करने तथा उन्हें घरेलू आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने के लिए सरकार समय समय पर विभिन्न कदम उठाती रहती है, ताकि इन निर्यात क्षेत्रों की परिचालन दक्षता में वृद्धि हो सके। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे की स्थिति के कारण लगातार 12वें दिन आज भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: अभी आप सुन रहे थे दिल्ली से रिले संसद समीक्षा। आकाशवाणी का ये साझारम केंद्र है FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:15 हो रहे हैं श्रोताओं।

एक बार फिर हम हाजिर हैं लेकर कार्यक्रम ई मनपसंद। और जैसा कि आपने जाना कि किशोर कुमार का आज जन्मदिवस है और आज इस कार्यक्रम में किशोर कुमार के गाए हम गाने सुना रहे हैं। ज़्यादातर फरमाइश भी आप सबों ने किशोर कुमार के गाए गीत को ही किया है। तो चलिए अब कार्यक्रम शुरू करते हैं और सुनवाते हैं आराधना फिल्म से एक गीत। और इस गीत को सुनना चाहते हैं

गीत को ही किया है। तो चलिए अब कार्यक्रम शुरू करते हैं और सुनवाते हैं आराधना फिल्म से एक गीत। और इस गीत को सुनना चाहते हैं कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, और शेरपुर कला जिला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। इसी गाने के लिए फरमाइशी मेल किया है कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजयालक्ष्मी सावनकर, राजेश, राकेश और ऋषिता। और आप सब हैं गढ़नोखा लालगंज रोहतास से राजकिशोर सिंह, बड़क सिंह और आर के सिंह। ग्राम खरवत गढ़नोखा से मोती माला गुप्ता, लाल बिहारी सिंह और बीरा सिंह। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा और पूजा परिहार। बक्सर बिहार से हमारे श्रोता हैं सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुमित रमेश साहू। गोलाबाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य और परमानंद आर्य। तो लीजिए आप सब सुनिए आराधना फिल्म का ये गीत।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी सासाराम और सुन रहे हैं कार्यक्रम ई मन पसंद। चलिए अब हम आपको सुना रहे हैं सफर फिल्म का एक गीत, किशोर कुमार की आवाज़ में इंदिवर की रचना है और कल्याण जी आनंद जी का संगीत। और इसके लिए फरमाइशी मेल किया है हमारे श्रोता ताजपुर मोरबा समस्तीपुर बिहार से कारी रायकारी मीनाकारी पुंजराज आर्यन आरती आकर्षण और जयश्री। और ये हमारे श्रोता हैं फुटानी चौक नरन एस्टेट से ललन मिश्रा नूतन मिश्रा गुंजन छोटू अमित सुमित अमन परासर आराध्या और लल्लू पंडित। और ये दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा परस मणि वर्मा पुष्पेंद्र मणि वर्मा नोखेलाल वर्मा ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। तो चलिए आप सबों की पसंद पर हम सुनवा रहे हैं सफर फिल्म से ये गीत।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ईमन पसंद कार्यक्रम में अब हम सुनवा रहे हैं आप सबों की पसंद पर मिस्टर नटवरलाल फिल्म से एक गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। रचना है आनंद बख्शी की और संगीत राजेश रोशन का। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं दीवाना रेडियो लिसनर्स क्लब जमानिया जिला गाजीपुर यूपी से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल। गम्हरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल और आर्य कुमार जायसवाल। और जमानिया रेलवे स्टेशन से एसपी जायसवाल, टिम्पल जायसवाल, आशुतोष और अभिनव जायसवाल। और ये हमारे श्रोता हैं नगर पंचायत दिनारा से जयराम सिंह, श्रीमती सुषमा सिंह, जेके मिश्रा, श्वेता रानी पाठक, रुचि कुमारी, मदनेश्वर सिंह, प्रभात, पुरुषोत्तम, सौरभ, अर्पित, हर्षित, हनी, काशवी, गिलू, जयराम बिंद और वीरेंद्र पांडे। ग्राम नहोना सासाराम से भरत सिंह, धर्मराज सिंह, डॉक्टर अनिल, जयनाथ, जगदीश, दशरथ, विमला देवी, मास्टर अनिल, रविंद्र सिंह और डमरू कलाकार। और ये हमारे श्रोता है नयका गांव धर्मशाला से राजेंद्र सिंह, शकुंतला देवी, प्रीति, राहुल और बादल। तो चलिए आप सबों की पसंद पर हम सुनवा रहे हैं मिस्टर नटवर लाल फिल्म का ये गीत।

आप सबों की पसंद पर अब हम सुनवा रहे हैं अंधा कानून फिल्म से एक गीत किशोर कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत। और इसके लिए फरमाइशी मेल किया है हमारे श्रोता ओम रेडियो श्रोता संघ कोली नांदेड़ से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़ और साईं गायकवाड़। और ये हमारे श्रोता हैं जमा मस्जिद रोड

गंगोवा से हाजी इशाक लोलामानी, मोहम्मद उमर कासमी और हाजी अयूब शेरी। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैसराव कॉलोनी सनाबाद से मोहम्मद सादिक मोहम्मद, मुस्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतमस खत्री, रमेश गोण और मोहम्मद सद्दाव खत्री। और ये फरमाइश है वाडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। तो चलिए, आप सब की पसंद पर हम सुनवा रहे हैं ये गीत।

इसी गाने को सुनना चाहते हैं नेहरू पार्क निजामाबाद तेलंगाना से अजीज भाई, मतीन भाई, शेख चंद, फारूक फुलवाले, शहीद खलील और मोबिन भाई।

और ये श्रोता हैं जो कोई भी गीत सुनना चाहते हैं, और ये हैं गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह।

ग्राम पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहात से रामेश्वर कठेरिया, उमाकांती कठेरिया, कमलेश कठेरिया, बधु निशा कठेरिया, प्रज्ञा कठेरिया, प्रतिमा कठेरिया, वेद बाबू कठेरिया और समस्त कठेरिया परिवार ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है।

और श्रोताओं, इसी के साथ आज का ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मनपसंद अब समाप्त होता है। आप भी अपनी फरमाइश के गाना सुन सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम में, तो आप हमारे इस ईमेल एड्रेस पर अपना फरमाइशी मेल भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है akashvani.sasaram@gmail.com और आपको मेल करना है अपराह्न 1 बजे से शाम 5 बजे के बीच। इसी बीच किए गए मेल हम शामिल करते हैं। और अब अपने रेडियो दोस्त लाल बहादुर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। थोड़ी देर में समाचार संध्या हम रिले करेंगे अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: चैनल है। आइए आपसे कुछ ही पलों में सुनते हैं समाचार, पहले हिंदी फिर अंग्रेजी और उसके बाद उर्दू में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। संसद में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। ये विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और सख्त बनाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए

0: मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय के अनुसार 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को दिखावा बताया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में होने वाली देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। नए प्रावधान के तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या डीएम द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना दो वर्ष से अधिक समय के बाद जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
2: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एनओसी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े अवैध खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों को शिकायत निवारण को मजबूत करने को भी कहा है। धोखाधड़ी से प्राप्त धन की वसूली में तेजी लाने और डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से निपटने में सुधार करने के कई निर्देश भी जारी किए गए हैं। भारत 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। भारत ने भगोड़े अपराधियों से निपटने के लिए एक एकीकृत खुफिया आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित मॉडल विकसित किया है। मंत्रालय ने कहा कि 2014 से पहले भारत के केवल 37 देशों के साथ प्रत्यर्पण समझौते थे और आर्थिक भगोड़ों से निपटने या उनकी संपत्ति जब्त करने के लिए कोई समर्पित कानून भी नहीं था।

0: भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को पूरी तरह दिखावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि इस तरह के खोखले प्रयास वास्तविकता को छिपा नहीं सकते।
1: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस वर्ष जून से अब तक वहां जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई एक अन्य में घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
0: सितंबर महीने में दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के निमंत्रण पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को इस साल फरवरी में पदभार ग्रहण करने पर भारत की द्विपक्षीय यात्रा का औपचारिक निमंत्रण दिया गया था। उन्होंने बताया कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के संबंध में भारत ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को बिम्स्टेक के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के जनसंपर्क सत्र में शामिल होने के लिए अलग से निमंत्रण दिया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाताओं से संवाद पर प्रवक्ता ने कहा कि यह संवाद एक निजी मीडिया संस्था ने आयोजित किया है।
1: वो एक प्राइवेट मीडिया संस्थान उसका आयोजन कर रहा है। भारत सरकार का इस आयोजन से कोई लेना देना नहीं है और साथ ही साथ वहां पर इस मंच से उठाए गए विषय या उस मंच से बोले गए शब्दों का कोई समर्थन हम नहीं करते हैं, ना हमारा कोई उससे कोई रिश्ता नहीं है।
0: पंजाब पुलिस ने ISI समर्थित दो सीमा पार आतंकी मॉड्यूल के 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी सुरक्षा प्रतिष्ठानों की निगरानी में भी शामिल थे। उन्होंने रेलवे ट्रैक के पास निगरानी कैमरे लगाए थे और फुटेज विदेशी एजेंटों के साथ साझा कर रहे थे। जांच जारी है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली और महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम को 17 अगस्त तक बढ़ा दिया है। मतदाता सूची का मसौदा 24 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची अब 27 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। आयोग ने बताया कि नागरिक 24 अगस्त से 23 सितंबर तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर रांची में छात्रों का विरोध प्रदर्शन आज 11वें दिन भी जारी है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने शुक्रवार को झारखंड विधानसभा तक मार्च निकालने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति को गठित करने का निर्देश दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले की CBI जांच की मांग की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भर्ती आयोगों में भ्रष्टाचार और परिवारवाद का आरोप लगाया है।
2: झारखंड में हजारों लाखों छात्र किस प्रकार से आंदोलन में हैं, कांग्रेस पार्टी एक शब्द झारखंड में आंदोलन में बैठे छात्रों के पक्ष में बोलते नजर नहीं आ रही है, पार्लियामेंट में उस विषय को उठाते नजर नहीं आ, क्योंकि ये सिलेक्टिव आउटरेज है और इसके पीछे केवल राजनीतिक रोटी सेकने की चेष्टा कांग्रेस पार्टी की है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत देशभर में 50 लाख से ज्यादा परिवारों को छतों पर सौर पैनल लगवाने का फायदा मिला है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये योजना नागरिकों को सशक्त बना रही है, ये भारत को स्वच्छ और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर करने में गति प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि 19 लाख से ज्यादा परिवारों का बिजली का बिल अब शून्य हो गया है। अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में ग्लाव झील को भारत का 101वां रामसर स्थल घोषित कर दिया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसे जैव विविधता संरक्षण, जल और जलवायु सुरक्षा तथा सतत आजीविका के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि पूर्वी हिमालय में स्थित ये कमलांग बाघ अभयारण्य और वन्य जीव अभयारण्य के भीतर बसा हुआ स्वच्छ

0: मीठे पानी की झील जैव विविधता का एक प्रमुख केंद्र है। यूपीआई ने पिछले महीने 236 करोड़ 60 लाख रुपए का लेन देन किया है। वित्त मंत्रालय ने डिजिटल भुगतान को अपनाने और इसको आगे बढ़ाने के लिए लोगों को धन्यवाद दिया है। मंत्रालय ने लोगों से देश में लेन देन के तरीके को बदलने की इस यात्रा को जारी रखने का आह्वान किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 210 अंक घटकर 78,429 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159 अंक नीचे आकर 24,615 पर दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 4 पैसे कमजोर होकर 95.38 रुपए पैसे पर बंद हुआ।
0: खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी, जूडो और पैरा एथलेटिक्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। नई दिल्ली में एक समारोह में स्वर्ण पदक विजेताओं को 30 लाख, रजत पदक विजेताओं को 20 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए के पुरस्कार प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि 36,000 करोड़ रुपए की संशोधित खेलो इंडिया योजना से भविष्य में खेलों के विकास में निरंतर निवेश सुनिश्चित होगा।
2: सरकार ने खेलो इंडिया स्कीम लाया, स्पोर्ट्स के लिए सारी फैसिलिटी व्यवस्था खड़ी करी, लास्ट वीक में 36,000 करोड़ रुपया दिया जो आपके लिए यूज करा जाए। सरकार स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी नहीं चलाई। आप जैसे जो एथलीट रिटायर करेंगे, जो स्पोर्ट्स को जीते हैं, मैं आपको कहूंगा कि आप चलाओ, पैसा हम देंगे। देश की आपसे बहुत ज्यादा अपेक्षा है। हमें हर बार नए लक्ष्य को तय करना है और लक्ष्य को अचीव करने के लिए प्रयास करना।
0: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। उन्होंने थाईलैंड के वोरापोल थोंगसानगा और चालो एम्पोन चारोएन कितामोर्न को हराया। फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-2379 में उड़ान के दौरान अत्यधिक ऊंचाई पर विमान में कुछ समय के लिए झटके महसूस किए गए, जिसके कारण विमान के सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को नई दिल्ली में सुरक्षित उतारा गया। विमान में 137 यात्री और 8 चालक दल के सदस्य सवार थे। 13 यात्रियों और 4 चालक दल के सदस्यों को मामूली चोटें आईं। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दिन में 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज बारिश की संभावना है। केरलम, माहे, राजस्थान, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तर प्रदेश में भी अगले 2 से 3 दिनों में ऐसी ही स्थिति रह सकती है। सुरों के जादूगर किशोर कुमार की जयंती पर उनकी जन्मस्थली खंडवा में पूरे दिन उत्साह का माहौल रहा। देशभर से पहुंचे हजारों प्रशंसकों ने उनकी समाधि पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी। समाधि परिसर में दिन भर किशोर कुमार के सदाबहार गीत गूंजते रहे। बड़ी संख्या में संगीत प्रेमियों ने बॉम्बे बाजार स्थित उनके पैतृक निवास का भी भ्रमण किया। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। ये विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और सख्त बनाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को दिखावा बताया। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: एफएम बैंड की 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। रात्रि के 9 बजे है। लोकधारा कार्यक्रम में लीजिए सुनिए भोजपुरी लोकगीत। आरंभ में हम सुनवा रहे हैं मनोरंजन ओझा के स्वर में ये निर्गुण।

आकाशवाणी सासाराम से आप सुन रहे हैं लोकधारा कार्यक्रम में भोजपुरी लोकगीत। आप लीजिए सुनिए बीभा रानी के स्वर में ये लोकगीत।

विभा रानी सिन्हा के स्वर में आप सुन रहे थे ये लोकगीत। और अब कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए केसरी नंदन भगत और साथियों के स्वर में ये पूर्वी

और इस लोकगीत के साथ ही लोकधारा कार्यक्रम अब संपन्न होता है। यह आकाशवाणी सासाराम है, हमारे केंद्र से अब प्रस्तुत है गजलों का कार्यक्रम महफिल। अरब में हम सुन रहे हैं हरिहरन की आवाज में अकबर हैदराबादी की यह गजल।

और अब कार्यक्रम के अंत में लीजिए, सुनिए गुलाम अली की गाई मोहसिन नकवी की ये गजल।

गुलाम अली की गई इस गजल के साथ ही महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड की 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 9:30 हुए हैं। अब हम थोड़ी देर में आपके लिए रिले करेंगे विविध भारती का कार्यक्रम आज के फनकार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: और एलपीजी।
1: प्यार किए दिन जवानी के चार यार प्यार।
2: किशोर दा की प्रतिभा बहुआयामी थी, जितने समर्थ अभिनेता उतने ही सुरीले दिलकश गायक।

सन 1929 के अगस्त महीने की चौथी तारीख को जन्मे किशोरदा ने तारीख यानी इतिहास में अपना वो स्थान बनाया कि उस ऊंचाई को किसी और कलाकार के लिए छू पाना लगभग नामुमकिन सा है। उनकी टाइमिंग, नाटकीयता, भूमिका की समझ और अदायगी, सब कुछ अद्भुत। सच तो ये है कि किशोरदा अपने आप में अभिनय और गायन की एक संपूर्ण

मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में जन्मे किशोर कुमार का वास्तविक नाम था आभास कुमार गांगुली। उन दिनों आभास कुमार गांगुली के बड़े भाई अशोक कुमार हिंदी सिनेमा का एक स्थापित नाम बन चुके थे। परिवार के सदस्य अब नियमित रूप से मुंबई आने जाने लगे थे। मुंबई में किशोरदा की नई पारी की शुरुआत हुई किशोर कुमार के नाम से। 1946 में आई फिल्म शिकारी में उन्होंने पहली बार अभिनय किया। इसके दो बरस बाद सन 1948 में आई फिल्म जिद्दी में उन्हें पार्श्व गायन का मौका मिला।

सन 1951 में किशोरदा ने बॉम्बे टॉकीज की फिल्म आंदोलन में नायक की भूमिका निभाई। इसे निर्देशित किया था फणी मजूमदार ने। इसके बाद सन 1957 में किशोरदा ने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म मुसाफिर में अभिनय किया। यह फिल्म ऋषिदा की बतौर निर्देशक पहली फिल्म थी। लगभग उसी दौर में फिल्म नौकरी में किशोरदा ने एक गीत गाया जिसे पहले हेमंत कुमार गाने वाले थे, लेकिन बाद में सलिलदा ने फिल्म नौकरी का वो गाना किशोरदा से गवाया।

0: अपने आप पर फिल्माए गए गीत तो उन्होंने गाए ही, वहीं देवानंद जैसे दिग्गज कलाकारों के लिए भी गीत गाए। उस दौर में संगीतकार सचिन देव बर्मन ने उनसे कई फिल्मों में गीत गवाए। उनमें से कुछ फिल्मों के नाम हैं मुनीम जी, टैक्सी ड्राइवर, हाउस नंबर 44, फंटूश, 9 2 11 और पेइंग गेस्ट।
1: अच्छा।

किशोर दा की प्रतिभा अनूठी थी। उनकी फिल्में आज हिंदी सिनेमा की अमूल्य निधि हैं। अपने गीतों में भी स्वरों से वो अभिनय किया करते थे।

0: जात अरे एक चतुर नार बड़ी होशियार।
1: हास्य व्यंग पर किशोरदा की गहरी पकड़ थी, लेकिन गंभीर भूमिकाओं को भी किशोरदा ने बखूबी निभाया। सुनिए उन्हीं पर फिल्माया गया ये गीत।

किशोर दा खुद एक मंजे हुए शानदार अभिनेता थे, इसलिए जिन अभिनेताओं के लिए उन्होंने पार्श्व गायन किया उन अभिनेताओं के अंदाज को अपनी गायकी में बड़े असरदार तरीके से उतारा और दिलकश अंदाज में पेश किया। फिर चाहे वो धर्मेंद्र हो, राजेश खन्ना हो या फिर अमिताभ बच्चन।

अपने करियर के शुरुआती दौर में किशोर दा ने गायन को लंबे समय तक गंभीरता से नहीं लिया। सन 1969 में रिलीज हुई फिल्म आराधना। फिल्म आराधना से भारतीय सिनेमा के आकाश में उदित हुए पहले सुपरस्टार के रूप में

फिल्म आराधना, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार सचिन देव बर्मन और गायक किशोर कुमार के लिए बहुत भाग्यशाली साबित हुई। इस फिल्म से किशोरदा के करियर में एक रचनात्मक बदलाव की भी शुरुआत हुई और बाद के दशकों में फिल्म संगीत की दुनिया में किशोरदा ने गायन की बुलंदियों को छुआ। किशोरदा ने कई दिलचस्प फिल्मों का भी निर्माण किया, इनमें से कुछ के नाम हैं, दूर गगन की छाव में, दूर कराही, दूर वादियों में कहीं, झुमरू, जिंदगी, चलती का नाम गाड़ी, शाबाश डैडी और बढ़ती का नाम दाढ़ी। आज किशोरदा की बनाई फिल्में अभिनय के छात्रों के लिए एक मार्गदर्शक की तरह हैं। किशोरदा की फिल्मों में जहां हास्य का अपना रंग था, वहीं उतनी ही गहरी संवेदना भी। उनकी फिल्म का ये गीत जितना अर्थपूर्ण है, उतना ही मर्मस्पर्शी भी।

0: एक कलाकार के रूप में किशोरदा बेमिसाल थे, हर फन मौला थे। उनके कद्रदानों ने उन्हें नट सम्राट भी कहा। उनकी प्रतिभा के रचनात्मक आयाम एक से कहीं ज्यादा थे। उनके भीतर हास्य व्यंग्य का एक चितेरा, एक दार्शनिक, एक नटखट बच्चा, एक बेहद संवेदनशील इंसान और एक शानदार कलाकार समाहित था, जिसने अपने अभिनय और गीतों से हमें जाने कितनी बार हंसाया और गुदगुदाया।
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया, ओए आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया।

0: ओ गुजरिया होय होय होय ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया।
2: 13 अक्टूबर सन 1987 को किशोरदा ने सांसों की सरगम पर अपना अंतिम गीत छेड़ा और फिर चले गए महायात्रा पर।

किशोरदा को अनेक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय फिल्मी गैर फिल्मी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। किशोरदा भारतीय संगीत के अनमोल रत्न थे और रत्न रहेंगे। एक अभिनेता, गायक, संगीतकार और फिल्मकार के रूप में किशोरदा ने भारतीय सिनेमा में जो अमूल्य योगदान दिया है, उसके लिए फिल्म जगत, फिल्मों के दर्शक और उनके गीतों के श्रोता सदैव उनके ऋणी रहेंगे।

0: श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म जगत के महान कलाकार किशोर कुमार पर। शोध, आलेख और स्वर कमल शर्मा का, प्रस्तुति रमेश गोखले की।
1: आज के फनकार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती का कार्यक्रम आज के फनकार एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम रसरंग। इसमें हम आपको सुना रहे हैं एल्बम सॉन्ग्स। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए एक देशभक्ति रचना कैलाश खेर की आवाज में।

कैलाश खेर की आवाज में आप सुन रहे थे ये देशभक्ति रचना। अब हम आपको सुना रहे हैं स्टीवन बेन की आवाज में ये रचना, ओ दिलबर यारा।

सावन आ गया। अभी आप सुन रहे थे नेहा कक्कड़ और रोहन प्रीत सिंह की आवाज में, खुद रोहन प्रीत सिंह की रचना। आकाशवाणी सासाराम से आप सुन रहे हैं रसरंग कार्यक्रम में एल्बम सॉन्ग। अब हम सुन रहे हैं मधुरा भट्टाचार्य की आवाज में कवि संजय सिंह की ये रचना।

और अब रसरंग कार्यक्रम के अंत में लीजिए, सुनिए शबनम मजीद की आवाज में एसएम सादिक की रचना

शबनम मजीद की गई एस एम सादी की इस रचना के साथ ही रसरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे केंद्र से प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट तराने। श्रोताओं, चित्रपट तराने कार्यक्रम में आज हम सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर के साथ किशोर कुमार के गाए कुछ सदाबहार फिल्मी नगमे। तो कार्यक्रम के आरंभ में लीजिए सुनिए कभी कभी फिल्म का ये गाना, जिसे लिखा है शायर ने और संगीत दिया है खयाम ने।

तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती, नज़ारे हम क्या देखें। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में आप सुन रहे थे ये सदाबहार फिल्मी गीत। अब हम सुनवा रहे हैं अपना देश फिल्म का ये गाना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में, और इसे लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत से संवारा है आर डी बर्मन ने।

0: कार्यक्रम के अंत में हम सुनवा रहे हैं आन मिलो सजना फिल्म का ये गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में ही। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: अच्छा तो हम चलते हैं। अच्छा।

अच्छा तो हम चलते हैं। आन मिलो सजना फिल्म के इस गीत के साथ ही चित्रपट तराने कार्यक्रम अब समाप्त होता है। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाया लता मंगेशकर के साथ किशोर कुमार के गाए कुछ सदाबहार फिल्मी नगमे। यह आकाशवाणी सासाराम है। अब लीजिए सुनिए कल हमारे केंद्र से प्रसारित और रिले होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

कल सुबह 7:30 पर हमारा दैनिक कार्यक्रम होगा प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। समाचार प्रभात हम रिले करेंगे दिल्ली केंद्र से सुबह 8 बजे और सुबह 8:10 पर आप सुनेंगे पत्र आधारित हमारा फरमाइशी कार्यक्रम पसंद आपकी

कल सुबह 8:45 पर पटना केंद्र से हम रिले करेंगे प्रादेशिक समाचार और सुबह 9:10 पर होगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मालिका। सुबह 9:30 पर और रात्रि 9:30 पर हम रिले करेंगे विविध भारती का कार्यक्रम आज के फनकार। सुबह 10:00 सुनिएगा दिल्ली से रिले हिंदी में समाचार और सुबह 10:05 पर होगा हमारा कार्यक्रम श्रम संसार। कल सुबह 10:30 लोक माधुरी कार्यक्रम में सुनिएगा भोजपुरी एल्बम से कुछ लोकगीत और 10:45 पर भोजपुरी एल्बम से हम आपको सुनवाएंगे कुछ रचनाएं। 11:00 से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम

कल हमारी शाम की सभा में शाम 5:10 पर होगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। शाम 5:30 महिलाओं के लिए कार्यक्रम प्रसारित होगा घर आंगन। इसमें चर्चा होगी दहेज एक अपराध और क्रांति का महीना अगस्त विषय पर चर्चा और रक्षा सेनाओं में महिला, इस पर भी बात की जाएगी। फ्लाइट ऑफिसर गुंजन सक्सेना के बारे में संध्या 6:00 आप सुनेंगे भोजपुरी लोकगीत और 6:05 पर हम पटना केंद्र से रिले करेंगे भोजपुरी समाचार बुलेटिन। संध्या 6:10 पर हमारा ग्रामीण कार्यक्रम होगा गांव घर और इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे आज का भागदौड़ और तनावपूर्ण जीवन में सावन मास का महत्व, इस विषय पर चर्चा। एक वार्ता सुनवाई जाएगी, विषय होगा नशा की बढ़ती प्रवृत्ति एवं हानियां। वार्ताकार होंगे ददन पांडे। संध्या 6:40 पर भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा सांझ गीत और संध्या 7:00 हम आपको सुनाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम।

गुड इवनिंग रोहतास, हमारा ये सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम सुनिएगा शाम 7:15 से 7:30 पर प्रादेशिक समाचार और उसके बाद जिले की हलचल हम रिले करेंगे पटना केंद्र से। शाम 7:50 से आप सुनेंगे हमारा फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम हेलो मनपसंद।

रात्रि 8 बजे दिल्ली से हम रिले करेंगे संसद समीक्षा और रात्रि 8:15 से आप सुनेंगे हेलो मनपसंद कार्यक्रम का शेष भाग। रात्रि 9:45 समाचार संध्या हम रिले करेंगे दिल्ली केंद्र से और रात्रि 9 बजे से आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुर सौरभ। इसमें सुनिएगा गिरजा देवी का गायन।

रात्रि 10 बजे से हम दिल्ली से रिले करेंगे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही के रिकॉर्डिंग का प्रसारण। रात्रि 10:30 पर कार्यक्रम होगा चित्रपट तराने। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार हम रिले करेंगे दिल्ली केंद्र से। और रात्रि 11:10 पर हमारी सभा समाप्त होगी। तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण, कल के हमारे कार्यक्रमों के बारे में। यह आकाशवाणी सासाराम है, रात्रि के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में दिल्ली से हम रिले करेंगे समाचार, पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है।
1: इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में होने वाली देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। नए प्रावधान के तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या DM द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना दो वर्ष से अधिक समय के बाद जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की

0: संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं।
1: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चले नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं हर समय। हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एनओसी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि एथेनॉल कृषि क्षेत्र के लिए बड़ा अवसर है, बशर्ते इसकी नीति किसान केंद्रित हो और फसल का उचित मूल्य सीधे किसानों तक पहुंचे। नई दिल्ली में आज अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में श्री चौहान ने किसान नेताओं के सुझाव सुने और भरोसा दिलाया कि सरकार एथेनॉल से जुड़े उनके सुझावों पर गंभीरता से विचार करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े अवैध खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों को शिकायत निवारण को मजबूत करने को भी कहा है। धोखाधड़ी से प्राप्त धन की वसूली में तेजी लाने और डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से निपटने में सुधार करने के लिए कई निर्देश भी जारी किए। भारत 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। भारत ने भगोड़े अपराधियों से निपटने के लिए एक एकीकृत खुफिया आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित मॉडल विकसित किया है। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने पुरुष डबल्स प्री क्वार्टर में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by Reshma Tiwari. The Parliament has passed the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it today. Lok Sabha has already passed the bill. Minister of State for Home Nityanand Rai moved the bill in the upper house, which aims to amend the Registration of Births and Deaths Act 1969. Following the passage of the bill, the Rajya Sabha was adjourned for the day. The Lok Sabha has passed the Appropriation No. 3 Bill 2026 today. Following the passage of the bill, the lower house was also adjourned for the day. Earlier, Finance Minister Nirmala Sitharaman introduced the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026. The lower house witnessed repeated disruptions by opposition members over several issues, including alleged police action against students during the protest over the NEET paper leak issue. The Supreme Court today directed the Reserve Bank of India to prepare and circulate a Standard Operating Procedure SOP for dealing with mule accounts and bank accounts linked to cyber fraud. The court also issued a series of directions to states, union territories, law enforcement agencies and banks to strengthen grievance redressal, speed up the restoration of defrauded money and improve the handling of digital fraud cases. India has brought back 274 fugitive criminals from 36 countries between 2019 and 2026. The Ministry of Home Affairs said that to strengthen action against fugitives, the government enacted the